वक्त की रफ्तार के साथ सभी अपने अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, चांद जाने की तैयारी कर रहा है और सूरज देवता आगमन की तैयारी पर हैं जोरों शोरों के साथ। सूर्य की किरणों का उजियारा सारे जहां को प्रकाशवान कर रहा है, एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। आज का सवेरा सबकी राहों को एक अलग और एक नई दिशा दिखा रहा है। वहीं ठंडी हवाएं सबको सुकून दे रही हैं। जैसे माँ की गोद का सुकून कहता है कि सब अच्छा ही होगा।

इस दुनिया में सबका अपना एक महत्व है, अपना अस्तित्व है। हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। रहीम जी भी कहते हैं, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी।

कभी कभी हमारे छोटे छोटे प्रयास भी दोस्तों हमें सफलता दिलाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस सही समय का इंतजार करना पड़ता है। आज की कोशिश आने वाले बेहतरीन कल की दस्तक है। चिराग फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए लता जी के स्वर में।

इसी के साथ भोर सुहानी से विदा लेते हैं रूपा, आप जुड़े रहिए इसी तरह, इसी शिद्दत के साथ, इसी प्यार के साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर सुबह को अपने रूप में ढाल लीजिए। जी हाँ, जैसा आप चाहते हैं उसी रूप में इसे आप ढाल लीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, FM 102.5 MHz पर साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 सितंबर सन 2026 सुबह के 5:55 और 50 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। सुबह के 6 बजने को है। अब समाचार थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग में हर स्तर पर व्यापक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत, केंद्र सरकार और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चला है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा, 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवाओं को बड़े पैमाने पर एकजुट किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 1067 जगहों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में नशा मुक्ति की शपथ, हस्ताक्षर अभियान, खास विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक, रचनात्मक लेखन और युवाओं की अगुवाई में चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। जापान में 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा आज सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज एलाविनिल वेलारिविन, सोनम वक्सकर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

चिंतन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है, जीवन में पहली सफलता के बाद रुकी नहीं, क्योंकि यदि आप दूसरे प्रयास में असफल हो गए तो लोग यही कहेंगे कि आपकी पहली सफलता भाग्य की वजह से मिली थी। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 317। सुबह 6

बजकर 45 मिनट और शाम 6:45 मिनट पर संगीत सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं। भाग 5। कलाकार हैं गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज। प्रस्तुति छाया गांगुली की। सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से हम हैं राही प्यार के। आठ बजकर 15 मिनट पर त्रिवेणी। 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार महेश भट्ट पर। आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। 10 बजे बॉम्बे टॉकीज में पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत सुनिएगा गायिका पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। संपादन सहयोग अवंतिका सिंह का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। ग्यारह बजे विविधा में प्रस्तुत होगा सत्येन कप्पू दुर्गा खोटे चित्र भारती पर केंद्रित होगा ये कार्यक्रम। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 बजे सुरीला सफर। 2 बजे त्रिवेणी और 2:30 पर सदाबहार नग में। 3 बजे मन चाहे गीत, प्रस्तुत करता है तेजश्री कांबले। 3:30 पर नाट्य तरंग में सुनिए नाटक स्वप्न वासव दत्ता का दूसरा भाग। महाकवि भास के संस्कृत नाटक का रेडियो रूपांतरण। रूपांतरकार हैं कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। शाम 4 बजे पिटारा में उजाले उनकी यादों के। संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत सुनिएगा इस बातचीत का पहला भाग आज। प्रस्तुति अनुश्री पाठक के। शाम 5 बजे छाया गीत।

शाम 5:30 पर तराने, नए पुराने 6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता आपको फिर से याद दिला दें। श्रृंखला सुनेगा ख्याल और तरानों की विशेषताएं, भाग 5, कलाकार हैं गायक डॉक्टर पंडित गोकुल उत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की। शाम 7:00 सैनिकों की शौर्य गाथा। महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल बी संतोष बाबू की शौर्य गाथा सुनेगा सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत, आलेख स्वर संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज। हवा महल में रात 8:00 सुनिए झलकी चिट्ठी, लेखक सुनील हेत्री अब्राहम, निर्देशक गुरमीत रामल मीत। आठ बजकर 15 मिनट पर चित्रलोक, 9:00 आपके लिए 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित होगा फिल्मकार महेश भट्ट पर, 10:00 छाएगी 10:30 पर ढलती जाहिरात और 11:00 सुनेगा विविधा। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, भाग 317।

लंका की सुरक्षा हेतु चार विशाल द्वार हैं। अतः सुग्रीव, जांबवान, विभीषण आदि से मंत्रणा करके वानर सेना के चार दल बनाए गए। सैन्य दल श्री राम के चरणों में सिर नवाकर पर्वत शिखरों जैसे भीमकाय अस्त्र शस्त्र लेकर चारों दिशाओं से लंका पर चढ़ दौड़ते हैं। लंका में कोहराम मच जाता है, किंतु मदांध रावण ये समाचार सुनकर हंसता है। इस आक्रमण को वानरों की ढिटाई बताकर राक्षसों को आदेश देता है कि विधाता ने घर बैठे वानरों के रूप में जो भोजन भेजा है वे उसका उपभोग करें। राक्षस सेना के योद्धा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर वानर सेना पर टूट पड़ते हैं। परकोटे पर वे बादलों की तरह छा जाते हैं। वातावरण में नफीरी, भेरी और रणवाद्यों का निनाद गूंज उठता है।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान भाग 317, आज आपने सुना।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: ख्याल और तराने की विशेषताएं। आज संगीत सरिता में जाने माने गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला की पांचवीं कड़ी सुनिए।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का बहुत बहुत प्यार। प्रत्येक राग को गाने के लिए उसका वादी संवादी न्यास और चलन पर ध्यान देना होता है। यदि राग की प्रकृति चपल है तो उसका विस्तार उसके अनुसार करना होगा। यदि राग गंभीर है तो उसका विस्तार जल्दबाजी से नहीं होना चाहिए, अपितु बहुत धैर्य पूर्वक उसकी बढ़त करनी चाहिए। अगर राग गंभीर होने के साथ करुण रस प्रधान है तो उसकी बढ़त का ढंग अलग होता है। इसमें मैं बड़े ख्याल की बंदिश प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि झूमरा ताल में निबद्ध है।

अब मैं द्रुत ख्याल की बंदिश प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि तीन ताल में निबद्ध है। इसमें कूट तान, पेंच, बल, छूट, जरब और गमक तानों का प्रयोग है। यह क्लिष्ट जरूर है, किंतु श्रवण करने में बड़ा ही मधुर है। तो करुण रस प्रधान इस बंदिश को आप सुनिए।

0: संगीत सरिता में आप सुन रहे थे श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं। प्रस्तुतकर्ता थे जाने माने गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज। हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने इनकी संगत की।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।

FM 102.5 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उज्जैन। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम महाकाल बंदन।

महाकाल वंदन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सुबह की इस अमृत वेला में आइए सर्वप्रथम बाबा महाकाल को नमन।

ये था हमारा कार्यक्रम महाकाल वंदन और आप सुन रहे हैं FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आकाशवाणी उज्जैन।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं।

सुबह 7:20 पर होगा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। 8:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम उज्जैनी आरजे विद आरजे देशना जैन।

9:30 पर होगा नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स। 10 बजे सुनिएगा आपकी फरमाइश और 11 बजे होगा कार्यक्रम रंग तरंग।

दोपहर 12:05 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। 1 बजे सुरीला सफर, 2 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत।

शाम 4 बजे खुलेगा पिटारा उजाले उनकी यादों के, 5 बजे सुनिएगा युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

शाम 7:21 पर होगा मालवी गीतारी गूंज। 8 बजे आप पुनः सुन सकेंगे फिल्म संगीत।

रात 8:15 पर होगा डगर विकास की, 8:30 पर फिल्म संगीत और 9:30 पर सुनिएगा आपकी फरमाइश।

रात 10 बजे आप सुन सकेंगे 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 विशेष कार्यक्रम डेली हाइलाइट्स कैप्सूल और 10:20 पर सुनिएगा विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा के समाचार सेवा प्रभाग नई दिल्ली द्वारा प्रसारित।

अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह के 7:10 होने को है अब प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण। हम थोड़ी ही देर में भोपाल केंद्र से करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में हो रहे जन कल्याणकारी आयोजन। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री आज बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता को गांधी सागर अभयारण्य के जंगलों में करेंगे विमुक्त। और एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में आज भारत और बांग्लादेश के बीच होगा मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने

0: सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल में लाया गया। इसके माध्यम से केंद्र व राज्यों के 17 से अधिक अप्रत्यक्ष करों जैसे वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि को समाप्त कर एक पारदर्शी और एकीकृत व्यवस्था बनाई गई, जिससे कर पर कर की समस्या खत्म हुई और दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं सस्ती हुईं। डिजिटल GST नेटवर्क से कर चोरी पर लगाम लगी और राजस्व संग्रह में भारी बढ़ोतरी हुई। GST परिषद के जरिए केंद्र और राज्यों ने मिलकर देश को एक एकीकृत आर्थिक बाजार में बदल दिया है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनकल्याणकारी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अशोकनगर के जिला आयुर्वेद कार्यालय सहित 11 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं मंदसौर में भी इस अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया गया। झाबुआ में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने ग्राम मिंडल की आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया। वहीं वड़नगर से वाराणसी तक निकलने वाली सेवा संकल्प यात्रा एवं जल सेवा संकल्प यात्रा का झाबुआ जिले में प्रवेश हुआ। सतना में आयोजित सम्मेलन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिव्यांगजनों को 590 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल एवं सहायक उपकरणों का वितरण किया। वहीं ग्वालियर के स्कूलों में मेरे सपनों का भारत विषय पर चित्रकला व भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने बच्चों के साथ ग्वालियर में फिल्म भी देखी। इसके अलावा मुरैना के कैलारस महाविद्यालय में भी विद्यार्थियों के लिए पोस्टर एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। 15 से 29 साल के युवाओं पर आधारित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में युवाओं की आवाज नहीं सुनी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को झूठ की गूंज फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने जनता के बीच भ्रम फैलाने की दृष्टि से बात की है। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में 2002 से 2003 तक स्कूलों में 16% ड्रॉप आउट था, जो अब जीरो है। लगभग 1 लाख के आसपास पदों की भर्ती हमारी माध्यमिक भर्ती बोर्ड और PSC के माध्यम से हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा,
1: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अपनी झूठ की गूंज का कार्यक्रम किया और जैसा कि होता है कि नेता प्रतिपक्ष हमेशा अपने विषय के प्रति लापरवाह भी रहते हैं, आज भी वो बगैर तैयारी के कुछ ऐसे बच्चों को, कुछ युवा मित्रों को जिनकी बात क्वेश्चन आंसर में आना चाहिए थी, बात करना कराना चाहिए थी, ऐसा लगा कांग्रेस के लोगों ने केवल अपने एजेंडे के आधार पर जनता के बीच भ्रम फैलाने की दृष्टि से बात कही।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता CCB2 को गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर नीमच के जंगलों में विमुक्त करेंगे। इसके साथ ही गांधी सागर में चीतों की संख्या बढ़कर 4 हो जाएगी, जिसमें 2 नर और 2 मादा शामिल हैं। 28 फरवरी 2026 को बोत्सवाना से कूनो राष्ट्रीय उद्यान लाई गई इस मादा चीता ने कूनो के माहौल में खुद को पूरी तरह ढाल लिया है। कूनो के बाद अब उसे गांधी सागर स्थानांतरित किया जा रहा है, जहां वह पहले से मौजूद चीते प्रभाष, पावक और धीरा के साथ रहेगी। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्ट चीता को और मजबूती देगा। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान 2026 के तहत सुशासन और पारदर्शिता को जमीनी स्तर पर लागू करने के प्रयास तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव लगातार प्रदेश के दूरदराज के इलाकों का मैदानी निरीक्षण कर रहे हैं। अपने निरीक्षण दौरों के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ सीमा से लगे डिंडौरी जिले के गड़ासरी पडरिया मार्ग का जायजा लिया, जहां पर उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच की और आधुनिक ग्लास फाइबर री इन्फोर्स्ड पॉलीमर बार्स तकनीक के उपयोग का निरीक्षण कर इसके प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। इसके पूर्व प्रबंध संचालक ने रायसेन में निरीक्षण के दौरान जनविश्वास शिविरों के जरिए ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही पौधरोपण और जल संरक्षण के तहत बनाए जा रहे रिचार्ज बोर व लोक कल्याण सरोवरों के कार्य की समीक्षा कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विजन के अनुरूप प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कृषि कल्याण वर्ष के रूप में घोषित

किया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार योजनाएं संचालित कर रही है। इस महाअभियान के तहत कुछ जिलों में प्रशासनिक स्तर पर सराहनीय कार्य देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड की अगस्त 2026 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विदिशा जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 42.95 अंकों के साथ प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। कलेक्टर अंशुल गुप्ता के निर्देशन और प्रशासनिक कसावट के चलते जिले में कृषि कल्याण योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन बेहद प्रभावी ढंग से हो रहा है। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। जापान में 20वें एशियाई खेल में आज महिला क्रिकेट सेमीफाइनल भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। वहीं भारत की टेकबॉल खिलाड़ी क्विम्सी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना सकामोतो से खेलेंगी, जबकि भारतीय निशानेबाज एलावेनिल वलाविरन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगी। उधर भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। वहीं पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विदिशा के एक निजी विद्यालय में गणेशोत्सव पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षा के साथ साथ सामाजिक परंपराओं और संस्कारों के महत्व पर जोर दिया। मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान द्वारा खंडवा में होमगार्ड सैनिकों और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए एक दिवसीय अल्पविराम कार्यशाला का आयोजन किया गया। आगरमालवा जिले को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के 81.48% संतुष्टिपूर्ण समाधान के लिए ए ग्रेड मिला है। झाबुआ के रामा और खरडूबड़ी के दो विद्यालयों में शैक्षणिक अधोसंरचना एवं सुविधाओं के विकास के लिए 319.58 लाख रुपए के निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गई है। मंदसौर के दलौदा थाना क्षेत्र में फोरलेन हाईवे पर ट्रक की टक्कर से ट्रॉली सवार एक महिला और बच्ची की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए। पन्ना जिला जेल में कल बंदियों के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में 2 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान 64 गाइडों ने जैव विविधता और वन्यजीव व्यवहार की बारीकियां सीखी। डिंडोरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने समीक्षा बैठक के दौरान सभी निर्माण एजेंसियों को तय समय सीमा के भीतर विकास कार्य पूरे करने के सख्त निर्देश दिए हैं। सागर संभागायुक्त दिलीप कुमार ने छतरपुर के पाठापुर गांव का भ्रमण कर केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों से संवाद कर मुआवजा एवं पुनर्वास से जुड़े मुद्दों को सुलझाया। शहडोल पुलिस ने फर्जी और संदिग्ध सिम बेचने वालों के खिलाफ ऑपरेशन फास्ट 2.0 चलाकर छापेमारी की, जिसमें ब्योहारी में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। धार के मगजपुरा स्थित जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में 23 सितंबर को 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं काढ़ा वितरण शिविर लगाया जाएगा। और शासकीय आईटीआई मुरैना में आयोजित रोजगार कैंपस में 18 युवाओं का प्राथमिक चयन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में हो रहे जन कल्याणकारी आयोजन। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री आज बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता को गांधी सागर अभयारण्य के जंगलों में करेंगे विमुक्त। और एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में आज भारत और बांग्लादेश के बीच होगा मुकाबला। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। सुबह के 7:21 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

नई ऊर्जा और जीवन को बेहतर बनाने का एक नया अवसर लाती है जब इस सुबह की शुरुआत आत्मिक चिंतन और सकारात्मक विचारों के साथ होती है, तो मन में शांति और दिन भर के कार्यों के प्रति एक नई सजगता का अनुभव होता है। उज्जैन की पावन धरती पर, जहाँ महाकाल की भक्ति और क्षिप्रा की पवित्र धारा वातावरण को आध्यात्मिक स्पर्श देती है, वहाँ सुबह का हर क्षण अपने आप में विशेष बन जाता है। आइए आज की इस सुबह की शुरुआत करते हैं एक और भक्ति गीत के साथ, महाकाल का स्मरण करते हुए।

सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम में अब वक्त है उज्जैन की कुछ खबरें जानने का समाचार पत्रों से। सेवा संकल्प अभियान, चित्र व भाषण प्रतियोगिता। उज्जैन में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत चित्र और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता और विचारों को प्रस्तुत किया। चित्रों और भाषणों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता तथा सकारात्मक संदेशों को सामने लाने का प्रयास किया गया। विद्यालय स्तर पर आयोजित इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों में आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति कौशल और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करती है। विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ साथ समाज के प्रति संवेदनशील बनने की प्रेरणा भी मिलती है। पुलिस परिवार की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की पहल। पुलिस परिवार की 11 महिलाओं ने आत्मनिर्भरता और स्टार्टअप से जुड़ी गतिविधियों के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को नए कौशल सिखाने और आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के अवसर से परिचित कराना है। आज महिलाएं शिक्षा, व्यवसाय, तकनीक और विभिन्न कार्य क्षेत्रों में अपनी भागीदारी बढ़ा रही है। प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से महिलाओं को अपने विचारों को छोटे व्यवसाय या स्वरोजगार के रूप में विकसित करने में सहायता मिल सकती है। महिलाओं के कौशल और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए ऐसी पहलें परिवार और समाज दोनों के विकास में योगदान देती है। अगली खबर है महाकाल सिटी प्रबंधन ने प्रदान किए पुरस्कार। महाकाल सिटी प्रबंधन की ओर से उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कृत

पुरस्कार प्रदान किए गए। सम्मान समारोह में कार्य के प्रति समर्पण और बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहित किया गया। किसी भी संस्था या व्यवसाय की सफलता में कर्मचारी और सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अच्छे कार्यों को पहचान और सम्मान मिलने से कार्य क्षमता, उत्साह और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा मिलता है। अगली खबर है खेल जगत की ओर से। खेल समाचार। टेबल टेनिस प्रतियोगिता। उज्जैन में आयोजित राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने उत्साह और खेल भावना का परिचय दिया। प्रतियोगिता में उज्जैन के साथ साथ जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अलग अलग मुकाबलों में खिलाड़ियों ने अपनी तकनीक, अभ्यास और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। खेल आयोजनों के माध्यम से युवाओं को अपने प्रतिभा निखारने, अनुशासन सीखने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने का अवसर मिलता है। ऐसे आयोजन खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंदौर में जागरूकता और सामूहिक भागीदारी। समाचार पत्रों में इंदौर से जुड़ी एक गतिविधि में 400 फोर व्हीलर और 20 बसों के काफिले का उल्लेख किया गया। बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी वाली गतिविधियां सामूहिक सहयोग और सामाजिक जुड़ाव को दर्शाती है। पर्युषण पर्व की सामूहिक क्षमायाचना। पर्युषण पर्व के अवसर पर समन्वय परिवार के 40 से अधिक दंपतियों ने सामूहिक क्षमायाचना की। जैन धर्म में पर्युषण आत्मनिरीक्षण, संयम और क्षमा का महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। सामूहिक क्षमायाचना के माध्यम से लोगों ने आपसी संबंधों में प्रेम, विनम्रता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। ये थी उज्जैन की कुछ खबरें समाचार पत्रों से। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले भक्ति गीत की ओर।

श्रोताओं, पर्युषण पर्व मुख्य रूप से जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पर्व है, लेकिन इसके मूल सिद्धांत किसी एक समुदाय या पंथ तक सीमित न होकर समूचे मानव समाज के लिए कल्याणकारी है। ये कोई बाहरी उत्सव या जश्न का अवसर मात्र नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, आत्मनिरीक्षण और आत्ममंथन का एक गहरा आध्यात्मिक समय है। पर्युषण हमें कुछ पल ठहर कर अपने विचारों, वाणी और व्यवहार पर चिंतन करने तथा अपनी कमियों को पहचान कर जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है क्षमा मांगना और क्षमा करना। संयम, अहिंसा, करुणा, त्याग और मैत्री जैसी दिव्य गुणों को अपने जीवन में अपनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। श्वेतांबर धर्मावलंबियों के पर्युषण पर्व के समापन के पश्चात अब 10 दिवसीय दिगंबर जैन धर्मावलंबियों का

पर्युषण पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं, बल्कि मनुष्य के अहंकार को कम करके उसे सरल, शांत और करुणाशील बनाने वाली जीवन शैली का संदेश देता है। पर्युषण हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने और दूसरों के प्रति सद्भाव रखने और क्षमा के महत्व को समझने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं तो किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए क्षमा मांगते हैं, तब आत्मिक शांति की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं। यही आत्ममंथन और आत्मपरिवर्तन पर्युषण पर्व को मानव जीवन के लिए सार्थक और प्रेरणादायक बनाता है।

श्रोताओं, पर्युषण के दौरान जब हम आत्मनिरीक्षण की ओर बढ़ते हैं तो हमें अपने जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान देने का अवसर मिलता है जिन्हें सामान्य दिनों में हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जाने अनजाने में हम सभी से गलतियां होती हैं, कभी क्रोध, कभी अहंकार, कभी मोह, कभी अपने विचारों पर अत्यधिक आग्रह हमें दूसरों से दूर कर देता है। ऐसे में पर्युषण हमें स्वयं से कुछ सवाल करने की प्रेरणा देता है। क्या हमारी वाणी से किसी को ठेस पहुंची? क्या हमारे व्यवहार से किसी का मन दुखा? और क्या हम अपनी भूलों को स्वीकार कर उनमें सुधार लाने के लिए तैयार हैं? अपनी गलतियों को पहचानना कमजोरी नहीं बल्कि आत्म सुधार की दिशा में बढ़ाया गया साहसिक कदम है। जब हम ईमानदारी से अपने भीतर झांकते हैं तभी आत्मशुद्धि और वास्तविक शांति की राह खुलती है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर, गोपी फिल्म से मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में।

पर्युषण पर्व की आध्यात्मिक यात्रा हमें अंततः क्षमा के उस भाव तक ले जाती है जहाँ मन में संचित राग द्वेष और शिकायतों को छोड़ने का प्रयास किया जाता है। क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों ही हमारे भीतर विनम्रता और करुणा का विकास करते हैं। कई बार हम अपनी बात या व्यवहार से किसी को कष्ट पहुंचा देते हैं तो कभी दूसरों की कही कोई बात हमारे मन में लंबे समय तक बनी रहती है। ऐसे में क्षमा का भाव हमें संबंधों में मधुरता और मन में हल्केपन का अनुभव करा सकता है। क्षमा वाणी हमें ये स्मरण कराती है कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हमसे भी गलतियाँ होती है। इसलिए इस पावन अवसर पर हम अपने मन वचन और कर्म से किसी को पहुँचे कष्ट का आत्ममंथन करें और सच्चे हृदय से क्षमा याचना करें। यही भावना आपसी सम्मान सद्भाव और मैत्री को मजबूत बनाती है। इस पर्युषण पर्व पर चर्चा आगे और भी चलती रहेगी, उससे पहले सुनवाते हैं आपको अगला गीत।

श्रोता, पर्युषण पर्व का संदेश हमें ये समझाता है कि सच्ची धार्मिकता केवल पूजा पाठ और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे आचरण और व्यवहार में भी दिखाई देती है। हमारी वाणी में मधुरता हो, व्यवहार में अहिंसा हो, दृष्टिकोण में करुणा हो और जीवन में संयम तथा त्याग की भावना हो, यही इस पर्व की सार्थकता है। आत्मनिरीक्षण, क्षमा और मैत्री का ये संदेश किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि हर मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। आइए, पर्युषण के इस मूल्यों को केवल पर्व के दिनों तक सीमित न रखें, बल्कि अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। अपने क्रोध को शांति से, अहंकार को विनम्रता से और द्वेष को मैत्री से बदलने का प्रयास करें। श्रोताओं, इसी के साथ ये था हमारा आज का सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन आकाशवाणी उज्जैन से FM 102.5 MHz पर। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देशभर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा

कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाणन सिलेंडर की डिलीवरी के समय

0: जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट से की थी। ये अभियान 4 चरणों का है। एक रिपोर्ट।
1: यह 13 दिन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पंजाब के सामने मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। ये चुनौतियां हैं नशों का बढ़ता खतरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार। यह यात्रा राज्य में 4000 किलोमीटर का सफर तय करके सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नशों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट करेगी। तीसरी यात्रा आज केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिलका के सादिकी बॉर्डर से शुरू करेंगे और कल चौथे फेज को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो से हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल मिलाया गया।
2: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। GST दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
3: जो हाल ही में GST का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है उससे रेशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर। कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पड़ नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे जहां जहां गवर्नमेंट को उचित गए कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, और यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी गुड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमन मैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
2: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर GST कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
4: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम्स। इन चीजों पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी GST कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
2: पिछले 9 वर्षों में GST सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABBP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए ABBP की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

0: अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
1: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को डीओबी में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा, और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टेगर्ड मैनर में जाएगी, क्योंकि वो हियरिंग होनी है तो हियरिंग ईआरओ के यहाँ पे होनी है। उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो स्टेगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं, और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
0: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
2: We have to continuously be watchful of the
3: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे, हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहें।
0: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं मछुआरों को कल तक अंडमान सागर तथा अगले दो दिन तक पूर्वी मध्य और उससे लगे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
3: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डिगोकेश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रणानंद का डेविड एंटोन गुइजारो के साथ और निहाल सरीन का जेमेस एंटोस लाटासा के साथ मुकाबला ड्रो रहा। महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। 20वें एशियाई खेलों में आज भारत की टैकबॉल खिलाड़ी क्यूमसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमेरिकी प्रशासन ने यह चेतावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया है। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमरीकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमरीकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहें, आगे रहें। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों

0: के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने दिया है। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं, विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन भारत से 6 गुना अधिक, राष्ट्र ने COP21 के सभी जलवायु लक्ष्य समय से पहले पूरे किए। हिंदुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता लिखता है, करीब 1.5 दशक से डूसू के चारों पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, डूसू में फिर भगवा, एबीवीपी ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनु भाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सरायका लिखा, 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, 29 सितंबर को होगा शुरू, दैनिक भास्कर की खबर है। राजस्थान पत्रिका ने ईरान में हिजाब कानून को लेकर सख्ती के बीच राजधानी तेहरान में महिलाओं के रनिंग इवेंट के ध्यान खींचने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, बिना हिजाब के तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर दौड़ी सैकड़ों महिलाएं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बजाय अमेरिका करेगा इसकी चौकीदारी, ग्रीनलैंड और अमेरिका में हुआ करार, आर्कटिक में थमा तनाव, दैनिक जागरण की सुर्खी है। पत्र लिखता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हस्ताक्षर की संभावना।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Government makes Aadhaar biometric authentication mandatory for subsidized refills of LPG cylinders from 1st of next month. Rashtriya Sankalp Samaroh being organized at 1067 locations across the country today as part of 100 weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan. Election Commission to hold special camps in all polling stations in Delhi today to assist citizens regarding inclusion and deletion of names in electoral rolls. IMD forecasts heavy rainfall in coastal Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Keralam, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands today. And Indian men score resounding 3-1 victory over Spain at Chess Olympiad in Samarkand. Women's team beat Mongolia 3-1. And now the news in detail. Government has said that biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from 1st October this year. Domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price with applicable subsidy. More from our correspondent.
3: Biometric Aadhaar authentication ensures that subsidized LPG reaches only genuine and deserving households. Linking each connection to the Aadhaar authenticated consumer will help prevent diversion of subsidized domestic cylinders for commercial and industrial use. It will remove duplicate and ineligible connections and make subsidy delivery transparent and targeted. The Petroleum and Natural Gas Ministry said that the process is not meant to deny LPG to any genuine household and every eligible consumer has several easy ways to complete it. It said 27.43 crore consumers have already completed authentication and do not need to do anything further. Authentication can be completed at the time of delivery.

दोस्तों, इश्क की सबसे खूबसूरत भाषा अक्सर खामोशी और नज़रों में छिपी होती है। फिल्म हम दिल दे चुके सनम के लिए महबूब ने शब्द लिखे, इस्माइल दरबार ने संगीत सजाया और कुमार सानू व कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी मधुर आवाज़ दी। आइए सुनते हैं हम दिल दे चुके सनम से ये खूबसूरत गीत।

अब बारी है एक ऐसे गीत की जो पहली मोहब्बत की मासूमियत को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। कुमार सानू और अलका याग्निक की दिलकश आवाज़, जतिन ललित का मधुर संगीत और जावेद अख्तर की बोल, फिल्म यस बॉस का ये प्यारा सा गीत।

वादों और विश्वास से सजे इस अगले गीत में प्यार की सच्चाई झलकती है। देव कोहली के भावपूर्ण शब्दों को अनु मलिक ने सुरों से संवारा है और शान व चित्रा ने अपनी आवाज़ से इसे यादगार बना दिया। फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ से ये प्यारा सा गीत।

को नई पहचान दी। राम लक्ष्मण की मधुर धुन, एसपी बाला सुब्रमण्यम की भावपूर्ण आवाज और असद भोपाली के सरल बोल, फिल्म मैंने प्यार किया का ये सदाबहार नगमा।

0: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
1: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
0: RBI कहता है, जानकार बनिए,
1: सतर्क रहिए।
2: कुछ रिश्ते सचमुच हमारी पूरी दुनिया बन जाते हैं। फिल्म वास्तव के इस गीत में समीर के शब्द, जतिन ललित का संगीत और सोनू निगम व कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ भावनाओं को खूबसूरती से उकेरती है। आइए हम भी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

मोहब्बत के रंगों से सजा अगला गीत आज भी हर दिल के करीब है। नदीम श्रवण की मधुर धुन, आनंद बख्शी के यादगार बोल और कुमार सानू व अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म परदेस का ये लोकप्रिय गीत।

पहले प्यार का एहसास जिंदगी भर याद रहता है, और यही एहसास इस गीत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और जतिन ललित का संगीत। सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से।

0: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
1: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
0: अरे क्यों?
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
0: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
2: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
0: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: दे रे भाई।
3: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
4: अब सुनिए एक ऐसा गीत जो प्यार में निभाए गए वादों की अहमियत बताता है। देव कोहली की रचना, आनंद मिलन का संगीत और उदित नारायण व अनुराधा पौडवाल की सुरीली आवाज में।

जिंदगी की कुछ मुलाकातें हमेशा के लिए याद बन जाती है। फिल्म विजयपथ के इस गीत में अनु मलिक का संगीत है, इंदिवर के बोल और कुमार सानू व अलका याग्निक की आवाज़ मिलकर एक खूबसूरत एहसास रचते हैं। आइए सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

महफिल के इस पड़ाव पर पेश है जोश मस्ती और प्यार से भरपूर एक शानदार गीत, आनंद बख्शी के चुलबुले बोल, जतिन ललित का संगीत और उदित नारायण की ऊर्जावान आवाज से सजा फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ये लोकप्रिय गीत।

दोस्तों, इसी के साथ ये था हमारा आज का उज्जैनी आरजे कार्यक्रम और मैं हूँ आपके साथ आरजे देशना जैन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है, FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। सुबह के 9:30 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स।

आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे बॉलीवुड बीट्स कार्यक्रम की। दोस्तों, कुछ यादें वक्त के साथ मिटती नहीं, बल्कि और गहरी होती चली जाती है। जब कोई दिल में इस तरह बस जाए कि हर रास्ता उसी की याद दिलाए, तब भावनाएं शब्दों से कहीं आगे निकल जाती है। दर्द, प्रेम और समर्पण का अनोखा संगम लिए ये पहली प्रस्तुति आज भी श्रोताओं के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ती है। आइए सुनते हैं फिल्म एक विलन से अंकित तिवारी की दमदार आवाज में ये सुंदर सा गीत।

जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें वही होती है जिनमें अपनों का साथ, मुस्कान और ढेर सारी भावनाएं शामिल हो। खुशियों के बीच छिपी संवेदनाएं और रिश्तों की गर्माहट इस अगली प्रस्तुति को हमेशा के लिए यादगार बना देती है। इसकी मधुर धुन हर दिल को अपनेपन से छू जाती है। आइए सुनते हैं फिल्म कल हो ना हो से साधना सरगम, उदित नारायण और सोनू निगम की मनमोहक आवाज़।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो
0: बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: इश्क जब रूह तक उतर जाए तो हर धड़कन उसी का नाम लेने लगती है। सूफियाना एहसास और आधुनिक संगीत का खूबसूरत संगम है फिल्म रेड 2 के इस गीत में। जुबिन नौटियाल की दिलकश आवाज, रोचक कोहली का संगीत और मनोज मुंतशिर के बोल इस क्लासिक को और नया अंदाज दिया है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

नई शुरुआत जब प्यार और विश्वास के साथ होती है तो हर रिश्ता और भी मजबूत बन जाता है। फिल्म पैडमैन का ये मधुर गीत शादी के खूबसूरत एहसास को बेहद सादगी से बयां करता है। अरिजीत सिंह की आवाज़, अमित त्रिवेदी का संगीत और कौसर मुनीर के बोल इसे यादगार बनाते हैं। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
0: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV/AIDS जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
2: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: कभी कभी किसी की मौजूदगी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना देती है कि उसके बिना हर खुशी अधूरी लगने लगती है। ऐसी ही सच्ची मोहब्बत का एहसास लिए ये गीत फिल्म सिम्बा से है। राहत फतेह अली खान, तनिष्क बागची और अजीज कौर की आवाज़ों ने इसे बेहद भावुक रंग दिया है। आइए सुनते हैं दिल छू लेने वाला ये खूबसूरत सा नगमा।

दोस्तों, ये था हमारा बॉलीवुड बीट्स कार्यक्रम। आप सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है, FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। सुबह के 10 बज चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

श्रोताओं, अगर आप भी हमें आपकी फरमाइशें भेजना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी उज्जैन, विद्यापति नगर, नानाखेड़ा बस स्टैंड के पास, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 456010, यानी कि 456010। आज के पहले गीत की शुरुआत करते हैं फिल्म हिमालय की गोद में से, जिसे गाया है मुकेश ने। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और गीतकार है आनंद बख्शी साहब। गीत की फरमाइश भेजी है बेरड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर ने।

अगली फरमाइश हमें भेजी है बिलाई गढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन, साथ ही डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, तन्मय बेबी अनामिका राधिका गजभिये, साथ ही संतोष खड़से, विनोद खड़से, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अबान अब्बासी। इन्हें हमें गीत की फरमाइश भेजी है 1942 अ लव स्टोरी से, जिसे गाया है कुमार सानू ने, संगीत से सजाया है आर डी बर्मन साहब ने और बोल दिए हैं जावेद अख्तर ने।

अगली फरमाइश आई है साजन फिल्म से गीत के लिए, जिसे संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने, बोल दिए हैं समीर ने और इसे अपने आवाज़ दी है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। फरमाइश करता है बोरखेड़ा पिपरामल जिला उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मूणत।

हमारे अगले फरमाइश करता है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, साथ ही कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, इनकी फरमाइश पर सुनाते हैं आशी की फिल्म से गाना, जिसे संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और बोल है रानी मलिक के।

हमारे अगले फरमाइश करता है मोरटक्का माफी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति ललित, मनीषा शुभम, देवी किशन, भावना कनिका, आदित्य मानस मन पटेल, साथ ही कृष्णा नगर टीवी टावर नागपुर महाराष्ट्र से नाना डोंगरा दीवे, रमाताई, दीक्षा, रीमा और राहुल, इनकी फरमाइश पर सुनवाते हैं फिल्म मन से उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में गीत, जिसे संगीत दिया है संजीव दर्शन ने और बोल है समीर के।

अगली फरमाइश करता है आदर्श नगर मलोड से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी, सौरव, शाइना और निवान शर्मा, साथ ही गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की, स्वाति प्रयोग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललित नारायण खर्चे, इनकी फरमाइश पर सुनवाते हैं करण अर्जुन फिल्म से गाना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में, जिसे अपने बोल दिए हैं इंदिवर ने और संगीत है राजेश रोशन का।

अगली फरमाइश हमें आई है ब्लैकमेल फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज़ में गीत के लिए, जिसे संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और बोल है राजेंद्र कृष्ण के। इसके फरमाइश करता है, बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे, साथ ही पटेल नगर मलोद से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू।

अगले गीत की फरमाइश आई है मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, संगीत है शंकर जयकिशन का और बोल है नीरज की, गाना है फिल्म कन्यादान से। फरमाइश करता है लेवा खेल मोहल्ला चांदुर बिस्वा से, नारायण भाऊ विट्ठल राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, परी संजना खर्चे, गणेश कार्तिक ब्रोनो, उषा सोरना, स्वाति प्रज्ञा चौधरी, मालती चौधरी। और साथ ही इसी गीत की फरमाइश आई है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बोलिया से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, साथ ही दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, और शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय की।

अगली फरमाइश हमारे पास आई है छत्तीसगढ़ के दत्तरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरटोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू। साथ ही इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी। इनकी फरमाइश आई है तेरे नाम फिल्म से गाने के लिए, जिसे उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ दी है। संगीत दिया है साजिद वाजिद ने और गीतकार है समीर।

अगली फरमाइश आई है दिल्ली का ठग फिल्म के गीत के लिए, जिसमें आवाज़ है किशोर कुमार और आशा भोसले की, संगीत है रवि का और गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी। फरमाइश करता है घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया।

अगले फरमाइश करता है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बीरक, जैतिक बीरक और मिका बीरक, साथ ही आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साहिर राही और महराज जहां। इनकी फरमाइश पर सुनाते हैं कभी कभी फिल्म से गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

श्रोताओं, ये था हमारा आपकी फरमाइश कार्यक्रम। अगर आप भी अपने नाम के साथ अपनी फरमाइशें भेजना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी उज्जैन, विद्यापति नगर, नानाखेड़ा बस स्टैंड के पास, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 456010, यानी कि 456010। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। सुबह के 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप अब सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: द्विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का नमस्कार। आज एक और नए संस्करण के साथ हम उपस्थित हैं और लेकर आए हैं अपने खजाने से कुछ खास रिकॉर्डिंग्स।
0: जी बिल्कुल, और ये पहली रिकॉर्डिंग हमारे सामने जो है मनीषा जी,
1: उसको शाया कर रहे हैं आप या उसके पहले कुछ और सुनाएंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसके पहले बात तो उसी के बारे में करनी है। हम इस रिकॉर्डिंग के जरिए पुराने जमाने में, इतिहास में जाने वाले हैं।
1: हाँ, ये तो विविधा जो है ना कार्यक्रम, उसके बारे में अब हमारे श्रोता भी बहुत स्नेह से ये कहते हैं कि ये कार्यक्रम ऐसा लगता है जैसे अतीत में खींच के ले जाता है।
0: जी बिल्कुल,
1: और ऐसे कलाकारों को हम याद करते हैं जो हमारे लिए माइलस्टोन साबित हुए, जिन्होंने शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष किया और बाद में बहुत सफल हुए।
0: ऐसे कलाकारों में एक बहुत ही सम्माननीय नाम है दुर्गा खोटे जी का।
1: क्या बात है, एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही गौरवमय अभिनेत्री, व्यक्तित्व ही उनका इतना गौरवशाली था।
0: बहुत ही ग्रेसफुल एक्ट्रेस ये थी
1: जी।
0: और दुर्गा खोटे जी के बारे में बता दूं कि उनका मूल नाम था वीता लाड़।
1: अच्छा
0: जी,
1: महाराष्ट्र
0: आपका,
1: से थी?
0: जी हाँ, आपका जन्म 15 जनवरी 1905 में हुआ था और मुंबई के गिरगांव इलाके में, जो कांदेवाड़ी नाम की बस्ती है, वहाँ उनके पिता रहा करते थे।
1: और बहुत ही संघर्ष भरा जीवन दुर्गा खोटे जी का रहा। ऐसा है जयंत
0: जी
1: कि दुर्गा खोटे जी के लिए बहुत सारी बातें हैं हमारे पास करने को, लेकिन उसके पहले हम एक गीत सुनवाएंगे जो एक जमाने की बहुत ही अजीमुशान शाहकार, जिसे कहते हैं ना पृथ्वी वल्लभ, उस फिल्म में दुर्गा खोटे जी ने अभिनय किया था। वैसे तो दुर्गा खोटे जी हमें याद आती हैं सलीम की माँ के रूप में।
0: जी जो धवाई का अभिनय उन्होंने फिल्म मुगले आजम में किया था।
1: जी हाँ, लेकिन पृथ्वी वल्लभ इस फिल्म में उन पर फिल्माया गया एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जिसमें वो साज सिंगार कर रही है। तो इस गीत को सुनाते हैं, उसके बाद हम दुर्गा खोटे जी के बारे में कुछ और बातें करेंगे।

0: क्या बात है, पृथ्वी वल्लभ फिल्म की सुंदर से रचना से वो जमाना आंखों के सामने तैर गया। मनीषा जी, वास्तव में दुर्गा खुटी जी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 26 वर्ष की उम्र में ही उनके पति गुजर गए। तब से उनका जो संघर्ष शुरू हुआ और उन्होंने धीरे धीरे अभिनय करना शुरू किया। 1931 में पहली फिल्म उन्हें मिली
1: फरेबी जाल
0: जी, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ा। 1932 में उनकी फिल्म आई माया मच्छिंद्र, और ये वो जमाना था जब पुरुष जो है स्त्री भूमिकाएं करते थे,
1: यानी उस समय बहुत संघर्ष था एक अभिनेत्री के लिए अपनी जगह बनाना।
0: बिल्कुल, और ये संघर्ष उनके लिए कई मामलों में आगे जारी रहा। उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई आगे जाकर के।
1: क्या बात,
0: फिल्म
1: है?
0: का निर्देशन भी किया
1: जी।
0: मगर उससे पहले बता दे श्रोताओं को कि 1932 में एक फिल्म आई थी जो हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में बनी थी, अयोध्या राजा, यानी अयोध्या का राजा। और इस फिल्म में वो हमें सीता के रूप में दिखाई दी।
1: एक बात हम अपने श्रोताओं को जरूर बताएंगे कि प्रभात कंपनी से जुड़ी रही बहुत दिनों तक दुर्गा खोटे जी, लेकिन जैसा कि नाम है ना, उसी में ही शक्ति छुपी हुई है।
0: जी, जी,
1: और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं संघर्ष की, तो जो संघर्ष करने वाली स्त्री होती है ना, वो मूलतः कई मामलों में बहुत एंटरप्रेन्योरशिप भी होती है, यानी उनके अंदर बहुत नया कुछ करने का जज्बा था, इसलिए उन्होंने प्रभात कंपनी को बाद में छोड़ दिया और फ्रीलांसिंग करने लगी। और तो और उन्होंने बाद में अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी स्थापित की थी।
0: जी बिल्कुल, ये जो व्यक्तित्व उनका था एक बिजली की तरह था।
1: हाँ।
0: मेरा इशारा है उनकी एक फिल्म की तरफ जिसका नाम था सौदा मिली।
1: जी हाँ।
0: आगे उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई और उसका निर्देशन भी किया, उस फिल्म का नाम है साथी, जो बनी 1937 में।
1: उसके बाद आती है चरणों की दासी और भरत मिलाप 1947 में। इसके अलावा हम अपने श्रोताओं को और बताना चाहेंगे कि आप इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर्स एसोसिएशन से जुड़ी रही
0: जी, साथ ही आप मुंबई मराठी साहित्य संघ की भी एक क्रियाशील एक्टिव मेंबर थी।
1: देखिए, ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी दुर्गा खोटे जी को हम बहुत श्रद्धा से स्मरण कर रहे हैं। 22 सितंबर उनका स्मृति दिवस है
0: जी।
1: तो एक विशेष रिकॉर्डिंग अब हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं जो हमारे संग्रहालय से हम चुनकर लाए हैं।
0: अवश्य, और इस साक्षात्कार में दुर्गा जी से बातचीत की है मधुप शर्मा जी ने।
2: दुर्गा जी, आपकी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी?
3: फिल्म के हिसाब से देखा जाए तो प्रभात की हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, ये मेरी पहली फिल्म थी। लेकिन उससे पहले मैंने श्री भवनानी के एक पिक्चर में छोटा सा एक काम किया था
2: जी। तो ये टॉकी पिक्चर थी?
3: हाँ, वो टॉकी के शुरू शुरू का जमाना था और 1930 की बात है ये।
2: अच्छा, उस जमाने में तो कलाकार अपने अपने गीत भी गाया करते थे, आशा है आप भी गाती होंगी जरूर।
3: हाँ, मैं गाने से बहुत शौक रखती थी। असल में मैंने विराज खान साहब से तालीम भी ली थी 3-4 साल
2: जी।
3: और उस जमाने में आर्टिस्ट अपने अपने गाने गाया करते थे, प्लेबैक का तो कोई सिलसिला था ही नहीं उस पर, और आर्टिस्टों को काफी मेहनत करनी पड़ती थी। जैसे ड्रामा में अपने गाने का रिहर्सल करते हैं, उसी हिसाब से फिल्मों के गाने रिहर्स करते थे और वो गाया जाते थे डायरेक्टली।
2: तो इस लंबे अरसे में आपने हर तरह के अभिनय किए होंगे।
3: हाँ।
2: लेकिन फिर भी कुछ खास पसंद है आपकी?
3: मेरी ये खुशनसीबी है कि मुझे हर किस्म के रोल्स करने मिले
2: जी।
3: असल में मैंने जो रोल्स किए वो मैंने इसलिए किए क्योंकि मुझे वो स्टोरी पसंद थी, वो रोल पसंद था। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि मुझे कौन सा रोल ज्यादा पसंद था। मैं कहीं परमानेंट आर्टिस्ट तो रही नहीं, और अगर मुझे कोई स्टोरी पसंद नहीं आई तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि भाई ये काम मुझसे नहीं होगा। इसलिए मुझे इत्तेफाक से हर किस्म के रोल्स मिले, कुछ कॉमेडी के मिले, कुछ ट्रेजेडी के मिले, कुछ वीरता के मिले, कुछ जैसे घरेलू मिले। कुछ लोग कहते हैं कि चरणों की दासी में जो सास का पार्ट मैंने किया था वो तो बिल्कुल ही कमाल था, हालांकि मैं वैसी नहीं हूँ, बिल्कुल झगड़ेलू नहीं। मैं आपको
2: उसमें झगड़ेलू सास का था।
3: ओफो, बहुत ही इतना था कि जब मेरी बहू आई, मेरे लड़के की शादी हुई, मेरी बहू जब आई और उन्होंने पिक्चर देखी तो वो कहने लगी, हे भगवान, अगर ये पिक्चर मैं पहले देखती तो मैं कभी आगे रह के शादी नहीं करती।
2: अच्छा, अभिनय से फुर्सत होती है तो आप अपना समय किस तरह बिताना पसंद करती हैं ज्यादातर?
3: जब मुझे कुछ थोड़ी सी फुर्सत मिल जाती थी उस वक्त मैं अपना वो समय घर में बिताती थी। मुझे घर रखने का बड़ा शौक है और मेरे बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे। मैं अपना कर्तव्य समझती थी कि उनको उनकी पढ़ाई देखना, उनको अच्छी तरह से तालीम देना, और जो मुझे तालीम मिली थी वो बच्चों को मिलनी चाहिए। तो इस

0: आपसे मैं काफी समय उनके साथ बिताती थी।
1: रसोई वगैरह का भी शौक है आपको?
0: हाँ, मुझे बहुत शौक है महाराष्ट्रीयन पद्धति का। और पद्धति मैं नहीं जानती,
1: वो
0: लेकिन और लोग कहते भी हैं कि मैं अच्छी रसोई बनाती हूँ, मालूम नहीं।
1: अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या शौक रहे हैं आपके?
0: मुझे गाने का शौक था ही
1: जी,
0: और फिर मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक रखा।
1: अच्छा, विदेश भी गई होंगी?
0: हाँ, मैं 2-3 दफे विलायत गई थी, यूरोप गई थी, और जगह भी हुआ ही। और हर जगह से कुछ न कुछ नायाब चीज़ इकट्ठा करना घर के लिए। वैसे देखिए तो मेरा घर की तरफ ज़्यादा मेरी खींच है, मेरे दिल की, और मैंने काफ़ी समय भी इसमें डाला।
1: तो विदेशों में आप फिल्म उद्योग के भी कुछ लोगों से मिली होंगी ज़रूर?
0: हाँ, मैं काफ़ी लोगों से मिली।
1: अरे, तो आपके विचार में वहाँ का ये फिल्म उद्योग ज़्यादा तरक्की पर है भारत की नस्बत?
0: हाँ, ये ज़रूर है कि वो हमसे आगे बढ़े हैं। हालांकि टेक्निकली मैं समझती हूँ कि उनको काफी मौका मिलता है एक्सपेरिमेंट करने का।
1: जी, जी।
0: एक्सपेरिमेंट से लोग तो बढ़ ही जाते हैं आगे, हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिलता।
1: अच्छा, अभिनय की दृष्टि से?
0: अभिनय की दृष्टि से मेरा ख्याल है हमारे यहाँ वाकई बहुत अच्छे और बहुत इंस्टिंक्टिवली जो लोग हैं आर्टिस्ट, वो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ ज्यादा आर्टिस्टिक है। एक तो हम ज्यादा सेंटिमेंटल भी लोग हैं, भावना प्रधान हम लोग हैं, और वो भावना हम कभी दबा क्यों नहीं रखते, बताते हैं।
1: अच्छा, अपने जीवन की कोई ऐसी घटना आपको याद है कि जिसको आपको याद करके हंसी आ जाती है अभी?
0: मुझे तो अभी भी उस बात की हंसी आती है जब मैंने पहले भवानी साहब के पिक्चर में काम किया था।
1: जी।
0: तो मैंने समझा न जाने मैंने कौन सा बड़ा काम किया, और बड़े शौक से उम्मीद से मैं वो पिक्चर देखने गई।
1: जी।
0: जब देखा वो इतना भयानक था कि मैं वाकई बहुत डर गई। न मैंने मेकअप किया था, न मैंने कुछ इसके बारे में सोचा था। जिस उम्मीद से मैं गई थी और जो मैंने देखा, उसकी जब याद मैं करती हूँ तो मैं समझती हूँ कि वाकई लोग अपने आप को क्या समझते हैं, जब देखते हैं तो क्या देखते हैं। काश के लोग अपने आप को ऐसे देख सके।
1: अच्छा दुर्गा जी, बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की तरफ से और विविध भारती के सुनने वालों की तरफ से भी।
0: नहीं शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ चंद लफ्ज कह सकी। नमस्ते।
2: श्रोताओं, संग्रहालय से प्राप्त इस विशेष रिकॉर्डिंग को हमने आपकी सेवा में प्रसारित किया। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री दुर्गा खोटे से बातचीत की थी मधुप शर्मा जी ने। ये हमारी एक खास धरोहर है। और अब आगे बढ़ें हमारी बातचीत में। हमने इप्टा की बात की थी जब हम दुर्गा खोटे जी को याद कर रहे थे। इप्टा से ही जुड़े एक और कलाकार हैं जो हमें कई फिल्मों में दिखे हैं और बहुत ही उन्होंने अविस्मरणीय भूमिकाएं की हैं। उनके बारे में बहुत कम बात होती है, लेकिन उस कलाकार की प्रतिभा के हम सभी कायल हैं।
3: और इस कलाकार को हम उनके शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। उनका नाम असल में है सत्येंद्र कपूर और सब उन्हें पहचानते हैं सत्येन कप्पू के नाम से।
2: जी।
3: और सत्येन कप्पू साहब की शुरुआत असल में मराठी नाटक से हुई थी। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे जी का लिखा हुआ नाटक था, वही नाटक हिंदी में भी खेला गया।
2: हम अपने श्रोताओं को बता दें, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, जी हाँ, पुल देशपांडे, मराठी के महान नाटककार और लेखक।
3: जी हाँ। और इस नाटक को देखने के लिए फिल्म जगत के बहुत से महनीय कलाकार, निर्माता, निर्देशक उपस्थित थे।
2: जी।
3: और वहीं उन्हें एक निर्देशक ने चुन लिया अपनी फिल्म के लिए।
2: क्या बात है।
3: उनका नाम था नरेंद्र बेदी साहब। और उनकी फिल्म जवानी दीवानी में सत्येन कप्पू को पहला मौका मिला, पहला ब्रेक मिला।
2: और उसके बाद बड़े बड़े फिल्मकारों ने उन्हें ऐसे मौके दिए जिसकी वजह से वो आज भी हमारी स्मृतियों में जिंदा हैं। शक्ति सामंत जी की फिल्म कटी पतंग में वो दिखते
3: और
2: हैं,
3: और रमेश सिप्पी साहब की फिल्म सीता और गीता, और आगे संतान में हमने उन्हें देखा, दीवार फिल्म में हमने उन्हें देखा, बहुत सी फिल्में हैं। और सत्येन कप्पू साहब जिनके अभिनय से प्रभावित रहे, जिन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते रहे, उन कलाकारों के बारे में भी बताते हैं कि बलराज साहनी साहब हो या दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन जी या प्राण साहब है या कमल हासन, नए जमाने के कलाकारों तक ने उन्हें प्रभावित किया और वो उनके साथ अभिनय का मौका उन्हें मिला।
2: तो सत्येन कप्पू जी को भी हम आज याद कर रहे हैं श्रोताओं, और इनकी एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है जो हम आज खास तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं। उनकी आवाज सुनिए और आइए स्मरण करते हैं फिल्मी पर्दे पर चरित्र भूमिकाओं में अपनी छाप छोड़ देने वाले सत्येन कप्पू जी को।
4: मेरा यानी सत्येन कप्पू का बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपको कुछ लाइनें सुनाने जा रहा हूं जिन लाइनों से मुझे प्रेरणा मिली है और जिनकी वजह से मैं हमेशा आगे ही बढ़ता रहा। वो लाइनें लिखी हुई हैं हमारे फिराक गोरुपुरी साहब की। लाइनें हैं, उठो भी के अब दिन हैं बदलने वाले, उठो भी के अब दिन हैं बदलने वाले, मंजिल पे पहुंच जाएंगे चलने वाले, दीपक के लिए हट है पतंगे न कर बेआग भी।

जाते हैं चलने वाले। ये लाइनें आपने, मैं समझता हूं कि जरूर बड़े ध्यान से सुनी होंगी, और इन लाइनों में जो छुपी हुई बात है उसको भी आपने जरूर समझा होगा, क्योंकि ये लाइनें मैं समझता हूं कि मेरे जीवन को बदलने में बहुत ही मेरा साथ दिया। मैं आपको एक बात बताता हूं, जबकि मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पढ़ता था और जब कोई 6-7 साल का था तब मैंने वहां से नाटकों में काम करना शुरू किया, और जब बंबई आया तो यहां मैंने श्री बल्लाल साहनी की फिल्म देखी धोबी का जमीन, जिसे स्वर्गीय बिमलाय जी ने डायरेक्ट किया था। उस फिल्म में जो मैं देखने गया उसमें जो गाना था उसने मुझे बहुत प्रेरणा दी, जिसके बोल हैं कुछ तो निशानी छोड़ जा।

बेसिकली मैं थिएटर का आर्टिस्ट हूँ और थिएटर में मुझे कुछ खट्टे मीठे अनुभव हुए जिनमें से मैं एक छोटा सा अनुभव आपको बताता हूँ। हुआ यूं कि मैं अपनी पत्नी को नाटक दिखाने ले गया और नाटक में मैं हीरो था जिसमें मेरी पत्नी होती है, एक बच्चा होता है जिसका नाम विनोद होता है और कुछ ऐसे सीन थे उसके अंदर कि जहाँ रोमांटिक सीन, मेरी बीवी रोती है धोती है और मैंने वो किरदार वो रोल इतनी ईमानदारी से निभाया कि शायद मेरी पत्नी को इस बात का बुरा लगा हो मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे मैं घर पहुंचा और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई मुझे एक गिलास पानी दीजिए तो मेरी पत्नी बहुत जोर से चिल्लाई और एकदम गुस्से में कहा कि जाइए पानी विनोद की माँ से ले लीजिए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने उठाकर बहुत गहरे समंदर में फेंक दिया हो और मैं चिल्ला रहा हूँ कि अरे मुझे बचाओ, मुझे निकालो इससे, लेकिन कोई मल्ला कोई माझी मुझे निकालने वाला नहीं आया और मैं अब यकीन मानिए एक महीना तक उस घर के झगड़े में पड़ा रहा जिससे कि मैं समझता हूँ कि काफी मेंटली मुझे परेशानी हुई।

मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ अपनी एक फिल्म की। फिल्म का नाम था कुली, मनमोहन देसाई जी उसके डायरेक्टर थे। तो एक सीन आता है कि हमारी पिक्चर का विलन हमारे डैम को जहाँ मैं काम कर रहा होता हूँ उसका कुछ पुर्जा ऐसा खोलता है कि तेज बहाव में पानी बहता है और जिसमें हमारा गाँव भी बह जाता है और मैं भी बह जाता हूँ। तो मनमोहन जी को शॉट लेना था कि मैं नदी में मेरी लाश बहती हुई आ रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, उन दिनों बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और नदी का जो बहाव था बहुत ही जोरों पर था। तो मनमोहन जी मुझे बता ले कि भाई सत्येन कपूर जी आपको वहां से कूदना है और यहां से आपकी लाश गुजरेगी और हम बीच में जहां कैमरा हमें जूम करना हम कर लेंगे। मैंने कहा जी बेहतर है। तो मुझे कहा रेडी? मैंने कहा जी हां रेडी। तो जैसे उन्होंने एक्शन कहा तो इतने में वहां गांव की एक औरत बैठी हुई थी मुझे कहने लगी, ना ना ना साहब इधर मत कूदिए, यहां हर साल हमारी देवी बलि लेती है। खैर मुझे उस वक्त कुछ सोचने का मेरे पास टाइम ही नहीं था क्योंकि एक्शन बोल चुके थे मनमोहन जी और मैं भगवान का नाम लेकर नदी में थर से कूद पड़ा और बिल्कुल मैं तो हाथ पैर भी नहीं हिला सकता था, बिल्कुल लाश की तरह पड़ा हुआ था। एक जगह आकर के, एक मकान पे आकर के मेरी लाश रुकी और अपने आप उस जगह पे घूमी, उसने पूरा एक चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद में वो नदी के बहाव में आगे निकल गई। इतने में हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला कट, शॉट ओके हो गया, मैं बाहर आया। तो गांव के एक आदमी ने कहा कि भाई साहब एक मिनट सुनिए, बोले जहां आपकी लाश घूमी थी ना वहां पर एक भंवर है, कुआं है, आप बच गए। अब यकीन मानिए मेरे पाँव के नीचे से धरती निकल गई। वो जो जितने भी सेकंड गुजरे मुझ पे वो मैं जानता हूँ कि किस तरह गुजरे होंगे और मुझे अभी एहसास हुआ कि एक नई जिंदगी मिली थी मुझे। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं थिएटर से वास्ता रखता हूँ और हम थिएटर के कलाकारों की जिंदगी बड़ी अजीब सी होती है। एक्टिंग के साथ साथ कुछ घर की परेशानियां भी होती हैं, उलझने भी होती हैं। मुझे एक अपनी जिंदगी का एक हादसा याद आ रहा है जो मैं आपको सुनाता हूँ। हम जो हिंदी थिएटर करते थे, घर घर जाके टिकट बेचना, तीन तीन महीने एक ड्रामे की रिहर्सल करना, उसके बाद शो करना, तो ये काम बहुत ही मुश्किल था। एक प्ले था जिसकी मैं रिहर्सल कर रहा था दो या तीन महीने से और रिहर्सल करके एक दिन जब मैं घर पहुंचा तो भाई साहब ने कहा कि भाई पानीपत से टेलीग्राम आया है, तुम्हारे छोटे बच्चे का स्वर्गवास हो गया है और तुम पानीपत चले जाओ। मैंने कहा नहीं भाई साहब, बड़ी मेहनत करके हमने ड्रामा तैयार किया है और कल उसका शो होने वाला है, सो मैं शो छोड़ के नहीं जा सकता, कि शो मस्ट गो ऑन, ड्रामा नहीं रुकेगा। खैर मेरे घर पे जो बीती, मेरे परिवार पे जो बीती वो मैं जानता हूँ और हमने शो किया और इसी पर मुझे स्वर्गीय नरगिस भाभी की फिल्म मदर इंडिया का एक गाना याद आ रहा है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा।

गम से रंजूर ना हो ए यारो, गम से रंजूर ना हो ए यारो, गम भी उसी की ही मेहरबानी है। जिसको गम मिल सके ना दुनिया में, उसकी क्या खाक जिंदगानी है। सुख और दुख ये तो जिंदगी के हिस्से हैं, जिनसे हम अपने आप को कभी परे नहीं कर सकते। कभी कभी जिंदगी हर तरह से भरी पूरी होने के बावजूद ये एहसास दिला देती है कि कहीं वो खाली हो गई है। मैं आपसे एक अजीम हस्ती, महान कलाकार का जिक्र जरूर करना चाहूंगा जो आज हमारे बीच में नहीं है। उस महान कलाकार का नाम है संजीव कुमार। ये मेरी किस्मत थी कि सन 58 से मैं उनके साथ काम करता रहा, और जब पहला शो उन्होंने किया तो मुझे याद है कि लोग वाह वाह कर उठे थे कि एक नया लड़का एक करेक्टर को कितनी खूबी से निभा गया, और आखिरी दम तक वो अपने करेक्टर को, यानी जो भी पात्र कर गए हैं वो, उन्होंने बड़ी ईमानदारी, बड़ी संजीदगी से उसे निभाया, चाहे वो मजाहिया करेक्टर हो या गंभीर करेक्टर हो। वो जितने सोबर थे अपनी जिंदगी में, उतने मजाहिया भी थे। मुझे एक हादसा याद है, जब हम स्ट्रगल कर रहे थे जिंदगी की, तो मैंने उनसे 3 रुपए उधार लिए थे। मैंने कहा भाई मुझे 3 रुपए दे दो, तो कहने लगे भाई कब लौटाओगे। मैंने कहा कल लौटा देंगे। हुआ ये कि पैसे साहब वो मैं उनको नहीं लौटा सका। वक्त गुजरता गया, संजीव कुमार साहब बहुत बड़े हीरो बन गए और मैं भी छोटी छोटी फिल्में करने लगा। एक दिन मालूम हुआ कि उनकी और मेरी शूटिंग एक साथ एक ही फिल्म में है, तो मुझे उन्होंने कहा भाई तुम मेरे घर पे आ जाओ, हम चले चलेंगे साथ में। तो मैं उनके घर पहुंचा, उनकी गाड़ी में जा रहा था, तो मैंने कहा भाई संजीव आपने वो पहली गाड़ी जो ली थी कितने की ली थी। कहने लगे भाई वो पुरानी गाड़ी थी, मैंने सेकंड हैंड गाड़ी 6,000 में ले ली थी। तो मैंने कहा संजीव काम करो भाई, तुम वो गाड़ी तुम मुझे भेज दो। देखो भाई मैं नया नया आर्टिस्ट बनने जा रहा हूँ और इतना पैसा मेरे पास है नहीं, मैं तुम्हें 2,000 रुपए दे देता हूँ अभी, और बाकी 3,000 मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा। अच्छा भाई जब स्टूडियो पहुंचने को हम आ गए, यानी स्टूडियो नजदीक आ गया, तो मैंने उनसे कहा कि भाई संजीव वो तुमने वो गाड़ी के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया, 2,000 मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 3,000 तुम्हें धीरे धीरे चुका दूंगा। तो फौरन बोले कि भाई 3 रुपए तुमने लिए थे आज से 15 साल पहले, अब तक नहीं चुकाए, ये 3,000 रुपए तो शायद तुम मेरे साजनम भी नहीं चुका पाओगे। वो कलाकार, वो महान कलाकार आज हमारे बीच नहीं है, तो उन्हीं की याद में मैं आपको उन्हीं की एक पिक्चर खिलौना का गीत सुनाता हूँ।

0: सतीन कप्पू जी की आवाज हमने सुने
1: जी,
0: और एक बार फिर जो हमारी स्मृतियां हैं वो उन्हीं गलियारों में घूम गई जब 80 के दशक तक वो बहुत सक्रिय रहे, और उनकी आवाज सुनकर बड़ा अच्छा भी लगा। उनके द्वारा ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था जिसमें उन्होंने अपने पसंद के गीत भी सुनवाए थे।
2: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्र।

0: चित्र भारती।
1: साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग, और स्मृति शेष में नमन निर्देशक कुकू कोहली को। तो सबसे पहले संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सरकार द्वारा दिए जाने वाले देश के सबसे बड़े अवार्ड हैं। इनकी शुरुआत हुई थी सन 1954 में। ये पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किए जाते हैं। समय के साथ इन पुरस्कारों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती चली गई है। ये पुरस्कार तीन वर्गों में दिए जाते हैं, फीचर फिल्में, गैर फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। फीचर और गैर फीचर वर्ग में उत्कृष्ट सिनेमा को पुरस्कृत किया जाता है, जबकि सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन खंड में सिनेमा के अध्ययन और उसके विश्लेषण पर केंद्रित कृतियों को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का मकसद है बेहतर सिनेमा को प्रोत्साहित करना। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 22 सितंबर को एकता नगर गुजरात में प्रदान किए जाएंगे। इसे पहले केवड़िया के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि ये पुरस्कार साल 2024 के लिए दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आर्टिकल 370 को दिया जा रहा है। इसके निर्देशक हैं आदित्य सुहास जांभले। इसी फिल्म के लिए अभिनेत्री यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जा रहा है। बेहतरीन मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए पुरस्कार इस बरस दिया जाएगा नाग अश्विन सिंह रेड्डी की फिल्म कल्कि 2898 AD को।
1: ये 6000 सालों पहले देखा था,
2: वो शक्ति वापस आ गई।
0: किसी नए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर को दिया जाएगा। इसे बनाया है जाने माने अभिनेता रणदीप हुडा ने। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं अरुण माथेश्वरन, जबकि सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना काथा कादू को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं नंदकिशोर ईमानी। साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राजकुमार पेरियासामी को दिया जाएगा, उनकी तमिल फिल्म अमरन के लिए। ये फिल्म शिव अरूर की पुस्तक इंडियाज मोस्ट फियरलेस ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज पर आधारित थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा संयुक्त रूप से अभिनेता ममूटी और कार्तिक आर्यन को। ममूटी को मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम में उनके अभिनय के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जबकि कार्तिक आर्यन को कबीर खान निर्देशित फिल्म चंदू चैंपियन के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार संजय मिश्रा को हिंदी फिल्म भक्षक के लिए मिल रहा है, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म महाराजा के लिए सचना नामिदास को दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार अभिनेत्री रूपाश्री वरकाडी के साथ संयुक्त रूप से दिया जाएगा, जिन्होंने कन्नड़ फिल्म मिथ्या के लिए यह पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार दिया जा रहा है अभय जोधपुरकर को मराठी फिल्म घरात गणपति के इस गाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार वाइकोम विजयालक्ष्मी को मलयालम फिल्म ARM के इस गाने के लिए दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार दिया जा रहा है शहनाज जलाल को तमिल फिल्म ब्रह्म

0: युगम के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया जा रहा है। ये हैं तेलुगु फिल्म पुष्पा द रूल पार्ट 2 के लेखक बांडरेड्डी सुकुमार, मराठी फिल्म स्वर गंधर्व सुधीर फड़के के पटकथा लेखक योगेश देशपांडे और तेलुगु फिल्म लखी बस्कार के लेखक वेंकी अटुलुरी। बेस्ट साउंड डिजाइन का पुरस्कार फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए मानस चौधरी को दिया जाएगा और बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार दिया जाएगा तमिल फिल्म अमरन के लिए आर कलाई वन्नन को। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 के गानों के लिए शाश्वत सचदेव को और तमिल फिल्म अमरन के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए जीवी प्रकाश कुमार को। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मनोज मुंतशिर को फिल्म मैदान के इस गाने के लिए दिया जाएगा। चौहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों को भी पुरस्कार दिया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार सुमीरा राय की फिल्म भंगार को दिया जाएगा। रविराज मुर्मू को किसी निर्देशक की पहली नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा उनकी संथाली फिल्म आंगेन के लिए। नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आनंद एल राय को दिया जा रहा है उनकी फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए। आपको एक बार फिर बता दें कि इस बार पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में न होकर एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दिए जा रहे हैं। ये समारोह 22 सितंबर को आयोजित किया जाएगा जहां भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ है। अनंत नाग का नाम उन कलाकारों में शामिल है जिन्होंने अपने अभिनय का जलवा न सिर्फ कन्नड़ सिनेमा में दिखाया बल्कि हिंदी में भी वो नजर आए और कई अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अनूठी पहचान बनाई।
1: अदके बैतिने नानु दोड्ड अयोग्य।
0: आपको बता दें अनंत नाग का जन्म 4 सितंबर 1948 को हुआ था। उनका पूरा नाम है अनंत नागर कट्टे। यूं तो अनंत नाग कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं पर जानकारी के लिए ये बता देना चाहिए कि वो हिंदी तेलुगु तमिल मलयालम मराठी और अंग्रेजी फिल्मों में नजर आ चुके हैं।
2: सरकार को कुछ होने क्या
3: पता चल गया तुझे वो कहाँ है?
2: नहीं मालूम कहाँ गया माटी मिला
3: मालूम नहीं वापिस आएगा भी या नहीं।
0: उन्होंने अपने लंबे करियर में तकरीबन 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें 250 से ज्यादा फिल्में कन्नड़ रही हैं। वैसे अनंत नाग ने अभिनय के सारे आयामों को अपनाया है चाहे वो रंगमंच हो सिनेमा हो या टेलीविजन। चूंकि टेलीविजन का जिक्र चला है तो ये बता देना बहुत जरूरी है कि अनंत नाग आर के नारायण की कहानियों पर आधारित दूरदर्शन के बेहद लोकप्रिय सीरियल मालगुड़ी डेज में नजर आए थे और तब उन्हें घर घर पहचान मिली थी। अनंत नाग के लंबे करियर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने अपने किरदारों में बहुत ज्यादा विविधता रखी है। हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए हैं। अनंत नाग की शुरुआत कन्नड़ सिनेमा से हुई थी। फिल्म संकल्प में वो बतौर लीड एक्टर नजर आए थे। हाल ही में फिल्म KGF में वो नजर आए और नई पीढ़ी ने उन्हें पहचाना।
4: गरुड़न नोड़दागा रॉकेट कंफर्म आयतु। Here is a man who comes from that powerful place. अदक्के अवकाश इद्रू अवनन मुगसाकलिल्ला।
0: अनंत नाग ने ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 1 में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक आनंद इंगलागी का किरदार निभाया था। दरअसल ये किरदार फिल्म का सूत्रधार भी है। हिंदी में अनंत नाग अंकुर भूमिका कालीचरण और जुर्म जैसी फिल्मों में नजर आए हैं। सिनेमा और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 2025 में अनंत नाग को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा था। अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने के लिए ढेर सारी बधाइयां।

0: ये था संपादकीय, अब विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा।
1: हंस क्यों रहे?
2: हम अपने दोस्त और नवाब बुरहानुल मुल्क के रिश्तेदार के नगर पोते मीर रोशन अली में।
1: जरा होश में आइए हुजूर, जरा। हाँ सुनिए मेरी बात, सुनिए। यहाँ से भाग निकलते हैं।
0: सिनेमा और साहित्य दो अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन दोनों का आपसी रिश्ता बड़ा गहरा है। जब कहानी पर आधारित फिल्में बननी शुरू हुई तो इसका आधार साहित्य बना। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दादा साहेब फाल्के ने भारत की जो पहली फीचर फिल्म बनाई थी वो भारतेंदु हरीशचंद्र के नाटक हरीशचंद्र से प्रेरित और उस पर आधारित थी। साहित्यिक कृतियों पर समय समय पर फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन ज्यादातर ये कहा जा सकता है कि मुंबई के फिल्मकार साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाने से बचते हैं। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि मुंबई की अजंता मूवी टोन कंपनी ने सन 1933 के आसपास प्रेमचंद को मुंबई आमंत्रित किया था फिल्मों में लिखने के लिए। प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी ने फिल्म बनाई मिल मजदूर। निर्देशक ने मूल कहानी में थोड़े बदलाव किए जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आए। इस फिल्म में मजदूरों की क्रांति की बात की गई थी। कराची में कोई घटना हो गई और फिर फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सन 1934 में प्रेमचंद की कृतियों नवजीवन और सेवा सदन पर फिल्में बनी और ये फ्लॉप हो गईं। सन 1941 में भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर केदार शर्मा ने इसी नाम से एक फिल्म बनाई। ये फिल्म कामयाब रही। इसके बाद सन 1964 में केदार शर्मा ने इस फिल्म को दोबारा बनाया। इस बार फिल्म में रोशन का संगीत था। इस फिल्म को एक उत्कृष्ट कृति पर बनी एक उत्कृष्ट फिल्म के रूप में याद किया जाता है।

0: सन 1960 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी पर बनी फिल्म उसने कहा था। निर्देशक थे मोनी भट्टाचार्य, कलाकार थे सुनील दत्त और नंदा।
1: क्या नाम है तेरा?
2: कमली।
1: कमली, बड़ा प्यारा नाम है।
2: मेरा नाम नंदू है।
1: अच्छा नाम है ना?
3: और बारे पत्रा दें।
1: चल, तू इधर रोज आती है?
2: हाँ।
1: कल आना, मैं तुझे बड़े बड़े अमरूद दूंगा।
2: अच्छा, मैं जाऊँ? बड़ी देर हो गई है, मामा बिगड़ेंगे।
1: संभल के जाना। कमली, गल सुन।
2: क्या?
1: तेरी कुड़माई हो गई?
0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास धर्मपुत्र पर बी.आर. चोपड़ा ने फिल्म बनाई। सन 1961 में आई इस फिल्म धर्मपुत्र के निर्देशक थे यश चोपड़ा, कलाकार थे माला सिन्हा और शशि कपूर और इस फिल्म ने 9वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था।

मुंशी प्रेमचंद भले ही सिनेमा से निराश होकर लौट गए, लेकिन उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1963 में त्रिलोक जेटली लेकर आए फिल्म गोदान, जिसमें संगीत पंडित रविशंकर का था।

सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी लेकर आए फिल्म गबन, फणीश्वरनाथ रेणु की मशहूर कहानी मारे गए गुलफाम पर फिल्म तीसरी कसम बनी। इसे प्रोड्यूस किया जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने और इसके निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य, कलाकार थे राज कपूर और वहीदा रहमान। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही कामयाब न रही हो लेकिन 14वें

0: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
1: एक बात का गुस्सा तो नहीं कीजिएगा?
2: बोलो।
1: बात यह है, मेले में चोर पॉकेट मार बहुत आते हैं।
2: सो तो आते हैं फिर?
1: और देखिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, थोड़ा सा रुपया है, आप संभाल के रख लीजिए। तो
2: अगर मैं मार लूँ तो?
0: फिल्मों के लिए कई कहानियां लिख चुके और कई फिल्में बना चुके राजेंद्र सिंह बेदी की कृति एक चादर मैली सी पर बनी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। प्रेमचंद की कहानी पर सत्यजीत रे ने अपनी हिंदी फिल्म बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये फिल्म साल 1977 में आई थी।
3: नजर हो गया,
4: जाओ।
3: वो घर पर ही है, दीवान खाने में बैठे खेल रहे हैं।
4: खेल रहे
3: शतरंज मिर्जा साहब के साथ? इससे पहले कभी घर पर तो नहीं खेली। अल्लाह, मेरा तो जी होला जाता है, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया?
4: तो माओ जान शतरंज खेल रहे हैं,
3: कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो?
4: हो ही नहीं सकती, जब खुली बिसात सामने हो तो सिवाय मोहरों के और कुछ दिखाई नहीं देता।
3: अरे हाँ, ये तो वो भी कह रहे थे।
0: दरअसल हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर सफल फिल्म न बनने के कई कारण हैं। सिनेमा का अपना व्याकरण, अपना ढांचा है और सिनेमा एक पेशेवर इलाका है। जाहिर है कि फिल्में बनाने में पैसे लगते हैं और फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए साहित्यिक कृतियों में बदलाव किए जाते हैं जो साहित्यकार को मंजूर नहीं होते। फिर भी दुनिया भर में साहित्यिक कृतियों पर अच्छी फिल्में बनाने का सिलसिला जारी रहा है। राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश पर बासु चटर्जी ने 1969 में फिल्म बनाई थी। मनु भंडारी की कहानी यही सच है पर उन्होंने बनाई रजनीगंधा। साल था 1974।
5: प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में।
0: कमलेश्वर की लंबी कहानी आगामी अतीत पर गुलजार ने बनाई मौसम। 1975 में कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर बनी फिल्म आंधी।
6: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है।
0: इन दिनों सिनेमा किताबों को अपना तो रहा है, ये किताबें अंग्रेजी की होती हैं या अन्य भाषाओं की और उन पर पेशेवर फिल्में बनाई जाती हैं, जैसे थ्री इडियट्स बनी थी चेतन भगत के उपन्यास पर। हिंदी कृतियों पर अच्छे सिनेमा का इंतजार दर्शकों को हमेशा रहता है। ये था विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली में हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1943 में फिल्म माजाबाड़ के एक गाने के जरिए शुरू किया था। संगीत दत्ता दावजेकर का था। हिंदी में उनका पहला गीत था फिल्म चुनरिया के लिए, संगीतकार थे हंस राज बहल। आशा भोसले ने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर से अलग अपनी अनूठी छवि बनाई और हर तरह के गीत गाए।

उन्होंने 7 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। 2 बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिल्म उमरा

0: फिल्म इजाजत के लिए।
1: मेरा कुछ तुम्हारे पास पड़ा।
0: साल 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो सुनते हैं आशा भोसले की ये अनमोल रिकॉर्डिंग।
2: आकाशवाणी एक ऐसा नाम है जो बचपन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब छोटे थे हम लोग और जब रेडियो चालू हुआ था, वो जमाना अंग्रेजों का था और उस समय छोटे छोटे रेडियो सबके घर में होते थे। रिकॉर्ड्स तो कम होते थे, बहुत बड़े लोगों के पास होते थे। लेकिन शाम होती थी और हम कुछ भी काम हो छोड़ के, दौड़ना हो सब छोड़ के जाके गाना सुनते थे।

0: और हेमंत कुमार, जगमोहन, पंकज मलिक, नूरजहान, ये तो लोग याद हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं तब से हेमंत जी के बिल्कुल जबरदस्त फैन, कि मेरे बेटे का नाम भी हेमंत रखा मैंने। उनका गाना बताती हूँ आपको, बहुत चलता था उस वक्त। आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, ये गाना तब मैं सुना करती थी और मैं बिल्कुल उनके प्यार में थी, छोटी सी थी प्यार में, कि कभी हेमंत कुमार जी का आवाज मैं सुनती हूँ। ये आकाशवाणी नहीं होती तो कभी दुनिया को पता नहीं लगता कि कौन सिंगर अच्छा है, कौन सिंगर बढ़िया है और किसके गाने अच्छे हैं, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है, मतलब म्यूजिक किसी को पता ही नहीं लगता। ये पूरा काम जो है हमारी आकाशवाणी ने चालू किया, उस आकाशवाणी पे गाने आते थे, उससे लोगों को पता लगता था कि ये सिंगर बढ़िया है या कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे सब, या सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही नहीं, क्लासिकल सिंगर, उनके शो होते थे यहाँ पर, एक एक घंटा रात को वो लोग गाते थे, बड़े गुलाम अली हो, आमिर खान साहब हो, और ये सब गाते थे और लोग सुनते थे। तो ये आकाशवाणी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा पहला जो कदम था गाने की तरफ जाने का, वो रेडियो में हुआ। रेडियो में मुझे बुलाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाओ, पास हो गई तो घर आना, नहीं तो आना ही नहीं घर। मैंने जाके अपने पिताजी के गाने गाए, वो गाने क्लासिकल ढंग के गाने, तो तब दिनकर अम्मेम्बल करके उनके स्टेशन डायरेक्टर थे, वो आए, उन्होंने गाना सुना और कहा अरे ये दिना की लड़की है। ज्यादा सुना ही नहीं, मेरे सर पे हाथ रखा और कहा इस महीने में वो शो देते हैं ना, सुबह 7 बजे आके गाओ, दोपहर को 2 बजे गाओ, रात को कुछ 4 बजे गाओ, ऐसे शो दे दिए। और मैं कांपते कांपते घर गई कि मैं कहीं गाऊंगी कैसे, छोटी थी। और रेडियो, और रेडियो का जो सब लाइट लगता था, लाल लाइट, के रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, मतलब लाइव, तो वो लाइट देखते ही तो पसीने पसीने हो जाता है इंसान। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, यहाँ तक लाना था, पिताजी का आशीर्वाद, मंगेश शिव का आशीर्वाद है कि आज मैं उसी आकाशवाणी में बैठी हूँ। तब मैं 14-15 की थी, अभी भी मैं गा रही हूँ, स्टेज पे जाती हूँ, 3 घंटे खड़े होकर गाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, अब ऐसा सीधा सीधा रफी साहब गा रहे थे, तो मैंने बोला ऐसे नहीं, अगर ऐसे गए तो इशारों इशारों में दिल लेने, इशारों इशा हरकत दे दे के उसको ऊपर ले जाना। तो ये हमने काम किया। मैं जब गाना सुनती हूँ तो वो वक्त, वो सामने रिकॉर्डिंग थिएटर सब आ जाता है, तो मुझे जब आप कोई पूछता है कि आपको वो वक्त याद आता है तो आपको कौन म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है, ऐसे अगर देखा जाए तो मुझे पहला म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है मदन मोहन जी, के जिसको लैंग्वेज की तमीज, उर्दू आना, उर्दू जिसको आता हो वो बोल भी अच्छे लेते हैं, फिर वो ऐसे आदमी को साथ में रखते जिसको बहुत अच्छी उर्दू हो, साहिर साहब हुए या राजेंद्र कृष्ण, राजा मेहंदी अली, मजरू साहब, बहुत अच्छे अच्छे लोग साथ में रहते थे, तो उनके गाने का स्टाइल, सिखाने का स्टाइल, और वो उस वक्त के लोग इतने अच्छे थे। आपको बताऊं, मैं जाती थी बेटे गाना गाओ, ये ऐसा होता था, बेटे खाना खा के फिर गाना गाओ, किस तरह म्यूजिक डायरेक्टर थे। दीदी को भी बेटे बुलाते थे, बेटे गाना गाओ, तो ऐसे इतने बड़े नहीं थे हमसे, बड़े तो थे उम्र में लेकिन इतने बड़े नहीं थे, लेकिन वो बेटे बुलाते थे। जब पहला गाना गाया था तो डर डर के गाया था, बच्चे का गाना था पहला रिकॉर्डिंग, और बड़े बड़े थिएटर जो जहाँ शूटिंग होता है उनमें गाना रिकॉर्ड होता था। बॉम्बे में आने के बाद भी गाने वैसे ही रिकॉर्ड होते थे, बड़ा स्टूडियो है, वहाँ सेट लगा हुआ है और उस सेट में खड़े होके गाना गाना, कभी पेड़ है, कभी मंदिर है, कभी तालाब बना हुआ है, छोटा सा गंदा सा, छोटा सा तालाब को बड़ा दिखाते थे, तो ऐसी ऐसी जगह खड़े होके गाना गाते थे। पूरी रात गाना चलता था, पूरे दिन गाना चलता था। एक ही मन में था कि जो इंसान मेहनत करेगा उसी को भगवान यश भी देगा। असल में देखा जाए तो पिताजी जब गुजर गए 42, उसके बाद टाइम थोड़ा खराब आया, काम करने की आदत थी, शायद मेरे अंदर ही है वो कि काम करते रहो, सफाई होनी चाहिए, वर्गो हूँ, वर्गो को बहुत सफाई की जरूरत होती है 8 सितंबर। तो क्या होता है कि काम करना मीन्स पूरा जोर लगा के वो काम करना। आशा भोसले जब बोरेली में रहती थी, दादर में रहती थी, और आशा भोसले में कोई फर्क नहीं आया, ना खाने पीने में, ना पहनने में, ना ही बातचीत में, ना ही गाने में। गाना अच्छा करने की कोशिश की, संसार बढ़ता गया, बच्चे बड़े हो गए तो घर चेंज करने पड़े, वरना वही रहती
1: जी।
0: मुझे इन चीजों से कोई प्यार नहीं है, मैं मटेरियल चीजों से बहुत दूर हूँ।

0: मुझे चाहिए, इंसान को एक रूम की जरूरत होती है जिसमें एक टीवी हो, एक रेडियो हो, एक बाथरूम
1: जी
0: हो, पलंग हो। इंसान को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए,
1: जी
0: एक खाना बनाने का घर हो। तो मैं ऐसी औरत हूँ, मुझे जहाँ आप रखे, महलों में रखिए चाहे कहीं पर, मैं सब जगह पे खुश रहती हूँ। क्योंकि इंसान जो सपनों पे जीता है उसको कोई भी जगह चलती। मैं सपने में जीने
1: क्या
0: वाली औरत
1: बात,
0: हूँ। मैं हर में बैठी हूँ, मैं अपने सपनों में रहती हूँ, अपने ख्वाब में रहती हूँ। कोई भी ख्वाब मेरे को चलता है उसी में मैं बहती जाती हूँ। कैसे निकल गया दिन मुझे पता नहीं लगता है।
1: जी
0: फिर मैं खुद ही सोचती और भासती हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, कितनी देर से क्या

0: शेष। स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जाने माने निर्देशक कुकू कोहली को। कुकू कोहली का 25 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 77 साल के थे। कुकू कोहली का असली नाम था अवतार कोहली। उनका जन्म 4 जून 1949 को पेशावर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की राज कपूर के साथ बतौर सहायक। कई बरस तक राज कपूर के साथ उन्होंने फिल्म निर्माण के गुर सीखे। सनी देओल की फिल्म बेताब में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिल्म अर्जुन में भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। इसके बाद उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और बनाई धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म कोहराम। सन 1991 में उन्होंने फिल्म फूल और कांटे का निर्देशन किया। इस फिल्म के जरिए अभिनेता अजय देवगन ने रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रखा।
1: मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है।
0: इसके बाद उन्होंने फिल्म सुहाग बनाई, जिसके सितारे थे अजय देवगन, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और नगमा।

0: इसके बाद आई हकीकत, जो अजय देवगन और तब्बू के अभिनय से सजी थी। उनकी अगली फिल्म थी अनाड़ी नंबर वन, जिसमें गोविंदा डबल रोल में थे। इसके बाद कुकू कोहली ने फिल्म जुल्मी बनाई, जिसमें अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अभिनय किया था। इसके बाद उनकी फिल्म आई ये दिल आशिकाना। संगीतकार नदीम श्रवण ने इस फिल्म से संगीत जगत में वापसी की थी।
1: ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल।
0: कुकू कोहली की आखिरी फिल्म थी वो तेरा नाम था, जिसमें अर्जुन बाजवा और कांची कौल ने अभिनय किया था। विनम्र नमन। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का सितंबर महीने का अंक। शोध आलेख स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया।

0: तो अब हमारे पास वक्त नहीं है जयंत जी कि आज हम विविधा में कुछ और सुनवाएं, समय की सीमा है, हम अपने श्रोताओं से अब अनुमति ले लें।
1: बिल्कुल श्रोताओं, अगले संस्करण तक हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
0: और मनीषा जैन का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज देश भर में 1067 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत युवा एकजुट हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जा रहा है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ क्लैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। मुंबई के कोस्टल रोड पर आज सवेरे एक बीएमडब्ल्यू कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी। घायल व्यक्ति को नायर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को साइबर हमलों और अन्य बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन और विनिर्माण में सक्षम देश के रूप में उभरने के कारण भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि कई कंपनियां और देश अब भारत को अपने लिए खतरा मान सकते हैं। निर्वाचन आयोग आज नई दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित कर रहा है। इस दौरान मतदाता सूची में सुधार के लिए दावे और आपत्ति दर्ज की जा सकेंगी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में परिषद की सफलता पर बधाई दी है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा, ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए परिषद की प्रतिबद्धता दर्शाता है। भारत ने जापान के आयची नागोया में एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। एला वेनिल वलारिवन, सोनल मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को पहला पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान को कांस्य पदक मिला। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर एला वेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा के विनोद को बधाई दी। डॉक्टर मांडविया ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय दल के लिए भविष्य में गौरवशाली क्षणों की कामना की है। जापान एशियाई खेलों में महिला T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया था। चीन के साथ क्वार्टर फाइनल में वर्षा के कारण रद्द होने से बेहतर रैंकिंग के कारण बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंद दिया है।

मीरा सहरावत ने 8, इश्का चौधरी ने 3 जबकि लाल थन तुलांगे और नेहा ने 2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल

0: फिल्म सड़क से ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा, नदीम श्रवण का संगीत।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15%

0: इन पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल विविध भारती से।

0: केके को आप सुन रहे थे फिल्म जिस्म। सईद कादरी ने इस गीत को लिखा।
1: जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
2: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
1: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
2: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
2: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आज इस सफर में आपकी साथी अनुराधा उपाध्याय। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए हम एक इबारत या टेक्स्ट हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं, जिसमें छुपे होते हैं कुछ शब्द जो आपको पहचानने हैं और बताना है कि उन शब्दों से कौन से गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। देखते हैं आपके गीतों की लिस्ट हमारी लिस्ट से कितनी ज़्यादा मिलती जुलती है, और अगर ना भी मिले तो भी आप गीत कमेंट्स में लिख सकते हैं, हो सकता है वो गीत आज इस प्रोग्राम में हम शामिल कर लें। दोस्तों, आपके प्यार भरे संदेश हम तक पहुंच चुके हैं कमेंट्स के जरिए, और उन्हें भी पढ़ते हैं, साथ ही गीतों का सफर भी शुरू करते हैं। लेकिन उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने आज की इबारत या टेक्स्ट नहीं पढ़ी है, हम एक बार पढ़ देते हैं, उसके बाद इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। इबारत यानी कि टेक्स्ट कुछ इस प्रकार था। शाम का वक्त था, आसमान हल्का नीला था और दूर पहाड़ियों के पीछे सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। अचानक उसकी नजर ठहरी एक लड़की पर जो शाम के उन रंगों को निहार रही थी। उसने कुछ सोचा और आखिरकार पूछा, इतनी देर से आप यहां अकेली क्यों हैं? वो मुस्कुरा दी और कहा, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो शरारत से बोला, अच्छा, और अगर मैं नहीं आता? जवाब मिला, तो शायद ये दीवाना दिल तुम्हें ढूंढने निकल पड़ता। उसे देखकर उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, ये लड़की जाने कैसी है दीवानी। दोनों कुछ देर चुपचाप चलते रहे। सामने दूर तक फैली हंसी वादियां और खिला हुआ आसमान जैसे उन्हें किसी अनजान सफर के लिए बुला रहे थे। उसने अचानक कहा, चलो कहीं दूर निकल चलते हैं। कहां? जहां कोई हमें पहचानता ना हो, जहां बस बातें हों, रास्ते हों और ये खुला आसमान। पहाड़ी रास्तों से होते हुए कुछ दूर जाकर दोनों एक छोटी सी पहाड़ी पर रुक गए। नीचे घाटी में शाम उतर रही थी। वो चुपचाप आसमान को देखने लगी। उसने पूछा, भरोसा है मुझ पर? जवाब आया, दिल का ऐतबार क्या कीजिए। उस पल कोई इजहार नहीं हुआ, लेकिन शायद दोनों समझ गए थे। उसने पूछा, अगर कभी हमारी कहानी लिखी जाए तो कहां से शुरू होगी? जवाब आया, तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम से खत्म। दूर आसमान में बादल चांद के सामने से गुजर रहे थे। उस रात जब वे वापस लौटे तो दोनों के पास कोई बड़ा वादा नहीं था, बस एक एहसास था कि जिंदगी की भीड़ में कभी कभी कोई ऐसा मिल जाता है जिसके साथ एक साधारण सा रास्ता भी खूबसूरत सफर बन जाता है, और शायद यही मोहब्बत है, जहां कहानी किसी तारीख से नहीं किसी नाम से शुरू होती है। तो ये थी आज की इबारत जो कि फेसबुक पोस्ट पर भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, और आपके संदेशों का इंतजार मुझे रहेगा।

लव स्टोरी फिल्म से गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में, आनंद बख्शी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। और आपके संदेश भी हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गीतों के सफर के साथ शाम की सुहानी बातें होंगी और कुछ शामें दिल में उतर जाती है। विविध भारती जब शाम को नए पुराने गीत सुनाता है तो वे शामें अद्भुत हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक और श्रोता लिखते हैं, जिंदगी का सफर हो या रास्ते का, यदि हम सफर अच्छा हो तो रास्ता बड़ी आसानी से कट जाता है। वो दूर से उगता हुआ सूर्य, नीला आसमान, पहाड़, नदी और शाम को ढलता हुआ सूरज और बाद में चांद, ये सब प्रकृति के नज़ारे बेहद खूबसूरत हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं, शाम ढली तो कोई ख्वाब सा मिला, राहों में जैसे कोई जवाब सा मिला, ना वादा हुआ ना इजहार की बात, बस साथ चला कोई और सफर खास हो गया। बिल्कुल, हमारा सफर भी एकदम खास हो जाता है जब आपके मैसेजेस, आपके संदेश हम तक पहुंचते हैं।

आप अपनी बात हम तक रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर में एक लड़की और एक अनजाने व्यक्ति के अचानक मिलने और साथ में पहाड़ों और नदी के वातावरण में साथ साथ सफर करने की बात कही गई है और एक दूसरे को याद रखने की कहानी लिखी गई है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी जिंदगी में कोई यूं ही मिल जाता है और पता ही नहीं चलता कि कब उसके साथ बिताया एक छोटा सा पल यादों का खूबसूरत हिस्सा बन गया। ना कोई बड़ा वादा, ना कोई लंबी कहानी, बस थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा एतबार और साथ चलते हुए दिल का मुस्कुरा देना, शायद यही तो सच्चा प्यार होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के भारत में इंतजार और दीवानापन, दिल दीवाना और उनकी मोहब्बत जैसा कुछ उन्हें लग रहा है, इसी तरह के गीत आज के इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। बिल्कुल, और आज की इबारत का संदेश यह है कि साथी मनचाहा हो तो सफर कितना भी कठिन हो आसानी से कट जाता है। ये तो बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल आसानी से कट जाता है और पता भी नहीं चलता आपके इन संदेशों के बीच और प्यारे प्यारे गीतों के बीच। गीतों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन साथ ही एक सवाल, क्योंकि आज है छुट्टी का दिन रविवार, तो आज का दिन आप कैसे बिता रहे हैं? एक तरीका तो ये होता है कि सारे घर के काम आज के लिए निकाल लिए जाएं, पेंडिंग वर्क जिसे कहते हैं, जो कुछ नहीं किया, जो वक्त नहीं मिला पूरे हफ्ते करने का, वो आज के दिन निपटाया जाए। और एक तरीका ये होता है कि आराम से चाय की चुस्कियों के साथ, अच्छे गीतों के साथ आराम से बैठा जाए, सिर्फ आराम आराम और आराम किया जाए। तो आप किस तरफ आते हैं, आज का ये जो दिन है किस तरह से बिता रहे हैं, जरा साझा कीजिए अपने संदेशों के जरिए, अच्छा लगेगा हमें पढ़कर। आपके संदेशों का इंतजार और साथ ही ये गीत।

के रहेगा।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से अभी आपने सुना शैलेंद्र ने से लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस वक्त आप सुन रहे हैं सुरीला सफर मेरे यानी अनुराधा के संग और आपके संदेश हम तक पहुँच चुके हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज संडे छुट्टी का दिन, सुबह सुबह ही होम मिनिस्टर यानी कि मेरी धर्मपत्नी के ने घर के सामान की लिस्ट हमें थमा दी और वो संडे का इंतजार कर रही थी। मैंने भी शरारत से पूछा कि अच्छा मैं मना कर दूं, तो धर्मपत्नी मुस्कुराई और मैं मान गया। और अब वो मंडी में सब्जियां भी ले रहे हैं, फ्रूट भी ले रहे हैं और सामान भी लेने का इरादा है, और साथ ही अदरक इलायची वाली चाय पीते हुए रेडियो पर सुरीला सफर का आनंद ले रहे हैं। क्या बात है, इससे अच्छा संडे और कैसे मन सकता है, आप बताइए। एक और श्रोता लिखते हैं कि क्रिकेट मैच को छोड़कर सुरीला सफर का आनंद लिया जा रहा है और हर रोज का नाता जो है सुरीला सफर से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा भी कुछ इसी तरह का नाता है आप सब से। एक और श्रोता लिखते हैं कि आराम से लेटे हुए गीतों का मजा ले रहे हैं और बस सुबह से ही सारे प्रोग्राम हम सुन रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम घर पर बैठे हैं और बुजुर्गों का समय तो घर के छोटे बच्चों के साथ इतवार के दिन अच्छे से निकल जाता है क्योंकि स्कूल की छुट्टी होती है, बाकी समय गुजारने के लिए विविध भारती का साथ रहता ही है और हम काफी सारे प्रोग्राम सुनते हैं, ऐसे ही अपना इतवार भी निकल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि अब वो रिटायर्ड हैं तो रविवार हो या सोमवार सभी छुट्टी के दिन एक जैसे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि प्यार आदमी को जिम्मेदारी का हिस्सा बना देता है। जी हाँ बिल्कुल, और आज के दिन आराम से समय सुरीला सफर के गीत सुन रहे हैं और ये जो गीत है दीवाने का नाम ना पूछो, अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए, और कुछ दिलचस्प संदेशों का इंतजार कर रही हूं मैं कि किस तरह से इतवार का दिन निकलता है, आज क्या कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी दिन की क्या प्लानिंग रहती है, क्या कभी सोमवार ऐसा तो नहीं लगता कि स्कूल जाना है, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी शनिवार रविवार के बाद जब सोमवार आता है तो शाम होते होते कैसा महसूस होता है रविवार के दिन, बताइए मुझे।

आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम संडे को भी छुट्टी नहीं रखते, काम तो चालू रहता है और साथ में विविध भारती हो तो बोर होने का वक्त ही नहीं रहता। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप विविध भारती के साथ जुड़े हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन छुट्टी जरूर बनती है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सात गीतों की फहरिस्त में ये जो है चौथे नंबर का गीत शामिल हुआ है, क्या मौसम है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैं तो सुबह से ही सोच रही थी कि आज संडे है, आराम से काम करूंगी, लेकिन अचानक पतिदेव की जरूरी मीटिंग आ गई और फिर वही जल्दी जल्दी काम में जुट गई, लेकिन नो टेंशन, विविध भारती है ना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इन श्रोता का। एक और श्रोता लिखते हैं कि इतवार के दिन तो सभी की छुट्टी होती है, तो जो हमारी हेल्पर है आज उसके बच्चों की छुट्टियां भी रहती है, बस वो भी आज छुट्टी पर ही है। काम थोड़ा बढ़ गया है लेकिन इत्मीनान से धीरे धीरे निपटाए जा रहे हैं और सुरीला सफर के साथ भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत तो युवाओं को समर्पित है, क्योंकि इस कहानी में एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों अकेले में मिलते हैं और प्यार की बातें होती है, फिर वे पहाड़ों में वादियों में घूमते हैं, झरने के पास समय बिताते हैं और फिर लौट पड़ते हैं। अलग अलग दोनों को अपने घर जाने की मजबूरी है और अगले दिन फिर से मिलने का वादा करते हैं। क्या बात है, आपने तो ये कहानी लिख दी है। इबारत के बारे में एक और श्रोता लिखते हैं कि इस इबारत की खास बात यह है कि ये किसी मोड़ पर नहीं ठहरती, बल्कि एक मुलाकात से शुरू होकर एहसासों के उस मुकम्मल सफर को बयां करती है। शाम का ढलना, पहाड़ों और वादियों की बातें, दो दिलों के बीच किसी तरह का वादा ना होना लेकिन विश्वास का पनपना बहुत ही खूबसूरत लगता है। जी हाँ, बिल्कुल, विश्वास पर ही दुनिया कायम है। और हम बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में आगे अगले गीत की तरफ।

वारिस फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे। वर्मा मलिक ने इसे लिखा, उत्तम जगदीश का संगीत। आपके संदेश हम तक पहुंचे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि रविवार के दिन छुट्टी होती है, सभी लोग घर पर ही होते हैं और सड़कें कुछ खाली खाली दिखाई पड़ती है। बाजारों मार्केट में कुछ भीड़भाड़ सी दिखाई देती है और ये सब देखकर लगता है कि रविवार अपनी पहचान स्वयं करवा रहा हो। जी हाँ, बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम अभी हैदराबाद में हैं, बेटियां जवाइसा के साथ हैं और यहाँ पर गणेश विसर्जन चल रहा है और बाद में प्रसाद भंडारा होगा और हम बस एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पर विशेष पंक्तियां, ढलती हुई शाम ने एक नया पैगाम दिया, दो अजनबी धड़कनों को एक ही नाम दिया। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखी है आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यह भी इत्तेफाक है कि आपने जो आज सुटीला सफर प्रोग्राम में सवाल पूछा है, उसी समय और इत्तेफाक से उसी सवाल पर मैं अपना कमेंट टाइप कर चुका था। और यही तो बात है, विविध भारती मुंबई से हमारी जो पहचान है, जो प्यार है, ये उसका प्रतीक है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपके संदेश हम तक भेजते रहिए और बताइए कि आज का रविवार, आज का ये जो दिन है, किस तरह से बिता रहे हैं आप, या फिर

0: क्या सोचा था और वैसा नहीं हुआ, क्या प्लानिंग थी वैसी नहीं हुई, ये भी हमें लिख भेज सकते हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे सोमवार आने को होता है तो कैसा लगता है, क्या अभी भी ऐसा लगता है कि परीक्षा आने वाली है, अभी भी ऐसा लगता है कि स्कूल में जाना है, किस तरह के भाव आते हैं मन में, ये भी लिख सकते हैं। दिलचस्प संदेश रहेंगे तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा।
1: एक विलक्षण गायक,
2: अरे ओरे हे,
1: संगीत के साधक,
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की,
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम,
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर विविध भारती से।

फिल्म कलाकार से गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना। इंदुवर ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। इस गीत के बारे में बहुत से संदेश आए हैं कि ये गीत तो हमने सोचा ही था और हमारी लिस्ट से, हमारी फहरिस्त से मेल खाता है ये गीत। जी हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है आसान शब्दों में ये पता चल गया था। और वैसे भी हम भी चाहते हैं कि आपके आप जो कुछ गीत चुने वो आसानी से आपको पता चल जाए, क्योंकि हमारा मकसद तो संगीत में सफ़र के साथ आपके साथ चलना है ना। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि रविवार ही क्या अपितु आने वाला हर एक पल ही नया है, ऐसी अनुभूतियों में ही रहते हैं हम और ऐसे ही जीते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हवाइन गिटार का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है नीले नीले अंबर इस गीत पर। एक और श्रोता लिखती है कि आज मैं कमेंट नहीं कर पा रही हूं पर प्रोग्राम जरूर सुन रही हूं और आपके साथ ही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखती है कि आज की इबारत पढ़कर ऐसा लगा जैसे शाम के रंगों में कोई पुराना गीत धीरे धीरे उतर आया हो। कहीं इंतजार है, कहीं एतबार है, कहीं साथ चलने की चाह है और कहीं बिना कहे समझ लेने वाला रिश्ता। शायद मोहब्बत भी ऐसी होती है, बड़े वादों से नहीं, किसी का साथ साधारण से रास्ते को बहुत ही अच्छा, बहुत ही हसीन बना देता है। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके संदेश इस सुरीला सफर को खूबसूरत बना रहे हैं। और फिलहाल चलते हैं अगले गीत की तरफ और आपके संदेशों का इंतजार है कि अब कैसा लग रहा है रविवार।

कश्मीर की गली, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। SH बिहारी ने इसे लिखा, OP नैयर का संगीत। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी इतवार की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वैसे तो मैं एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हूँ, रिटायर्ड हूँ लेकिन टायर्ड बिल्कुल नहीं हूँ। इतवार का दिन मेरे लिए बड़े मायने रखता है। मुझे बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक रहा है, तो इस दिन हमारी कॉलोनी के सामने जो पार्क है वहाँ पर लड़के क्रिकेट खेलते हैं और बिना झिझक के मैं उनकी टोली में शामिल हो जाता हूँ, खेल लेता हूँ और उन्हें एहसास बिल्कुल नहीं होता कि कोई बूढ़ा हमारे साथ खेल रहा है। इस तरह मेरा इतवार बड़े मज़े से गुजर जाता है। क्या बात है, ये तो सचमुच बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि घर पर ही बैठे हैं, कोई घूमने जाने को तैयार है और कोई घूमने जाने को नहीं तैयार है, शायद ऐसा ये लिखना चाह रहे थे। मौज करो, सब झूमो गाओ, आज रविवार है। क्या बात है। एक और श्रोता लिखती है कि विविध भारती के साथ काम काम नहीं लगता है, संगीत में इंजॉय करते हुए हम हाथ का काम कब पूरा हो जाता है, हमारे हाथ से किए हुए काम कब पूरे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ऐसे रोज ही छुट्टी हो, काम भी हो, सब कुछ एक बराबर। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता लिखते हैं, जैसे हफ्ते की जेब से गिरा हुआ कोई खाली लम्हा जिसे उठाकर हम थोड़ी देर अपने पास रख लेते हैं, ना कोई जल्दी ना कोई हिसाब, बस धूप चाय और खुद से मुलाकात। ये है रविवार इनके हिसाब से। क्या बात है, बहुत ही सुंदर पंक्तियों में आपने ये लिखा है, बहुत ही सुंदर। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार, ये आकाशवाणी की विविध भारती सेवा है। जब ये आवाज़ गूंजती है तो ऐसा लगता है मानो वक्त वहीं ठहर गया हो। रविवार का दिन सुकून, पुरानी यादों और अपनों के साथ फुर्सत के पल बिताने का नाम है। भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर मेरा तो रविवार की सुबह की चाय की चुस्कियों और विविध भारती की सुरीली धुनों के साथ बेहद खास अंदाज में बीत रहा है। क्या बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं, बिग फैन ऑफ विविध भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन प्यार भरे संदेशों का।

लता मंगेशकर की आवाज में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। अनजान ने इसे लिखा कल्याण जी आनंद जी की तर्ज। और हमारे पास संदेश पहुंच चुके हैं। जी हाँ, एक संदेश यह आया है कि नीले नीले अंबर पर जो गीत अभी आपने सुनवाया कलाकार फिल्म से, उसमें जो विशेष वाद्य है दरअसल वो स्पेनिश गिटार है, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का रविवार मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे गीत सुनने को मिल रहे हैं और अभी याद आया कि कश्मीर की कली फिल्म रविवार को ही देखी थी। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि हम कमेंट्स करें या ना करें लेकिन फिर भी श्रोताओं के शानदार कमेंट्स जो पढ़ते हैं और साथ में सुनवाए जाते हैं इस प्रोग्राम में, वो सुनकर बहुत अच्छा लगता है और मन आनंदित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि 70, 80 और 90 के दशक में इतवार का बेसब्री से इंतजार रहता था और उस वक्त फिल्में देखते थे टीवी पर, दूरदर्शन पर, और साथ ही विशेष काम और शाम के खाने का इंतजाम करके हम बड़े शौक से हल्के फुल्के नाश्ते के साथ फिल्म भी देखते थे और वो जो वक्त था कि सब परिवार एक साथ बैठकर टीवी देख रहा है या एंजॉय कर रहा है, वो कुछ अलग ही था। एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही प्यारे प्यारे गीत बज रहे हैं और आज का रविवार बहुत खूबसूरत तरीके से गुजर रहा है सुबह से लेकर अब तक। जी हाँ, और आगे भी चलता रहेगा, बने रहे विविध भारती के संग।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत आपने सुना, शर्मीली फिल्म से नीरज ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की धुन थी। और बस ये गीत यहीं तक आपको सुनवा पाएंगे क्योंकि वक्त हो चला है। जाते जाते आपके दो मैसेजेस संदेश हम पढ़ देते हैं कि एक श्रोता ने लिखा, हम आपको वचन देते हैं कि हम हमेशा विविध भारती के साथ बने रहेंगे क्योंकि विविध भारती हमारे दिलों की धड़कन है और धड़कन तो एक पल को भी नहीं बंद होनी चाहिए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। और साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि पहले के इतवार और आज के इतवार में बहुत फर्क आ गया है। महानगर में शनिवार इतवार का मतलब है बाहर की आउटिंग करना और हमारे उस इतवार का मतलब था साथ में बैठना, घर पर बैठना। जी हाँ, फर्क तो बहुत आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे संदेशों के लिए और आप बने रहें हमारे साथ इस प्रोग्राम से। फिलहाल मुझे

प्यार में कभी कभी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शान की आवाज़ में। गीत लिखा था विशाल राज कौशल ने और संगीत विशाल शिराज सम्राट का था। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए हम दिल दे चुके सनम फिल्म का गीत, कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद सलामत, डोमिनिक और साथियों की आवाज में। शब्द रचना है महबूब की और संगीत इस्माइल दरबार का।

0: कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद सलामत और डोमिनिक और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही हम दिल दे चुके सनम फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT द्वारा किया जा रहा है। सत्र के दौरान केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति BV नागरत्ना, NGT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उपस्थित रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन प्रवास के दौरान सिंहस्थ 2028 को लेकर नीलगंगा रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे विकास एवं निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही IT पार्क पहुंचकर वहां विकसित की जा रही अधोसंरचना एवं सुविधाओं का अवलोकन भी किया।
1: हर वर्ष बीते वर्ष का रिकॉर्ड टूट रहा है। जहां 2022-23 तक 60-70 लाख लोग आते थे, गए साल ही 8 करोड़ से ज्यादा लोग उज्जैन आए, इस साल ये 12 करोड़ से बाहर जा रहे हैं। तो हर दूसरा व्यक्ति जो राज्य में आ रहा है वो हमारे उज्जैन की तरफ आ रहा है। तो उज्जैन इंदौर ये पूरा धार्मिक पर्यटन का एक नया केंद्र के रूप में उभर रहा है और ये पूरी इकोनॉमी बदल रहा है। आर्थिक रूप से भी हमारे लिए सब प्रकार के मार्ग खोल रहा है और सभी की व्यवस्था जुटाने के लिए सरकार भी पूरा मन खोल करके काम कर रही है।
0: भारत की एला वेनिल विलारिवन ने जापान की आइची नागोया में एशियाई खेलों में महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल

स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने पहले जीते गए टीम रजत पदक के बाद व्यक्तिगत रजत पदक भी अपने नाम किया। वहीं एशियाई खेल 2026 में भारतीय तैराक ऋषभ दास ने पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर एला वैनिल विलारिवन, विदर्शा के विनोद और सोनम उत्तम मस्कर को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि इस सराहनीय उपलब्धि के साथ भारत का एशियाई खेलों में पदकों का खाता खुला है, जिससे देश को उन पर गर्व है। उन्होंने तीनों खिलाड़ियों को भविष्य में भी सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट लगातार फल फूल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बोत्सवाना से भारत लाई गई चीता सीसीबी 2 को गांधी सागर अभ्यारण्य के जंगलों में विमुक्त करेंगे। नई मादा चीता के गांधी सागर पहुंचने के साथ अभ्यारण्य में 2 नर और 2 मादा सहित कुल 4 चीते हो जाएंगे। इससे गांधी सागर में चीता संरक्षण एवं पुनर्स्थापना के प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई से पहले मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर तेज हो सकता है। उत्तर अंडमान सागर में बन रहा निम्न दाब क्षेत्र प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर सकता है। अगले 4 दिन भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर समेत कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि 23 सितंबर को प्रदेश में भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन नए सिस्टम की दिशा और ताकत के आधार पर मौसम के पूर्वानुमान में बदलाव हो सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सेवा संकल्प अभियान के तहत पन्ना में सीएम राइज विद्यालय इंद्रपुरी एवं सांदीपनी उत्कृष्ट विद्यालय बायपास में चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं धार जिले में भाषण एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं में 26,684 विद्यार्थियों ने भाग लिया। झाबुआ में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा तथा सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा के तहत पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। मैहर संगीत महाविद्यालय में स्वर्गीय पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की पुण्यतिथि पर स्मृति संगीत प्रसंग का शनिवार को आयोजन किया गया। सिंगरौली एनटीपीसी विंध्याचल परियोजना में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। शहडोल जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 2 अलग अलग घटनाओं में 2 चरवाहों की मौत हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: दोनों वायु सेनाओं के बीच।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौसी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नगोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। भारत महिला क्रिकेट के फाइनल में शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
2: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई।

0: इनमें नीतियां बनाने, उन्हें लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित करने में आने वाली कमियों पर भी विचार किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बेहतर बनाने और विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 14 राज्य इसमें भाग लेंगे, जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी आमंत्रित किया गया है। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान 22 से 24 सितंबर तक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन भी होगा। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के युवा शामिल हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। नशा मुक्त पंजाब यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ आज विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फजिलका के सादिकी सीमावर्ती क्षेत्र से किया। उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ आसफ वाला युद्ध स्मारक पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस यात्रा को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
2: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
1: श्री मेघवाल ने नशा प्रभावित परिवारों के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके दुख में भागीदार हुए। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पठानकोट के सीमावर्ती जिले से यात्रा का शुभारंभ किया था। यह यात्रा पंजाब की 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करना है, ताकि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदला जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तेलंगाना में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन इस अभियान में भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल के अंतर्गत आज हैदराबाद में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
3: देशव्यापी अभियान के तहत आज हैदराबाद के नेकलेस रोड पर नशा मुक्त भारत साइकिल रैली आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने इस रैली में हिस्सा लिया और नेकलेस रोड पर युवाओं और साइकिल चालकों के साथ साइकिल चलाई। युवाओं पर नशीले पदार्थों के गंभीर असर का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि स्वस्थ युवा ही एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का आधार है। उन्होंने सभी से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। हैदराबाद से गोपागोनी सप्तगिरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है बिहार के किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया के लाभ पर हमारी विशेष श्रृंखला।
4: बिहार में इम्पोर्टेड नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत दिसंबर 2015 से की गई। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इसके इस्तेमाल से राज्य में अरहर और सोयाबीन सहित दलहन फसलों की वृद्धि में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अन्य फसलों में करीब 10% की वृद्धि हुई है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दे रही है। पैक्स और अन्य खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कृषि भूमि और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक भी किसानों को इसके उपयोग और लाभों की जानकारी दे रहे हैं।

0: लोग राज्य सरकार के स्तर पर प्रत्येक डेमोन्स्ट्रेशन में जो भी हमारे किसानों के मध्य यदि हम फील्ड में किसी उपज के प्रदर्शन करते हैं या केविके के माध्यम से कोई काम कर रहे होते हैं तो आम किसानों के बीच इसकी पहुंच अधिकाधिक सुलभ हो उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि जितने भी हमारे डेमोन्स्ट्रेशन चाहे वो खाद्य बीज की योजना राज्य सरकार के स्तर पर किसानों के बीच जाएगी उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हमारे राज्य सरकार के जितने भी किसान हैं उन तक इसकी सुलभता हो सके तो पैक्स एवं अन्य रिटेलर के माध्यम से एक निर्धारित मात्रा इसकी उपलब्ध रहती है।
1: कृषि विभाग के अनुसार किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के तहत नीम कोटेड यूरिया के साथ अन्य उर्वरकों और जैविक खादों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
4: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय वायुसेना जोधपुर वायुसेना केंद्र पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। एक रिपोर्ट।
5: 14 दिवसीय अभ्यास मंगलवार को समाप्त होगा। ये अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायु सेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। भारतीय वायु सेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ASU-30 MKI और रफाल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। जापान AF-2A लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। अभ्यास वीर रक्षक 2026 सामरिक दक्षता और एरोस्पेस चालन तालमेल को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
2: ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करता रहेगा।
6: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए मनीष शिवा।
2: बांग्लादेश के ढाका में आज कई बम धमाके हुए। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। इन खेलों के बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं जागृति शर्मा।
8: जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनेल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद अपना व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। 2025 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता वलारिवन ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए। जापान की हिनाता ताइची ने रिकॉर्ड 253 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

0: पहले भारत की एलाविनिल सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान को कांस्य पदक मिला। इस बीच सुचिका तारियाल ने इतिहास रच दिया है। वे एशियाई खेलों में महिलाओं के पारंपरिक 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस जीत के साथ सुचिका सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। भारत एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट मैच के फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। भारत के 196 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 16वें ओवर में 81 रन पर ही सिमट गई। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई हैं। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंदकर शानदार शुरुआत की। दीपिका सहरावत ने 8, इशिका चौधरी ने 3, जबकि लाल थंत लुआंगी और नेहा ने 2-2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौजी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत पहुंचा। शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मधुमती फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत। और इससे पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया वक्त फिल्म से, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में आपने सुना था, साहिर लुधियानवी ने उसे लिखा, रवि का संगीत।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें ऐसे धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे प्रोग्राम सदाबहार नगमे विविध भारती से।

आशा भोसले की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे साहेब बीवी और गुलाम फिल्म से। शकील बदायनी ने इसे लिखा और हेमंत कुमार का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत गाइड फिल्म से अभी आप सुन रहे थे शैलेंद्र के लिखे बोल एसडी बर्मन की तर्ज। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे संपन्न होता है।

0: यह विविध भारती लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत
2: मन चाहे गीत
1: मन चाहे गीत
0: श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस प्रोग्राम में मनचाहे गीत, जिसका नाम है आपके प्यार भरे फरमाइशी गीत जो आपने लिख भेजे हैं पत्रों के जरिए हम तक पहुंच चुके हैं और आज इस प्रोग्राम में शामिल होने को एकदम तैयार है। आज का ये गीतों का सफर आप तय करेंगे अनुराधा उपाध्याय के संग। चलिए शुरुआत करते हैं इस पहले गीत के साथ।

जानी दुश्मन इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। वर्मा मलिक ने इसे लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी थी गांव हिवरखेड़ तेलहारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार भारती पारस।

मन्नाडे की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे श्री 420 फिल्म का नाम शैलेंद्र ने इसे लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज। इसे सुनना चाहा था गणेशपुर गंज डूंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी फिरासत हुसैन मुनव्वर लल्ला पप्पू बिजली वाले शेख शमा परवीन अलकमर बेगम अफसाना बेगम महजवी शेख और मिर्जा नसरीन बेगम ने। साथ ही ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से

मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार और मोहम्मद हसनैन ने इसे सुना चाहा था। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका ने ग्राम छेगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना, भूपेंद्र, झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा वाघे ने इसे सुनना चाहा था। साथ ही सेक्टर 9 पंचकुला से रमेश गुलाटी, स्नेह, हिमांशु और देवांशु गुलाटी ने इसे सुनना चाहा था और वरुण जवुलका से महेंद्र सरकटे, विजया और मिलिंद ने इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। पगला कहीं का फिल्म का नाम हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और इसे सुनने के लिए हमें पत्र मिले छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानू के, साथ ही नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी हटौद बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर और राजकुमारी पटेल ने। गुजरात मादनगर से राहुल ओजा, प्रतीक ने इसी गीत की और साथ ही दीप्ति, उन्होंने इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी। मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत निशु और भूपेंद्र, और शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, अर्पा पैरी पार्वती और राधा ने इसी गीत को सुनना चाहा था।

लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, रविंद्र जैन का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहा था मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गुगलानी, मीनाक्षी तिवारी और नरेंद्र तनेजा ने। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या सुच्चा सिंह पाठक ने। रिधोरा से बाबूलाल बोराखेड़े, गोकुला और मंगेश बोराखेड़े ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा था बाजार चौक पुलगांव से अब्दुल कलाम और नाजिमा अंजुम ने। इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक और मयंक ने, साथ ही चेतन नाहटा ने। और इसी गीत को सुनना चाहा था जसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश, निवृत्ति और संजय चौहान ने।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में धरती फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन की तर्ज थी, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और इसे सुनना चाहा था कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा, टीडी मल्होत्रा मोहाली से जयवीर सिंह ठाकुर ने, और साथ ही शीतल पार्क राजकोट से कासिम संगवाणी, इकबाल और अनवर ने, शहर अंबिका चौक बीड़ से जनार्दन वेद पाठक, भाग्यश्री चीयू माऊ बिट्टू और आरवी ने, मोलनपुर मंडी से कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, अंश बिट्टू और दीपक जैन ने, चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद ने इस गीत को सुनना चाहा था, और साथ ही साथ जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन और महेंद्र जैन ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मनचाहे गीत यहीं संपन्न करते हैं।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी यह है विविध भारती।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवाते हैं नाटक स्वप्न वासव दत्ता का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।

0: ये हमारे राजगृह का प्रमदवन कैसा है?
1: अद्भुत है, सुंदर है राजकुमारी।
2: राजकुमारी पद्मावती, देखिए मेरे अंजुरी की ये शेफाली का फूल रक्त संख्या के टुकड़ों से चमक रहे हैं।
0: हाँ चेटी, अद्भुत है ये फूल, है ना अवंती के?
1: बहुत ही सुंदर है।
0: और तोड़ो?
1: नहीं नहीं, और न तोड़ो। क्यों रोकती है?
0: जब आर्यपुत्र यहाँ प्रमदवन में आकर इन फूलों का विस्तार देखेंगे तब मैं उसे अपना सम्मान मानूंगी।
1: सखी, आर्यपुत्र तुम्हें बहुत प्रिय हैं।
0: नहीं जानती अवंती के, लेकिन आर्यपुत्र के बिना मैं अत्यंत उत्कंठित हो जाती हूँ। बस मुझे एक संदेह है।
1: क्या?
0: जैसे आर्यपुत्र मेरे हैं अवंती के, क्या वैसे ही वासुदत्ता के भी थे?
1: उससे भी बढ़कर।
0: तुमने कैसे जाना?
1: हाँ, यदि उनका प्रेम कम होता तो वासवदत्ता अपने आत्मियों परिजनों को यूं सहज छोड़ पाती?
0: हाँ संभव है।
2: राजकुमारी, आप महाराज उदय से कहती क्यों नहीं कि आप भी वीणा सीखेंगे?
0: मैंने कहा था जेटी।
1: फिर क्या कहा उन्होंने?
0: कुछ नहीं, केवल दीर्घ निश्वास छोड़ वे चुप रहे।
1: ओह,
0: उस समय शायद आर्या वासुदत्ता के गुणों का स्मरण हो आया हो उन्हें।

0: Sziget.
1: गिरे हुए बंधु जीव कुसुमों और अविरल पवन से ये प्रमदवन कैसा रमणीय हो रहा है, है? अरे इधर नहीं उधर चले श्रीमान वत्सराज।
2: मैं आ गया मित्र वसंतक।
3: मैंने उज्जैनी में राज कन्या वासव दत्ता को जब देखा तब मेरी अवस्था अकथनीय हो गई थी। तब काम के पांचों बाण मुझ पर पड़े, हृदय आज भी उस चोट से व्यथित है। और मित्र अब प्रहार पर प्रहार हुआ है। यदि मदन शरों की संख्या 5 ही है तो ये छठा कहां से आ गया?
1: देवी पद्मावती कहां गई? देवी पद्मावती लता मंडप में तो नहीं गई? व्याघ्र चर्म से दिखने वाले असन कुसुमों से ढके पर्वत तिलक शिलापट पर तो नहीं जा बैठी? तीव्र गंध वाले सप्त छंद वन में तो नहीं गई? अरे अरे कहीं हिरणों और पक्षियों की अनुकृति से चित्रित दारू पर्वत पर तो नहीं चली गई देवी?
0: देखिए राजकुमारी पद्मावती, सामने से महाराज उदयन चले आ रहे हैं। हाँ, वही तो है चेटी। अवंतिकी, तुम पर पुरुष का दर्शन नहीं करती ना, तुम्हारी इसी चरित्र रक्षा के कारण मैं आर्य पुत्र का दर्शन त्याग रही हूँ। वे हमें नहीं देखे इसलिए इस माधवी लता मंडप में चले। यही करें राजकुमारी।
1: अरे लगता है श्रीमती पद्मावती यहाँ आकर लौट गई।
2: कैसे जाना वसंतक?
1: इस शैफाली का गुच्छ को देखे जिसके कि फूल तोड़ लिए गए।
2: वसंतक, इसी शिलातल पर बैठ हम पद्मावती की प्रतीक्षा करें।
1: बहुत अच्छा प्रभु, बहुत अच्छा। पर शरद काल की ये तीखी धूप बड़ी असह्य है प्रभु। क्यों ना हम इस माधवी लता मंडप में चले।
2: अच्छा चलो।
0: अरे ये वसंतक मूर्ता में सारा काम चौपट कर देगा, भला आप क्या करें चेटी? कहीं तो इस लता से लटके मधु छत्ते को हिलाकर आर्य पुत्र को मार्ग विरत कर दूं। हाँ हाँ ऐसे ही करो।
1: अरे बचाओ बचाओ, इन मधुकरों से, इन भ्रमों से मेरी रक्षा करो। अरे श्रीमान आप वहीं रुके।
2: अरे अरे अरे मधुकरों को भया तो न करो वसंतक, हमारी पच्चापों से उद्विग्न हो वे भी हमारी तरह अपनी प्रियाओं से विरहित हो जाएंगे। अतः यही बैठो।
1: जी
0: राजकुमारी पद्मावती, हम तो यहाँ बंदी हो गए। लेकिन प्रसन्नता है, सामने ही आर्य पुत्र बैठे हैं।
4: आर्य पुत्र स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, भाग्य की कृपा।
0: अरे आर्य अवंतिका की आंखों में ये आंसू कैसे?
4: नहीं नहीं कुछ नहीं चेटी, आंखों में काश फूलों के धूलिकण गिर पड़े इससे आंखों में आंसू आ गए।
1: स्वामी वत्सराज उदयन, ये प्रमदवन एकदम सूना है, इसी से कुछ पूछना चाहता हूं।
2: पूछो वसंतक।
1: आपको प्रियतर कौन, पहले की वासवदत्ता या आज की पद्मावती?
2: क्यों मुझे महासंकट में डालते हो वसंतक? मैं कुछ नहीं कह सकता।
1: मैं सौगंध खाकर कहता हूं मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अब तो सच सच बता दें प्रभु।
2: रूपशील माधुर्य के कारण पद्मावती मुझे प्रिय है, लेकिन वासवदत्ता में मेरी आसक्ति के कारण वो मन को हर नहीं पाती। अब तुम कहो तुम्हें कौन प्रिय है?
1: मेरे लिए तो दोनों समान है प्रभु। देवी वासवदत्ता आदरणीय थी और देवी पद्मावती तरुणी दर्शनीय क्रोध अहंकार रहित मृदुभाषिणी और उदार हैं। हाँ हाँ उनमें एक गुण और अधिक है प्रभु, वे मीठे मीठे पकवान लिए पूछती रहती हैं आर्य वसंतक कहाँ।

0: आर्य वसंतक कहाँ है?
1: मित्र वसंतक, मैं ये सारी बातें वासव दत्ता से कह दूंगा।
0: अब देवी वासव दत्ता कहाँ है? वे तो कभी की परलोक सिधार।
2: हाँ मित्र, तुमने अपने इस परिहास से मेरा मन विक्षिप्त कर दिया। अपनी पुरानी आदत से ही ऐसी बात मुंह से निकल पड़ी। वसंतक, तुम मेरी दशा नहीं जानते। वासव दत्ता का अमूल्य अनुराग भुलाया नहीं जा सकता। उसकी याद से मेरा परिताप नित नया होता जाता है।
0: अरे अरे, आपका मुख आंसुओं से भीग गया। चलो मुंह धोने के लिए पानी लाऊं।
3: अवंती के, आर्य का मुख आंसुओं से जाने क्यों भीग गया? सुनो, यही समय है, हम यहां से निकल चलें।
4: नहीं राजकुमारी, व्यथित पति को यूं छोड़ जाना उचित नहीं। आप यहीं ठहरे, मैं ही यहां से चली जाती हूं।
3: हाँ, यही उचित है। देवी पद्मावती, हमारे के पास चले। सचमुच जाऊं?
4: हाँ जाओ पद्मावती, जाओ। वे दुखी हैं, उन्हें सांत्वना दो।
5: आर्य की जय हो।
1: पद्मावती बैठो, जल ले आए वसंतक।
0: जी
1: काश रज आंखों में पड़ जाने से मुंह आंसुओं से भीग गया।
5: अथवा किसी दुख से?
1: नहीं पद्मावती, नहीं।
6: महाराज उदयन, अपराहन वेला हो रही है, अब आप पधारें और अपने सुहृद जनों को दर्शन दें।
1: ठीक कहा वसंतक, आओ चले।
7: मधुरिके, ओ मधुरिके, जल्दी इधर आ।
5: आई।
7: मधुरिका, राजकुमारी पद्मावती सिर पीड़ा से व्याकुल है। तू जा और आर्य अवंतिका को बुला ला।
5: राजकुमारी कहाँ है?
7: उद्यान वाले समुद्र गृह में। मैं आर्य वसंता को खोजती हूँ, वे भी स्वामी को ही संदेश दे।

0: पद्मावती से विवाह के बाद भी मुझे वासव दत्ता की याद सताती है। वासव दत्ता मेरी प्रिया, मेरी शिष्या, जिसके वीणा स्वरों को सुन कैसा विमोहित हो जाता था मैं। क्यों हुआ ऐसा वासव दत्ता।
1: राजन शीघ्रता करें, राजकुमारी पद्मावती सिर पीड़ा से व्याकुल है और उनके शैया समुद्र ग्रह में है।
2: अरे चलो वसंतक, समुद्र ग्रह की राह दिखाओ मुझे।
1: जी, ये रहा समुद्र ग्रह, आर्य पधारे।
2: पहले तुम चलो वसंतक।
1: जी ठहरिए ठहरिए श्रीमान, अरे इस भूमि पर तो सर्प लेट रहा है।
2: मूर्ख, ये पुष्पमाला है।
1: पुष्पमाला?
2: सर्प नहीं, ये माला तोरण द्वार पर लटक रही थी और अब भूमि पर गिरी, वायु झोंकों से हिल रही है।
1: हाँ, ये तो सर्प नहीं है। देव, यहां शैया है, दीपक जल रहा है, एकदम शांति है। लगता है राजकुमारी यहां आई और चली गई।
2: नहीं वसंतक, देवी यहां नहीं आई। देखो ये शैया वैसी ही है, सिकुड़न तक नहीं, औषध लेपन से सिरहाना भी मैला नहीं हुआ, न मन बहलाव के लिए यहां कोई शोभा रची गई।
1: तो देव, उनके यहां आने की प्रतीक्षा करें।
2: हां यही ठीक है। मित्र वसंतक।
1: जी
2: मुझे नींद आ रही है, कोई कथा कह।
1: जी ठीक है, तो देव शैया पर लेट हुंकारे भरते जाए और सुने। हाँ तो राजन, उज्जैनी नामक एक रमणीय नगरी है।
2: क्या कहा, उज्जैनी?
1: ये कथा पसंद नहीं तो दूसरी कहूं।
2: है

0: लेकिन इसके साथ मुझे अवंतीनाथ की कन्या वासुदत्ता की याद आ रही है, जिसने उज्जैनी से प्रस्थान के समय बंधुजनों का स्मरण कर अपने आंसू मेरे हृदय देश पर बरसाए थे। वासुदत्ता, वासुदत्ता।
1: राजन, दूसरी कथा है, ब्रह्मदत्त नाम का नगर है।
0: मूर्ख, ब्रह्मदत्त राजा का नाम था।
1: हाँ।
0: नगर कांपिल्य था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले इसे याद कर लूं मैं। राजन, राजा ब्रह्मदत्त था नगर कांपिल्य, राजा ब्रह्मदत्त था नगर कांपिल्य, कांपिल्य राजा था नगर ब्रह्मदत्त, नगर कांपिल्य। अरे देव को तो नींद आ गई, चलो अच्छा हुआ, बड़ी सर्दी है, चलो कुछ ओढ़ने को ही ले आऊं, वरना अपने राम टिर बोल जाएंगे।
2: भाग्य कितना निठुर है, ये पद्मावती जो आर्य का विरह दुख दूर करने में सहायक होती अस्वस्थ हो गई। अरे यहाँ के सेवक कैसे असावधान हैं? पद्मावती के पास केवल जलता दीप छोड़ चले गए। अच्छा, तो इसी शैया पर पद्मावती सो रही है, चलो उसी की शैया पर बैठो। क्या क्या बात है, इस शैया पर बैठते मन मन कैसा आह्लादित हो रहा है। इसकी श्वास प्रश्वास तो बिल्कुल ठीक चल रही है, लगता है स्वस्थ हो गई।
0: वासुदत्ता, वासुदत्ता।
2: ये तो आर्यपुत्र है, यहाँ कैसे?
0: प्रिय,
2: अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो आर्य योगंधरायण और मेरी दोनों की प्रतिज्ञा निष्फल होगी। वत्स देश की राज्य प्राप्ति का स्वप्न अधूरा रह जाएगा।
0: अवंती राजपुत्री,
2: लगता है आर्यपुत्र स्वप्न में बातें कर रहे हैं। भला है यहाँ कोई नहीं। एक क्षण रुक, इन्हें देख हृदय और दृष्टि को संतुष्ट तो कर लो।
0: प्रिय आशीष,
2: बोल रही हूँ स्वामी, बोल रही हूँ।
0: क्या तुम कुपित हो?
2: नहीं, दुखी हूँ।
0: तो अलंकार क्यों उतार दिए?
2: अलंकार पहनने से भी क्या भला होता?
0: वासुदत्ता, वासुदत्ता, प्रिय, प्रिय।
2: आर्य की स्वप्नावस्था है, यहां देर से बैठी हूं, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा?
0: प्रिय,
2: चलो चलने से पहले सोए आर्य पुत्र के इन पहले हाथों को ठीक कर दो। अब चलो।
0: ठहरो वापस, ठहरो वासुदत्त, ठहरो। अरे ये क्या? ये मेरा मनोभाव सत्य है या स्वप्न?
1: राजन, जाग गए आप?
0: हाँ वसंतक, मित्र एक सुसंवाद।
1: क्या?
0: वासुदत्ता जीवित है।
1: हाँ, वासुदत्ता कहाँ, वे तो कभी की परलोक से हार गई।
0: नहीं, मुझे शैया पर सोता देख चली गई।
1: समझा राजन, जब से मैंने उनकी बात कही तभी से आप देवी वासुदत्ता के विषय में सोच रहे थे, इसी से उन्हें स्वप्न में देखा होगा।
0: वसंतक, अगर वो स्वप्न था तो ना जागना ही धन्य होता, यदि ये भ्रम है तो वह सदा बना रहे।
1: समझा राजन समझा। इस राजगृह नगरी में अवंती सुंदरी नामक यक्षिणी रहती है, कहीं वो तो दिखाई नहीं दे गई?
0: नहीं नहीं नहीं, नींद से जाग मैंने उसके मुख को देखा। मुख पर बिखरी लंबी हल्के अंजन रहित नेत्र। देखो मित्र, देखो मेरी इस भुजा को देखो। स्वप्न में ही वासव दत्ता ने जिसे स्पर्श किया वहां अब भी रोमांच है।
1: राजन व्यर्थ चिंतन छोड़े, आइए चतुःशाला चलें।
3: चलिए राजन चलिए।

0: वत्सराज उदयन की जय हो।
1: आइए कंचुकी।
2: हमारे महाराज दर्शक ने आपके लिए संदेश दिया है कि आपके शत्रु आरुणी पर आक्रमण के लिए आपके आमात्य रुम्णमान बड़ी सेना लेकर उपस्थित हैं। इसी तरह हमारा विजयनी राज दल युद्ध के लिए सन्नद्ध है। आपके शत्रु विभाजित कर दिए गए हैं। आपके गुणों से अनुरक्त आपकी प्रजा आश्वस्त है। प्रयाण के लिए सेना के पृष्ठभाग की रक्षा का प्रबंध कर दिया गया है। शत्रु पराजय के सब करणी उपस्थित हैं। सेना गंगा पार कर चुकी है। वत्सों का देश प्राय आपके हाथों में है महाराज।
1: ये सुसंवाद है कंचुकी। अब मैं भयानक कर्मों में दक्ष उस आरुणी को तैरते गजाश्वों और तरंग बाण वाले महासमुद्र में पकड़कर नष्ट कर दूंगा।
0: कौशाम्बी राजमहल के इस सुनहरी तोरण द्वार पर कौन प्रतिहारी नियुक्त है?
3: आर्य, मैं हूँ विजया।
0: विजया, महाराज उदयन से निवेदन कर, अवंती राज महासेन के यहां से रभ्य गौत्र कंचुकी और देवी वासा दत्ता की धाय आर्य वसुधारा आए।
3: आर्य कंचुकी, इस संदेश के लिए न ये उपयुक्त स्थान है न समय।
0: क्यों?
3: आज स्वामी के पूर्व प्रासाद में कोई वीणा बजा रहा था,

0: पति, घोषपति का स्वर, ये तो वासव दत्ता की वीणा घोषपति का स्वर लगता है। ये वीणा कहाँ पाई?
1: बजाने वाले ने कहा, नर्मदा तीर झाड़ियों में पड़ी मिली, स्वामी चाहे ले लें। जैसे ही स्वामी ने उस वीणा को अपने अंक में लिया,
0: घोषपति, घोषपति, मैंने तुम्हें तो पाया, लेकिन वासव दत्ता, वासव दत्ता, वो कहाँ है?
1: आप सोचें, इस समय कैसे निवेदन करूं उनसे?
2: ओह, विजया, जा, निवेदन कर। ये संवाद मुझे उसी से संबंधित प्रतीत होता है।
1: जाती हूँ आर्य।
3: स्वामी की जय हो। अवंतीराज महासेन के यहाँ से रैभ गोत्र कंचुकी और महारानी वासव दत्ता की धाय आर्या वसुधारा द्वारे उपस्थित हैं।
4: तो प्रतिहारी, पहले पद्मावती को बुलाओ।
3: जो आज्ञा प्रभु।
5: आर्य पुत्र की जय हो। मैंने संवाद सुना, मैं अपने संबंधियों की कुशल वार्ता से प्रसन्न होंगी।
4: हाँ, वासव दत्ता के स्वजन आपके भी स्वजन हैं।
5: आप मेरे समीप बैठे ही उन लोगों से मिलेंगे, मुझे देख क्या वे उदास नहीं होंगे?
4: नहीं पद्मावती, नहीं, बैठो।
3: कंचुकी और धाय द्वार पर खड़े हैं महाराज,
4: उन्हें शीघ्र लिवा लाओ।
6: आर्य पुत्र की जय हो।
7: आर्य पुत्र की जय हो।
4: आर्य रैभ्य, मैंने जिनके साथ मैत्री कामना की, जो पृथ्वी के राजवंशों के उदयास्त के कारण हैं, वे अवंती राज महासेन सकुशल तो हैं?
8: सकुशल हैं, और आप सबके कुशलार्थी हैं।
4: उनकी मेरे लिए क्या आज्ञा है?
8: महाराज उदयन, शत्रुओं द्वारा अपहृत आपका राज्य सौभाग्य से लौट आया।
4: आर्य रैभ्य, ये सब महाराज महासेन के प्रभाव का ही परिणाम है। आज भी मैं स्मरण करता हूं, आरंभ में मैं उज्जैनी राज्य की सीमा के समीप उन्हीं की सैन्य से पराजित हुआ। बंदी बना तो उन्हीं महासेन ने मेरा पुत्रवत पालन किया। मैंने उनकी प्रिय कन्या वासव दत्ता का हरण कर लिया।

0: लेकिन मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका। उसका मृत्यु संवाद सुनकर भी मेरे प्रति उनका आदर पूर्ववत है। विजय प्राप्त कर पुनः मेरे वत्स राज्य में लौट आने का कारण भी वही है। मात वसुधारा, राजमाता अंगारवती कुशल पूर्वक तो है?
1: स्वस्थ ही, आपका कुशल पूछती हैं।
0: सभी कुशल हैं, यहां सब कुशल है मां, केवल केवल वासवदत्ता बस वो ही नहीं है।
1: राजन संताप न करें।
2: स्वामी धैर्य धरे, महासैन कन्या वासवदत्ता मरकर भी अमर है, क्योंकि आप उन्हें आज भी उसी स्नेह से स्मरण करते हैं।
0: वासवदत्ता को मैं कैसे भुला सकता हूँ?
1: राजन, राजमहिषी अंगारवती ने कहा है वासवदत्ता अब नहीं रही, किंतु मेरे और महासेन के लिए आप पुत्र गोपालक और पालक की भांति ही प्रिय हैं। पहले से ही मनोनीत जामाता ही, इसी विचार से आप उज्जैनी लाए गए थे। फिर बिना शिक्षा के बहाने, बिना अग्नि साक्ष आपको वासुदत्ता दे दी गई थी, पर शीघ्रतावश आप बिना विवाह क्रिया के वासुदत्ता का हरण कर चले आए थे। तब हमने आपका और वासुदत्ता का चित्र बनवाकर विवाह मंगल संपन्न किया। उसी चित्रफलक को हम आपके पास भेज रहे हैं, जिसे देख आप सुखी हों।
0: देवी अंगारवती ने स्नेहपूर्ण और अनुकूल बात कही। उनका यह कथन 100 राज्यों की प्राप्ति से भी बढ़कर है। अपराधी होते हुए भी हम दोनों के प्रति वे अपना स्नेह नहीं भूली।
3: आर्यपुत्र, मैं चित्र देखना चाहती हूँ।
1: ये देखिए पद्मावती जी।
3: अरे
0: देवी, क्या बात है?
3: आर्यपुत्र, आश्चर्य, देवी वासवदत्ता की इस प्रतिकृति के समान ही कोई यहाँ रहता है।
0: यहाँ?
3: हाँ आर्यपुत्र।
0: तो इसे शीघ्र बुलाएं।
3: लेकिन विवाह पूर्व किसी ब्राह्मण ने उसे अपनी भगिनी बताकर मुझे सौंपा है। ये भी कहा है उसका पति विदेश गया है, वो प्रोषित पति का है, इस कारण पर पुरुष का दर्शन नहीं करती।
0: ओह, अगर वो ब्राह्मण की भगिनी है तो कोई और है। यूं तो रूप साम्य मिल ही जाता है।
4: स्वामी की जय हो। उज्जैनी से एक ब्राह्मण आया है, कहता है देवी के आश्रय में मैंने अपनी बहन रखी थी, मैं उसे लेने आया हूँ।
0: पद्मावती, क्या ये वही ब्राह्मण तो नहीं?
3: संभव है वही हो।
0: प्रतिहारी, अंतपुर के आचरण का ध्यान रखते हुए बीच में यवनी का डाल ब्राह्मण को शीघ्र उपस्थित करो।
4: जो आज्ञा प्रभु।
0: पद्मावती, आप उस ब्राह्मण भगिनी को ले आए।
3: जी।
5: जय हो, आपकी जय हो।
0: ये स्वर परिचित सा प्रतीत होता है। ब्राह्मण, क्या आपने अपनी बहन को देवी पद्मावती के आश्रय में रखा था?
5: हाँ राजन।
0: तो शीघ्र ले आओ इनकी भगिनी को।
4: आर्यपुत्र की जय हो, धरोहर ये है।
0: धरोहर लौटा दो पद्मावती, वस्तुतः धरोहर साक्षियों के समक्ष लौटाना चाहिए। यहाँ ये रैभ्य और आर्या वसुधारा है, यही साक्षी होंगे।
1: ये क्या, ये ही तो महासेन पुत्री वासुदत्ता है।
0: मेरी प्रिया वासुदत्ता, सच अगर यही है तो देवी पद्मावती, आप वासवदत्ता को ले अंतपुर में प्रवेश करें।
5: नहीं देव, उसे अंतपुर प्रवेश नहीं कराऊं, वो मेरी भगिनी है। राजन, आप भरत कुलोत्पन्न हैं, विनीत हैं, ज्ञानवान, पवित्र राजधर्म के आचार्य हैं, इस तरह मेरी भगिनी का हरण न करें।
0: अच्छा, तब रूप सादृश्य देखें। प्रतिहारी, ये बीच की यवनी का हटा दो।
5: स्वामी की जय।
0: महामात्य।
3: आर्यपुत्र की जय।
0: वासवदत्ता, अरे अरे, ये तो हमारे महामात्य यौगंग रायण ही है, और ये महासेन पुत्री वासवदत्ता, ये सत्य है या स्वप्न?
6: महाराज उदयन, देवी को हर लेने का अपराधी मैं हूं, स्वामी रक्षा करें।
0: आप रक्षित हैं महामात्य, आपके यत्नों से ही हम डूबतों की रक्षा हुई है।
3: तो ये अवंतिका ही आर्या वासुदत्ता है।
7: आर्य, आपके साथ सखी भाव से व्यवहार करते, अगर शिष्टाचार का उल्लंघन हुआ हो तो क्षमा करें।
8: उठो सुहागिन पद्मावती, जो स्वयं दूसरों की हित सेवा में लगा रहा उससे भला अपराध कैसा।
0: मित्र यौखंदरायन, बताओ

0: देवी वासवदत्ता को यूं हटा देने में तुम्हारा क्या प्रयोजन था?
1: कौशाम्बी की रक्षा कर सकूं, मित्र राज्यों की सहायता जुटा सकूं, ताकि आपको विजय लाभ हो सके राजन।
0: और उसे पद्मावती के आश्रय में रखने का क्या तात्पर्य?
1: राजन, इसीलिए कि पुष्पक भद्र आदि भविष्य दृष्टाओं ने कहा था, देवी पद्मावती आपकी रानी होगी और उसी के साथ देवी वासवदत्ता भी आपको प्राप्त हो जाएगी।
0: क्या मंत्री रूमणवान भी इसे जानता था?
1: हाँ राजन, सभी जानते थे।
0: ओ
1: महाराज उदयन, रेभ्य और आर्या वसुधारा को आज ही देवी वासवदत्ता की कुशलता की सूचना के लिए उज्जैनी भेज दे।
0: नहीं, हम सभी देवी पद्मावती के साथ उज्जैनी चलेंगे और हमारे साथ वासवदत्ता भी होंगी।
1: हाँ स्वामी, आज आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई है।
2: और मेरा सपना।

तो ये था नाटक स्वप्न वासव दत्ता का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण था। रूपांतरकार थे कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। आकाशवाणी इंदौर की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह जी। उत्तम जी, बहुत बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
6: नमस्कार यूनुस जी, नमस्कार टू ऑल जो उजाला सुन रहे हैं। आप उजाले में सुन रहे हो और हम अंधेरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं।
0: सर, आपकी जिंदगी की जो कहानी है वो बहुत उतार चढ़ाव और संघर्षों से भरी रही है। मुझे लगता है कि शुरू से शुरू करें और एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम

0: आपकी जिंदगी को दोहराने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ पैदा हुए और आपके पिताजी क्या करते थे, यहाँ से बात शुरू करते हैं।
1: जी, बात तो यहीं से शुरू होनी चाहिए जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं। जिंदगानी बहुत लंबी है क्योंकि तो 4.5 साल की उम्र में हमारे दादाजी ने मेरे पिताजी को कहा कि भाई यहाँ तो म्यूजिक ले लो, यहाँ ये घर ले लो। तो पिताजी ने कहा ठीक है, तो अंदर गए, मम्मी को बुलाया, मुझे बुलाया, जो कपड़े पहने हुए थे उससे हम लोग बाहर निकल गए।
0: आप किस शहर में थे?
1: ये लखनऊ की बात है और आई वॉज बॉर्न इन देहरादून।
0: अच्छा, तो ये अलग अलग शहर क्यों थे?
1: देहरादून से सब पूरी फैमिली लखनऊ आ गई थी
0: जी,
1: और लखनऊ में भगवान की कृपा से बहुत बड़ी हवेली थी।
0: अच्छा अच्छा,
1: बहुत खूबसूरत हवेली थी, मुझे आज भी वो हवेली जो है मेरी आंखों में समाई है, ऐसी इतनी बड़ी हवेली थी। उस हवेली में हम लोग रहते थे। बस वहां से मैं 4.5 साल का था जब मुझे याद है, तो पिताजी ने बुलाया तो मम्मी और मेरा हाथ पकड़ा, हम तीनों बाहर निकल गए। और उसके बाद पिताजी, माताजी और हम तीनों शायद हमारे मामा के यहाँ घर गए, मुझे याद नहीं।
0: ये जो निकलने का सिलसिला है, इसकी बुनियाद ये थी कि संगीत को अपनाया।
1: हाँ,
0: और दौलत को ठुकराया।
1: दौलत को ठुकराया, मतलब संगीत चाहिए तो ये घर छोड़ दो, और संगीत नहीं चाहिए तो इस घर में रहो। लेकिन संगीत क्यों चाहिए? क्योंकि पिताजी चोरी चोरी जाते थे सितार सीखने।
0: अच्छा, ये लखनऊ की बात
1: है? ये लखनऊ की बात है। और लखनऊ में उस टाइम पे एक बहुत बड़े उस्ताद थे, उस्ताद इलियास खान साहब।
0: जी,
1: आपने नाम शायद सुना होगा।
0: जी,
1: डैडी हमारे उनके शागिर्द थे और उनके यहाँ सीखते थे, तो उनके अंदर म्यूजिक था, डैडी के अंदर म्यूजिक था, तो बाकी लोगों के म्यूजिक था, लेकिन ऐसा म्यूजिक नहीं था जो हमारे जैसे डैडी मतलब चोरी करके, पैसे चोरी करके भी सीख रहे हैं, वो और फैमिली में किसी के पास आया नहीं। तो वो चीज मुझ में भी आई। और मुझ में डैडी को कैसे पता चली, हमारे पिताजी को कैसे पता चली कि मैं स्कूल जाता था जब लखनऊ में, तो जब वापस आता था तो आई यूज टू सिंग, वो जो प्रेयर होती थी स्कूल की, मैं वो गाता था।
0: बाबा।
1: और जब मेरी किताबें देखते थे डैडी, तो उसमें सब लाल इंक से मार्क्स होते थे।
0: जी,
1: तो मुझे लगता था सबको ब्लू इंक है, मेरी को मार्क रेड इंक है, कुछ खास बात होगी। बच्चे को कहाँ पता चलता है। तो मैं मतलब फेल ही था, कोई मतलब नहीं था स्कूल जाने का। तो डैडी ने इसलिए वो उसने डिसीजन लिया और उन्होंने छोड़ दिया
0: एक झटके में हवेली से बाहर।
1: एक झटके में हवेली के बाहर, और सीधा उस रात मामा जी के घर में, या कौन सा घर था मुझे याद नहीं, वहां हम लोग शायद 1.5-2 महीना रहे। उसके बाद शायद डैडी ने किराए पर मकान लिया, मुझे याद नहीं। बट इस दौरान में 4.5 साल की उम्र में मुझे उन्होंने सबसे पहले मटका सिखाया।
0: अच्छा
1: जी,
0: क्या बात है।
1: मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट जो है लाइफ का वो मटका है।
0: तो पहले आपने मटका बजाया?
1: मटका सिखाया, फिर उन्होंने तबला सिखाया।
0: जी जी,
1: फिर उन्होंने मुझे 6 महीने के करीब कत्थक सिखाया।
0: जी,
1: कत्थक डांस। इस दौरान मुझे उन्होंने थोड़ा बहुत वोकल जो होता है, गाना होता है, थोड़ा बहुत वो भी सिखाया, लेकिन तबले पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। और यहां से हमारी एक यात्रा शुरू हुई,
0: बाकायदा यात्रा।
1: यात्रा गुरुद्वारों की यात्रा, मतलब डैडी सितार बजाते थे, मम्मी बाजा बजाती थी, मैं तबला बजाता था, हम लोग कीर्तन करते थे
0: गुरुद्वारों में, कीर्तन करते थे। और इस कौन से शहरों में आप रहे उस दौरान?
1: याद नहीं, लेकिन बहुत घूमे
0: जी।
1: एक साउथ छोड़ के और बंगाल छोड़ के बाकी बहुत जगह गए हम,
0: पूरे देश में घूमे।
1: आसाम गए, गुजरात गए, महाराष्ट्र में आए, काफी जगह घूमे हम लोग, हर जगह कीर्तन करते थे,
0: गुरुद्वारों में रहते थे, कीर्तन करते थे।
1: डैडी ने रायपुर में एक गुरुद्वारे में नौकरी की 1.5 साल।
0: जी,
1: 1.5 साल तक हम लोग रायपुर में थे, वहां मेरी बहुत विद्या चली। और आप सोचिए, जिस उम्र में बच्चों को खेलना, पहनना, खाना, बच्चों के शौक, उस उम्र में मेरे हाथ में तबला था।
0: क्या बात है।
1: और उस उम्र में 7-7 घंटे तबले का रियाज होता था।
0: मतलब जितना बच्चा स्कूल में पढ़ता उतना आप संगीत की तालीम ले रहे
1: थे। संगीत की तालीम दे रहे थे मुझे पिताजी।
0: बहुत सख्त थे? डांट मार वाला मामला था?
1: नहीं, प्यार से बहुत सिखाते थे। और टीचर बहुत अच्छे थे, हमारे डैडी म्यूजिशियन उतने अच्छे नहीं थे, बट टीचर तो कमाल थे
0: जी।
1: मतलब अगर समझो किसी को पता ही नहीं है कि म्यूजिक क्या होता है, उससे भी वो तबला बजवा देंगे।
0: वाह, क्या बात है।
1: ऐसे टीचर। अभी मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ।

0: उत्तम जी, जब बंबई आप पहुंच रहे थे तो उससे पिछला वाला शहर कौन सा था?
1: वो मुझे याद है, वो अभी भी याद है मुझे
0: जी,
1: अहमदाबाद।
0: ओहो, गुजरात पहुंच गए थे घूमते हुए, मतलब कहाँ, रायपुर फिर अहमदाबाद?
1: गुजरात पहुंच गए थे। गुजरात में शायद एक डेढ़ महीना हम लोग रहे किसी गुरुद्वारे में, और उसके बाद वहां से हम बॉम्बे आ गए थे, क्योंकि डैडी का अल्टीमेट जो टारगेट था वो बॉम्बे था
0: जी,
1: कि बॉम्बे पहुंचना है।
0: उसके पीछे इरादा क्या था?
1: वही तो, उत्तम को वायलिनिस्ट बनाना है।
0: तो पिताजी का मकसद था आपको एक वायलिनिस्ट बनवाना,
1: एक फिल्म इंडस्ट्री का म्यूजिशियन बनाना, क्योंकि डैडी इंडस्ट्री देख के गए थे और उनका ये मन में था, मुझे तो नहीं बोला, उनके मन में था कि इसको बच्चे को यहाँ डालना है इंडस्ट्री में। अब सोचिए कहाँ बिजनेस फैमिली, कहाँ उनकी सोच कि लड़के को यहाँ डालना है। तो आप हैरान होंगे, आप सुनने वालों भी सब हैरान होंगे कि हम 1960 में जनवरी में उतरे, हम लोग
0: जनवरी में
1: हम लोग 11 बजे के करीब ट्रेन से उतरे हैं, और डैडी के एक बहुत खास दोस्त थे, उनकी फैमिली ने जाके हमको छोड़ा, मुझे और मम्मी को छोड़ा, और छोड़ा और उसके बाद वो कहाँ गए डैडी मुझे आज तक नहीं पता, और वो चले गए छोड़ के,
0: बंबई छोड़ के चले गए,
1: नहीं नहीं घर में छोड़ के चले गए
0: जी जी।
1: और शाम को आए, शाम को वापस आए तो आके बोलते हैं कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है वायलिन की। मैं कहा डैडी कहाँ? बोलते एक टीचर है फेलिक्स हेरेडिया करके, एले एब्रियो की एक शॉप हुआ करती थी उन दिनों, म्यूजिकल शॉप थी जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स बिकते थे
0: जी जी।
1: तो ये ढूंढते ढूंढते सब वहां चले गए, वहां देखा उनको मिला एक फेलिक्स हेरेडिया करके, तो उनसे पूछा कि मेरा लड़का वायलिन सीखना चाहता है। बोले पहले बजाता? बोले हाँ क्लासिकल बजाता है, तबला वबला सब उसके अंदर, सुर बहुत है उसके पास। बोले ओके ले आ। तो दूसरे दिन डैडी मुझे लेके गए।
0: उस वक्त आपकी उम्र क्या रही?
1: 12
0: वर्ष। अच्छा, मम्मी और पापा दोनों का नाम क्या था, और मम्मी की कौन सी याद है उस वक्त की?
1: मम्मी के थे बहुत सी यादें हैं, डैडी
0: नाम,
1: डैडी के हमारे जो नाम था उनका नाम था ब्रिजपाल सिंह
0: जी जी।
1: तो ज्ञानी उन्होंने पास की थी, उन दोनों में ज्ञानी एक डेस्टिनेशन हुआ करता था
0: जी,
1: हिंदी में
0: जी,
1: जो ज्ञानी जो लोग पास करते थे तो वो ज्ञानी, जैसे आज बीए या एमए है, तो डैडी ने पास किया था ज्ञानी, ब्रिजपाल सिंह ज्ञानी।
0: अच्छा।
1: हमारी माताजी का नाम जसवंत कौर
0: जी जी,
1: और ये दोनों हमारे पिताजी थे सरगोधा से।
0: अच्छा।
1: आज जो पाकिस्तान में है।
0: हाँ।
1: और मदर थी कुजरावाला से, तो दोनों पाकिस्तान के थे उस टाइम पे, तो पाकिस्तान से 47 से पहले ही आ गए थे हम लोग यहाँ पे
0: जी जी जी।
1: तो करते कराते यहाँ पहुंच गए, तो 60 में मेरी जनवरी में इस क्लासेस शुरू हो गई थी।
0: कितना मुश्किल था कि एक नया शहर और उस शहर में एक नए टीचर जिनसे सीख रहे हैं आप
1: जी। डैडी तो पहले आके गए थे बम्बई
0: जी,
1: तो ये जो उनके दोस्त थे बहुत खास, जैसे घर होता है अपने, तो हम लोग उनके यहाँ घर में 2-3 महीने रहे
0: जी।
1: 2-3 महीने ही, मैंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे मुझे लेके गए, और वायलिन थी मेरे पास, उससे उन्होंने मुझे शुरू करवाया सिखाना। तो मैं उनसे शायद 1.5 या 2 साल सीखा हूं।
0: क्या बात है।
1: और उस 2 साल में उन्होंने एक मुझे पीस सिखाया जिसको पोलका बोलते हैं, पोलका, वायलिन में पोलका होता है
0: जी।
1: वो उन्होंने मुझे पीस बजाया, वो पीस मेरे आगे जाके बहुत काम में आएगा, मैं आपको बताऊं,
0: वो कहानी में आगे आएगा,
1: आगे आएगा। तो ये हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल में सीखता रहा। इन 2 सालों में यूनुस जी शायद 10 या 12 घर चेंज हुआ।
0: बाप रे, 10-12 घर
1: 2 साल में
0: जी।
1: कहीं 1 महीना, कहीं 2 महीने, कहीं 2.5 महीने, कहीं गुरुद्वारों में, बोरीबंदर गुरुद्वारा था वहां रहे, दादर गुरुद्वारे रहे, माटुंगा गुरुद्वारे रहे, लेकिन मेरी प्रैक्टिस नहीं रुकी, वो चलती रही
0: जी।
1: और प्रैक्टिस भी 13.5 घंटे रोज की।
0: बाप रे बाप,
1: ये लोग सुन के बहुत हैरान होंगे।
0: 13.5 घंटे
1: मेरे फादर ने टाइम टेबल बनाया, वो भी सुबह

0: 5:30 बजे से शुरू होता, 6 से लेकर शाम को 8-9 बजे तक,
1: ओहो
0: 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे खाना खाओ, 3 घंटे फिर 15 मिनट का, रात के लास्ट जो है वो 1.5 घंटे का ब्रेक, 1.5 घंटा प्रैक्टिस करो, उसके बाद खाना खाओ, सो जाओ, क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठ के आपको कम से कम 6 किलोमीटर रन भाग के आना है।
1: अरे बाप रे,
0: 4:30-5 बजे।
1: तो कभी 12 साल के बच्चे, कभी ऐसा नहीं होता था कि नीचे खेलें,
0: नहीं
1: बच्चों के साथ खेलें,
0: कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि यही जिंदगी थी, डैडी ने जिस जिंदगी में डाला बस उसी जिंदगी को एडॉप्ट, क्योंकि फादर ने कहा है ना खत्म होगी बात,
1: बस उसके आगे
0: माँ ने कहा है खत्म होगी बात
1: जी,
0: इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना, माँ बाप जो है वही तो भगवान है, तो भगवान का एक असूल होता है कि मैंने कह दिया तो तुमने उनको करना ही है।
1: कितनी सुंदर बात है,
0: कभी भी ये बात नहीं आई कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाई शुड आई डू दिस, व्हाई शुड आई डू दिस, ये वर्ड कभी माइंड में ही नहीं आया।

0: चल में। दो साल निकल गए मुंबई में। 62 में हमारे एक दोस्त हैं जो अभी दुनिया से चले गए हैं, सुरेंद्र राव करके, वायलिन बजाते थे, जिनका लड़का आज संजू राव करके बजाते, उनके फादर।
1: अच्छा वायलिन बजाते हैं।
0: अच्छा वायलिन। हाँ मैं यहाँ बताऊँ, 62 में हम लोग पार्ला में आ गए थे, किराए पर, किराए के मकान में रह रहे थे, और वहां पे वो आया, कहते ये एक रिकॉर्डिंग आई है।
1: अच्छा।
0: रिकॉर्डिंग सुन के डैडी सुन के हैरान हो गए, रिकॉर्डिंग? बोले हाँ रिकॉर्डिंग। तो कहाँ ये? बोले बॉम्बे लैब में है, मोहम्मद शफी चाचा है जो बड़े डायरेक्टर है, नौशाद साहब के असिस्टेंट है
1: जी,
0: उनकी रिकॉर्डिंग। तो 9 बजे का टाइम, तो हम लोग तो 8 बजे पहुंच गए
1: जी, बिल्कुल।
0: उसकी जो सुबह की जो प्रैक्टिस वैक्टिस सब करके पहुंच गए। 9 बजे शुरू हुआ यूनिस जी, 1 बजे के करीब लंच ब्रेक हुआ, हमने खाना खाया, फिर 2 बजे शुरू हुआ, फिर शाम को 6 बज गए, फिर चाय पिया, और रात को 9 बज के करीब बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म हुआ।
1: 12 घंटे
0: उस टाइम पे बैकग्राउंड म्यूजिक 8 घंटे का हुआ करता था
1: जी। जी
0: 8 घंटे का बैकग्राउंड म्यूजिक विद ब्रेक, तो 13 घंटे हो गए।
1: हाँ।
0: 4 घंटे और या 3.5 घंटे और, तो रात को 9 बज जाते थे आराम से। तो जैसे ही पूरा दिन बजाया, बड़ा अच्छा लगा, ये एक्सपीरियंस नया एक्सपीरियंस बिल्कुल।
1: सिनेमा का बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहे हैं,
0: वो भी
1: मोहम्मद शफी के साथ।
0: मोहम्मद शफी साहब का इतना बड़ा नाम, नौशाद साहब के असिस्टेंट, हम लोग कुछ वायलिनिस्ट थे, कुछ रिदम था, मुझे याद भी आता है बड़ा रिदम था उनके। और फिर हमने पूछा किसके लिए है, बोलते कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है।
1: अच्छा।
0: उसके लिए था वो। तो उन्होंने बोला बच्चों एक काम करो, ये संडे को हमारे घर में आओ। तो संडे, समझो आज मंडे है या ट्यूसडे है, तो संडे हम लोग सब सुबह कितने बजे पहुंचे, बस सुबह 8 बजे पहुंच जाओ सब लोग
1: जी।
0: तुम सारे बच्चे 8 बजे पहुंच गए
1: मोहम्मद शफी के घर,
0: मोहम्मद शफी के माहिम में। और वहां जब पहुंचे सब, जाके हम लोग हॉल में बैठ गए। अच्छा हॉल था, बिल्डिंग थी उनकी अपनी, अजमत करके नाम था बिल्डिंग था, या रहमत सब कुछ नाम था बिल्डिंग का, पूरी बिल्डिंग उनकी थी। ऊपर के फ्लोर में हम लोग पहुंचे, बाहर बैठे हुए थे, तो इतने में एक कोई इंसान आए
1: जी,
0: हमको पता नहीं कौन है, हम सब किसी को कोई पता नहीं, वो बच्चों को कि वो कौन है। तो आके कुर्सी में बैठ गए, तो सभी से बाहर आया, हाँ पीटर आ जा। उनका नाम पीटर था। बहुत बड़े वायलिनिस्ट थे,
1: फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हस्ती,
0: बहुत बड़ी हस्ती
1: जी।
0: तो उन्होंने आया, पीटर आ जा, ये बच्चे हैं सब बहुत अच्छा बजाते हैं, कल इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग बजाई। नाम तो सुना नहीं था, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये तो बहुत बड़े वायलिनिस्ट है, तो हम सब ऐसे डर सा हो जाता है ना, डर से गए हम लोग। अब उन्होंने, चाचा ने क्या किया कि जो उस दिन बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया था उसका एक पीस, हम 7-8 वायलिन वाले थे, सबके सामने वो पीस कहा, ये जो तुमने बजाई
1: नोटेशन रख दिया,
0: पीटर साहब को सुनाओ। तो 1, 2, 3, 4 में चौथे में था, 5, 6, 7, 8 हो गए या 9 हो गया, 8 हो गए, जो भी था याद नहीं था। तो उसने अकेले ने बजाना शुरू किया, दूसरे ने बजाया, तीसरे ने बजाया। आप हैरान होंगे यूनुस जी, मेरे सामने अंधेरा था, मेरी आंखों के सामने कुछ नहीं था, ना नोटिशन, ना कोई बैठा हुआ है, कुछ मुझे नजर आया। और मैं इतना नर्वस हो गया, इतना डर गया मैं, चाचा समझ गया, उन्होंने बोला हाँ तू मेरे से फट से आ गया, तुम बजाओ, और मैं नहीं बजा सका।

0: अरे बाप रे,
1: आई कुड नॉट प्ले, मैं नहीं भेजा सका उसे। मैं मुझे हुआ क्या, शाम को नीचे चले गए, फिर चाचा ने कहा कि तुम रोज आना, यहाँ पीटर प्रैक्टिस कराएंगे। तो हम लोग आते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। फिर उन्होंने मुझे कहा, थोड़ी लंबी है स्टोरी,
0: बिल्कुल,
1: तो उन्होंने कहा कि पिताजी को लेके आना, तो मैं पिताजी को लेके, एक बड़ा अच्छा चैप्टर भूल गया
0: जी,
1: कि जब उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म किया तो उन्होंने 10-10 रुपए दिए,
0: उस जमाने के हिसाब से बड़ी रकम थी,
1: 10 रुपए पूरे दिन के, तो सबको 10-10 रुपए दिए, तो 10 रुपए देख के ही हम सब लोग ऐसे हो गए, और मुझे किनारे थोड़ा कॉर्नर में बुला के 5 रुपए और दिए,
0: तो 15 हो गए,
1: मुझे 5 रुपए और दिए, तो मुझे बोला ये 5 रुपए जो दे रहा हूं ना, ये अपने पिताजी को बोलना कि तुम्हें शर्ट ले देंगे,
0: ओ
1: शर्ट फटी होगी
0: जी जी,
1: ध्यान नहीं है
0: जी जी।
1: तो मैंने घर में जाके बोला 15 रुपए, तो 15 रुपए की कमाई एक दिन में, मतलब आज का 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया एक दिन की कमाई हो गई, बहुत बड़ी बात,
0: इतनी बड़ी रकम
1: कहाँ 15 रुपए। तो डैडी को मैं, डैडी ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है, तो मम्मी को 10 रुपए दिए, जो पैसे दिए, वाहेगुरु जी को माथा टेका कि आज बच्चे की पहली कमाई आई है,
0: 12 बरस की उम्र में,
1: नहीं 14 बरस हो गया,
0: अच्छा
1: 62
0: जी जी,
1: 14 बरस
0: जी,
1: लेकिन जो 2 साल जो मेहनत की उसकी ये कमाई थी, पहले दिन की कमाई थी। तो डैडी मुझे नेक्स्ट डे बोले चलो उठो, चलो चलते, कहा चलो ना, निकल पड़े, तो पार्ला में रहते थे, पार्ला से हमने ट्रेन पकड़ी, दादर गए, दादर के ब्रिज के ऊपर आज भी कपड़े बिकते हैं। तो डैडी ने 5 रुपए में 3 शर्टें खरीदी,
0: गजब,
1: 2 मेरे लिए 1 अपने लिए, और मुझे लगता है शायद अपने 2 या 3 साल पहनी वो शर्ट,
0: क्या बात है।
1: तो उसके बाद फिर चाचा ने कहा कि पिताजी को लेके आना, तो मैं डैडी को लेके गया, बोले इसको लड़के को आप बाबा जी क्या, रामप्रसाद जी क्या डालो,
0: रामप्रसाद जी यानी आज के जमाने के बहुत बड़े संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के, प्यारेलाल जी के पिताजी,
1: प्यारेलाल जी के पिता,
0: ट्रम्पेट बजाया करते थे,
1: और इतने बड़े टीचर थे वो, इतने जैसे जो चीज आप सुना करते हो ना, वो हमने महसूस की है, और हमने उसको सीखा है, हमने उसको जिया है, हमने
0: जी, कोई उनका नाम नहीं लेता था, उनको बाबा जी बोलते थे,
1: बाबा जी बोलते, नहीं तो अदरवाइज पुराने जमानों में क्या होता था कि जो गुरु होता था वो खिलाता भी था, पिलाता भी था, रहायश भी रखता था और सिखाता भी था
0: जी,
1: ये बाबा जी थे हमारे,
0: और आप उनके सबसे महत्वपूर्ण शिष्य बने,
1: महत्वपूर्ण शिष्य था, और मैं बाबा जी से 6 महीने के करीब सीखा हूं।
0: बहुत सख्त थे वो
1: दूसरों के लिए,
0: आपके लिए नहीं,
1: मेरे लिए,
0: वो आपको अपना लाडला बच्चा कहते थे,
1: लाडला बच्चा भी कहते थे, और मुझे राम सिंह कहते थे,
0: अच्छा
1: ये कहते ये मेरा राम सिंह है,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: क्योंकि उस टाइम पे राम सिंह का बहुत बड़ा नाम था,
0: हाँ।
1: राम सिंह एक बहुत बड़े अरेंजर हुआ करते थे, राम सिंह जी सैक्सोफोन बजाते थे, इंडस्ट्री में सैक्सोफोन ऑब्लिगेटरों में कैसे बज सकता है, ये उनकी देन है,
0: राम सिंह जी की देन है जी,
1: और वो ऐसे थे कि आप समझो एक ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और साथ साथ में लिख रहे हैं
0: नोटेशन
1: लिख रहे,
0: गजब,
1: और वो तो आपका ऑर्केस्ट्रा खत्म होगा, उनकी नोटेशन खत्म हो जाएगी,
0: ये रफ्तार
1: थी, जैसे
0: टाइप कर रहे हैं,
1: टाइप करते ना जैसे स्टेनो, जो शॉर्ट फॉर्म ऐसा लिखते थे वो
0: जी।
1: तो बाबा मुझे हमेशा ये कहा करते थे, ये मेरा राम सिंह है,
0: वाह,
1: सबको कहते थे तुम लोग जो मर्जी बनो बट ये मेरा राम सिंह है,
0: तो आप उनकी आंखों के तारे बन गए थे,
1: जो भी था
0: उस वक्त प्यारेलाल जी,
1: प्यारे जी का बहुत बड़ा नाम था,
0: अच्छा,
1: बहुत बड़े वायलिनिस्ट, बहुत बड़े अरेंजर, और उनकी फिल्म भी आ गई थी परसमणि,
0: हाँ 63 में आ गई थी,
1: 63 में आ गई थी, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बहुत बड़ा नाम था, और प्यारे पे वैसे भी बहुत बढ़िया लाजवाब वायलिनिस्ट थे, उनके जो वायलिनिस्ट के गुरु थे वो एंथोनी गोंसाल्विस थे
0: जी, एंथोनी गोंसाल्विस,
1: जिनसे 2-2.5 महीने मैं भी सीखा हूं,
0: अरे वाह वाह,
1: मैं भी उनके पास गया था, तो बाबा जी से 6-6 महीने करते करते चाचा जी के साथ काम करता रहा, और सफी चाचा ने मुझे एक ऐसा मौका दिया जो आमतौर पे किसी को दिया ही नहीं जाता, आमतौर पे किसी को भी ये चीज नहीं मिलेगी, उन्होंने एक फिल्म आई थी जिसका वो बैकग्राउंड कर रहे थे, उस बैकग्राउंड म्यूजिक का पूरा कंडक्टिंग उससे करवाया, 90 म्यूजिशियन,
0: अरे बाप रे, और आपकी इतनी कम उम्र,
1: ये शायद 63-64 की बात है, मुख्तार करके कोई एक्टर थे बहुत बड़े
0: जी जी, शेख मुख्तार
1: उनकी फिल्म थी वो,
0: वाह,
1: 6 फुट के थे,
0: हट्टे कट्टे
1: उनकी फिल्म थी वो, इनका बैकग्राउंड म्यूजिक चाचा कर रहे थे, वो बैकग्राउंड में 7 दिन हमने लिखा, 7 दिन चाचा ने कंपोज किया, और एक हमारे साथ और भी थे वो लिखा, हमने उस 7 दिन के बाद हमने वो म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म सेंटर में मैंने कंडक्ट

0: या आप सोचो कि इंडस्ट्री का टॉप नॉच जो म्यूजिशियन है वो बैठा हुआ है,
1: और एक बच्चा कंडक्ट कर रहा है,
0: एक बच्चा कंडक्ट कर रहा है,
1: बाप
0: 15-16 साल की उम्र,
1: कमाल।
0: वहां से एक कंडक्टिंग चाचा ने मुझे दी। एट द सेम टाइम एक फिल्म का बैकग्राउंड कर रहे थे सभी चाचा नौशाद साहब का
1: जी,
0: तो हम सब बजा रहे थे, मैं सर थर्ड रो में बैठा हुआ था, बजा रहा था, तो मुझे ऐसे बोला है, तो बाहर लेके गए, सोलो बजाएगा।
1: वाह वाह,
0: सोलो बजाना इतने बड़े बड़े म्यूजिशियन? मैंने कहा हाँ चाचा बजाऊंगा। तो 64 की कोई एक फिल्म है नौशाद साहब की, जिसमें वो छोटा सा मेरा सोलो है।
1: कौन सी फिल्म है?
0: वो मुझे याद थी, क्योंकि क्या होता था कि नौशाद साहब और एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनके बैकग्राउंड म्यूजिक जो था है, फिल्म नहीं हुआ करती थी।
1: जी जी जी,
0: सब टाइमिंग पर फिल्म हुआ करती थी, टाइमिंग
1: अच्छा।
0: पर बैकग्राउंड म्यूजिक हुआ करता था। यस, आज जैसे हम फिल्म देख के म्यूजिक करते हैं ना,
1: हाँ, वो ऐसा नहीं होता था।
0: ऐसा नहीं होता था।
1: गजब। तो 64 में किसी फिल्म में आपने
0: हाँ,
1: बजाया?
0: तो वो सोलो बजाया, वो मेरा पहला सोलो था।
1: वाह वाह,
0: आप देखिए, वो एक अंधेरा सामने छा गया।
1: हाँ,
0: मैं 8-10 लोगों में नहीं बजा सका, और ये 64 में इंडस्ट्री के सब बड़े बड़े नाम,
1: क्या बात है,
0: जेडी फर्नांडिस, ऑस्कर परेरा, पीटर साहब भी उसमें थे,
1: वाह,
0: पीटर साहब और दोराडो साहब, बड़े बड़े नाम, और बैठे उसके सामने मैं खड़ा होकर बजा रहा हूँ। वो जो सोलो बजाया यूनुस जी, वो आज तक बजा ही रहा हूँ।
1: गजब गजब, क्या बात है,
0: आज तक बज रहा है। और फिर उसके बाद मुझे बाहर जब बजा लिया, तो मैं केरसी, मुझे बोलते केरसी उत्तम तूने बजाया तो ठीक है, फील नहीं है।
1: केरसी लॉर्ड बोल रहे हैं? ओहो,
0: ये 64 की बात है
1: जी।
0: अब फील ही फील है।
1: ये कहां से आया?
0: ये लग गई मेरे बात में, कहा फील क्यों नहीं है।
1: हाँ हाँ,
0: पहला सोलो था
1: जी,
0: फिर उसके बाद तो पंचम के यहाँ सारे सोलो मेरे हैं
1: जी,
0: मदन साहब के यहाँ, नौशाद साहब के यहाँ, पाकिजा, ये सब सोलो मेरे हैं।
1: बिल्कुल।
0: फिर एक मतलब इंडस्ट्री में ऐसा हुआ कि आ गया है कोई,
1: एक वायलिनिस्ट की एंट्री हो गई।
0: Somebody's
1: जी
0: there.
1: बहुत ही प्यारी यादें आप हमारे साथ बांट रहे हैं कि 12 बरस की, 14 बरस की उम्र और 90 म्यूजिशियंस को आप कंडक्ट करते हैं, और ये तमाम चीजें हैं। हम 63-64 के जमाने में हैं, तो मुझे लगता है यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, नौशाद साहब का कोई गाना सुना जाए। आप बताएंगे कौन सा गाना सुने?
0: 1960 में फिल्म आई थी मुगल-ए-आज़म, और उसका जो गाना है वो हम लोग जब फिल्म देखने गए तो हाँ क्या मतलब, हमारा हाथ जो था छाती पर था, ये कैसे कर सकते हैं ऐसा ऐसा का
1: जी,
0: हम लोग सब यही कहते थे, यार ये ऐसा काम कैसे हो सकता है,
1: करिश्माई काम है,
0: करिश्माई का। और वो गाना देखिए, 1960 का जो गाना है रिलीज हुआ, बना तो शायद 56-57 में बना होगा या 58 में बना होगा।
1: हाँ।
0: जब प्यार किया तो डरना क्या,
1: क्या बात है, क्या बात है। ये गाना सुनते हैं,
0: इस गाने को सुनते हैं।

0: कहानी को थोड़ा फॉरवर्ड करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आपने यहां मुगले आजम का जिक्र कर दिया है और मुझे ये पता है कि आपका एक मुगले आजम कनेक्शन है। मैं कहानी नहीं बताता, आप ही बताइए कि आपका एक मुगले आजम कनेक्शन है और वो बहुत शानदार है और बहुत कम लोगों को पता है।
1: देखिए जी, ये भी भाग्य की बात है कि एक टाइम तो हम मुगले आजम देख रहे थे और तरस रहे थे, वो सोच रहे थे कि ये काम कैसे कर सकते हैं, और वही मुगले आजम 2003 में
0: कलर होके आती है।
1: कलर होके आती है और पता चलता है कि उसकी रिकॉर्डिंग कोई और कर रहा है, तो नौशाद साहब के कानों में गया, तो ये कैसे हो सकता है, मैं तो हूं अभी। नौशाद साहब बोल रहे हैं मैं तो हूं और राइट्स भी मेरे पास है। तो फिर वो सब जो बातें हुई वो फिर हमारे पास आई, तो नौशाद साहब ने कहा कि उत्तम, मुगले आजम आई है, कलर हो रही है और उनको स्टूडियो करना है,
0: पूरा म्यूजिक भी,
1: पूरा म्यूजिक
0: मतलब गाने भी और बैकग्राउंड
1: सब, सब सब सब सब सब कुछ स्टीरियोफोनिक करना है, तो मतलब वही
0: भव्यता
1: चाहिए, वो ट्रैक चाहिए। तो और हमारे पास मुगले आजम में सिर्फ एक ट्रैक,
0: जी बिल्कुल,
1: उस ट्रैक में डायलॉग भी, उस ट्रैक में गाने भी, उस ट्रैक में बैकग्राउंड म्यूजिक भी, उस ट्रैक में साउंड इफेक्ट भी
0: सारे हैं,
1: और उस ट्रैक में
0: हिसिंग भी है,
1: ये चल रही है।
0: अरे बाप रे,
1: 1960 की पिक्चर है, इसको कहां से निकालोगे? तो जो प्रोड्यूसर थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार ये साउंड कहते हैं, मैं आपको अमेरिका से ठीक करवा के निकालता हूं। तो उन्होंने अमेरिका भेजे सारे साउंड, साउंड ठीक हो क्या है, लेकिन जब हम बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे हैं तो देख रहे थे वो साउंड चल रहा है। उन्होंने 50% कम कर दिया था,
0: जी जी
1: 50% अभी भी था, वो 50% कुछ 7 या 8 दिन बैठ के, मैंने अपने टेक्नीशियन के साथ बैठ के, उसका नाम है तनय गजर, जो आवा स्टूडियो का मालिक था,
0: जी जी,
1: उसके साथ बैठ के वो साउंड पूरा क्लीन किया। पहले 7-8 दिन ये गए,
0: जी,
1: उसके बाद में, क्योंकि उस टाइम पे सब लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, हमने सबका बैठ के एक एक गाने का क्लिक बनाया।
0: बाप रे,
1: आप सोचिए क्लिक बनाने में कितना टाइम गया होगा हमारा। पूरा जब क्लिक बना तब एक एक गाने का नोटेशन लिखा गया,
0: जी।
1: अच्छा, अब नोटेशन तो लिख लिया गाना, क्योंकि गाने हैं, पता चल रहा है गाने क्या है, सबको पता है गाने, लिख लिया। अब बैकग्राउंड म्यूजिक जब कुछ सुनने जाओ तो डायलॉग है, डायलॉग के पीछे क्या बज रहा है, ये बहुत बड़ा काम था। यहाँ पे आज का बहुत बड़ा वायलिनिस्ट है शो का, इसका नाम है प्रकाश वर्मा।
0: मैं जानता हूँ।
1: मैंने कहा प्रकाश आ जाओ, ये अपने को लिखना है। पूरा स्कोर लिखा गया,
0: बैकग्राउंड का पूरा
1: स्कोर लिखा गया है।
0: ओ गॉड,
1: उसको कम से कम मुझे लगता है 1.5-2 महीने लग गए,
0: और गानों के नोटेशंस करने
1: वो
0: में
1: भी,
0: क्योंकि
1: वो भी, हाँ, वो
0: अलग
1: भी
0: अलग इंस्ट्रूमेंट के नोटेशन होंगे कि वायलिन के ये हुए, वायला के हुए।
1: अब हमने क्या किया कि नौशाद साहब ने उस टाइम पे अगर 120 म्यूजिशियन यूज किए, तो हमने फिर से 120 म्यूजिशियन यूज किए।
0: इतने म्यूजिशियन किस स्टूडियो में समाए,
1: पार्ट बाय पार्ट?
0: अच्छा,
1: उस टाइम तो लाइव थे
0: जी, यहाँ तो अभी ट्रैक थे।
1: और इस मुगले आजम के दौरान हमने 12 वायलिन

0: छह व्योला, चार चेलो और दो बेस, ये हमने मद्रास से मंगाए थे।
1: बाप रे बाप रे।
0: ये हमने मद्रास से म्यूजिशियन आए, यहाँ रहे 7 दिन। सात दिन ये पूरा रिकॉर्डिंग बजाई उन्होंने अपने पार्ट्स,
1: गजब।
0: खाली वायलिन के पार्ट, वायलिन वो चले गए, फिर फ्लूट आया, फिर ये आया, फिर रिदम आई, फिर सितार आई, फिर तबला आया। ये करते करते करते हमको ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने लग गए इसको।
1: तो मतलब साल भर का काम था ये कुल मिला के।
0: आराम से।
1: और पूरे गाने रिक्रिएट किए गए,
0: पूरे,
1: लेकिन गायक की आवाज सेम रखी गई।
0: गायक की आवाज, म्यूजिक भी वही, सब कुछ वही। आपको, आप अभी सुनो तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कहीं कुछ हमने ऐड किया है।
1: मैंने वो सीडी सुनी हुई है जो स्टीरियोफोनिक, जो जो डॉल्बी आप लोगों ने किया था,
0: जी, जी।
1: उसकी जो भव्यता है, उसका जो साउंड है, गूस बम्स आ जाते हैं। मुझे याद है कि मोहे पनघट पे के पहले पूरे सितार के पीसेस है, बहुत लंबे, बहुत लंबा पीस है,
0: बहुत लंबा,
1: 2.5-3 मिनट
0: सारे किए हुए।
1: जी,
0: सितार के ऊपर सितार बजी, तबले के ऊपर तबला बजा, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि दो दो सितारे बज रही है, वो रखा हुआ पहले का।
1: हाँ हाँ, उसी के ऊपर बजा
0: दिया, उसी के ऊपर बजा हुआ। आप सोचो क्या सिंक किया होगा, कितना सिंक होगा, कितना माइन्यूट काम है।
1: जैसे इस तरह से,
0: जैसे पेंटर माइन्यूट काम होता ना, ये उससे भी ज्यादा माइन्यूट है।
1: इस तरह से मुगले आजम का म्यूजिक रिक्रिएट हो गया,
0: रिक्रिएट हुआ। और अच्छा, मजे की बात ये है, देखिए मुगले आजम बनी थी 10 साल में, और उस टाइम पे मुगले आजम के ऊपर 1,60,00,000 रुपया खर्चा हुआ था।
1: जी,
0: उस टाइम पे, मतलब आज का तो 2-3 हजार करोड़ हो गया वो।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए, पिक्चर रिलीज हो गई, पिक्चर हिट हो गई, बहुत हो गया। अब जब बननी शुरू हुई तो फिर करोड़ों खर्चा। अभी ये जो मैं आपको म्यूजिक बता रहा हूँ, इसके ऊपर 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है।
1: जी जी,
0: बकायदा बिल्स हैं हर चीज के, 1 करोड़ रुपया पूरा म्यूजिक के ऊपर। और उसके बाद में जो उन्होंने कलर किया, वो तो सब जो है सो है सो।
1: जी,
0: मतलब उस टाइम पे भी खर्चा हुआ था, आज भी खर्चा हुआ, उस टाइम भी कमाया था, आज भी कमाया उन्होंने।
1: ऐसी ऐसी लेजेंडरी फिल्म,
0: आज भी अगर 6-7-7-8 करोड़ खर्चा किया है तो उन्होंने 40 करोड़ कमाया वापस। और देखा कि उन्होंने यंगस्टर्स ने,
1: जी बिल्कुल अलग जनरेशन थी,
0: अलग जनरेशन ने पूरी फिल्म देखी और फिल्म को एंजॉय किया।
1: तो जब भी आप मुगले आजम का ये जो कलर वर्जन डॉल्बी डिजिटल देखें, तो ये जरूर याद करें कि उत्तम जी ने ये सारा म्यूजिक रिक्रिएट किया है और ये साल भर की मेहनत का नतीजा है। एक और गाना मुगले आजम का हो जाए।
0: बिल्कुल हो जाए। वो जो लास्ट गाना रफी साहब का गाना बजाइए,
1: जिंदाबाद है मोहब्बत, जिंदाबाद।
0: क्योंकि क्या है, उसमें नौशाद साहब ने बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा यूज किया,
1: बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। वो जिस तरह से ऊपर जाता है, वाह वाह, कुमार साहब पर फिल्म आ गया।
0: ये सुनाइए,
1: सुनते।

0: देखिए, बातों को थोड़ा फ्लैश फॉरवर्ड इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये जो मुगले आजम का रिक्रिएशन है ये बहुत कम लोगों को पता है
1: जी जी।
0: कि ये संगीत आपने,
2: यहाँ मैं एक बात बता दूं, इस दौरान जो है ना मेरा जो लड़का है गुरमीत
0: जी,
2: उसका 60% उसका हाथ है इसके अंदर।
0: जी जी जी,
2: सारा जो इंस्ट्रूमेंट्स की डबिंग है, वायलेंस की डबिंग है, वो सब लिखना, वो सब उसने किया हुआ है। बात बाकी जो काम तो फिर मैंने मिक्सिंग वगैरह करवाई।
0: जी जी जी, क्या बात है। वापस चलते हैं 1964 के जमाने में जब आप कंडक्ट तो करने लगे थे और सोलो पीसेस भी बजा रहे थे। इस दौर में दो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स से आपकी मुलाकात का जिक्र हम सुनना चाहेंगे, एक तो नौशाद साहब और दूसरे मदन मोहन जी।
2: देखिए जी, नौशाद साहब के आते उनके घर में तो मैं घुस गया था क्योंकि मोहम्मद शफी साहब थे
0: जी,
2: लेकिन उनके साथ कभी ऐसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई। नौशाद साहब के साथ डायरेक्ट मुलाकात जो हुई है वो 72 की बात है।
0: इतना लंबा समय निकल गया
2: जी, क्योंकि शफी साहब काम करते थे, हम लोग बजाते थे
0: जी। तो
2: जैसे मैं म्यूजिशियन था वैसे सब दुनिया के म्यूजिशियन सब बजाते थे हम लोग। 72 में चाचा ने मुझे कहा तुम घर आओ। मैं घर गया
0: जी,
2: चाय पीने, चाय पीते हैं, चलो मेरे साथ।
0: हम्म,
2: तो उनकी गाड़ी में वो आए तो कार्टर रोड में नौशाद साहब के घर आ गए। मैं कहा ये तो नौशाद साहब का घर है,
0: आशियाना
2: आशिया। मैं कहा चाचा यहाँ क्या, चलो चलो बताता हूँ। अंदर चले गए, रूम में बैठ गए, नौशाद साहब ऊपर से आए, बोले आओ सभी मियाँ, किसको ले आए, इसको किसको ले आए, ये कौन है? देखा तो हुआ है इसको, अपनी रिकॉर्डिंग बजाता है ना, शायद वायलिन बजाता है। हाँ जी वायलिन बजाता है। तो क्यों लाए उसको यहाँ पे? मैं इसलिए लाया हूँ कि आज से ये आपके साथ काम करेगा।
0: गजब,
2: क्योंकि मैं अब मेरे से काम नहीं होगा, मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा, आज से उत्तम आपका काम करेगा। तुमको इतना भरोसा है इस पर? बोले हाँ जी बिल्कुल भरोसा, कर लेगा ये पूरा काम? बोले हाँ। वो पहली मुलाकात थी।
0: वाह वाह वाह, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही
2: है। शाह साहब सामने बैठे हुए, चाचा बैठे हुए, मैं बैठा हुआ। तो बोले ठीक है, तो इसको कल सुबह भेजो। दूसरे दिन जब मैं गया तो उनकी एक जगह थी, वो बैठते थे, एक सामने कुर्सी थी
0: जी जी,
2: जैसे आप बैठे हैं ऐसे मैं बैठा हूँ, तो ऐसे वो कुर्सी मैं लास्ट तक बैठा उनके साथ।
0: आज भी है वो उसी जगह?
2: आज भी वो कुर्सी, और उस कुर्सी पर
0: रफी साहब भी बैठते थे,
2: बड़े बड़े सिंगर बैठे हैं
0: जी,
2: गुलाम अली साहब से ले, आमिर खान साहब से लेकर प्रसुल्ले साहब के, रफी साहब, लता जी, आशा जी, सब उस कुर्सी पर बैठते। वो कुर्सी मेरी सामने लिखते थे जी। आओ उत्तम, आओ उत्तम साहब। ये बड़ी खूबसूरत वाक्य है
0: जी जी,
2: तहजीब और इज्जत
0: जी,
2: ये अगर किसी से सीखनी है ना तो नौशाद साहब से।
0: क्या बात है।
2: मैंने उनको कभी तू बोलते नहीं सुना
0: जी,
2: कभी तुम बोलते नहीं सुना, तो मुझे उत्तम साहब, तो मैं उनको जी, नाम तो मैं उनको ले नहीं सकता था, तो जी जी जी करके बात करता था, या अंकल बोल देता था। कल शफी मियाँ आपको छोड़ के गए और कह गए कि आप मेरे साथ काम करेंगे। मैंने कहा जी अगर आप इस लायक समझते हैं तो। क्या लोगे रिकॉर्डिंग का? मैंने कहा जी

0: आप जो दे देंगे?
1: नहीं नहीं नहीं,
0: आप बताओ क्या लोगे?
1: ये देखिए, ये बात है 72 की।
2: जी जी।
1: क्या उम्र होगी मेरी? 48, 58, 68, 24 साल की उम्र।
2: जी जी।
1: 23-24 के।
2: जी।
1: तो मैंने कहा, अंकल मैंने सुना है संगीतकारों में सबसे बड़े आप थे और सबसे ज्यादा पैसे भी आपने लिए।
2: जी।
1: और आपने जो पैसे लिए वो तो किसी ने नहीं लिए।
0: हंस पड़े, बोले हाँ सही बात है।
1: मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि अरेंजरों में सबसे ज्यादा पैसे मैं लूं।
2: अरे बाप रे।
1: उनको ये नहीं लगा कि अपने ऊपर आ जाएगा लड़का।
2: हाँ।
1: तो मैंने कहा अंकल 750 रुपए रखेंगे आने का।
2: हाँ।
1: वैसे उस टाइम पे 200, 250, 300 रुपए में काम कर रहे थे लोग।
2: तो ये 3 गुना मांगा?
1: 750 में आ गए।
2: जी।
1: बोले ठीक है,
2: 750 रुपए एक गाने का।
1: गजब। बोले ठीक है। और यूनुस साहब ये दिन आया कि प्रोड्यूसर को बोलते थे कि वो उत्तम से बात कर लो, वो जो बोलेगा वही करना।
2: वाह।
1: और 35 साल मैंने उनके साथ काम किया।
2: बाप रे, 35 साल नौशाद साहब के साथ काम करना, मतलब एक पूरे युग को जीना।
1: पूरा युग को जीना। और आप सोचिए कि इन 35 सालों में हम कितना नजदीक आ गए होंगे, कितना समझते होंगे एक दूसरे को। जब मेरी लड़की प्रीति उनके यहां गई सीखने के लिए।
2: अच्छा।
1: हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ा कनेक्टेड वाक्या है।
2: जी।
1: तो प्रीति बोले डैडी मुझे अंकल के पास ले चलिए, अब्बू के पास ले चलिए। मैं ले गया। वो इतना उनका आपस में प्यार हो गया कि इस प्यार की वजह से मैं उत्तम साहब नहीं रहा, मैं उत्तम हो गया।
2: वाह वाह वाह वाह, प्रीति की वजह से ही हुआ।
1: प्रीति की वजह से, मतलब अब तक वो मुझे उत्तम साहब बोल रहे थे, प्रीति आ गई, वो इतना प्यार हो गया इनमें, इतना वो मतलब अब्बू और प्रीति, अब्बू प्रीति। और उस दौरान मैंने एक दिन देखा कि मुझे उत्तम करके बुला रहे हैं। उत्तम कहाँ है? मैं कहा बोले बड़ा अच्छा लगा। बुजुर्ग जब
2: नाम लेके पुकारते हैं
1: तो बहुत अच्छा लगता है।
2: जी जी।
1: क्योंकि मेरे डैडी भी मुझे उत्तम जी बोलते थे, मम्मी भी मुझे उत्तम जी बोलते थे।
2: हाँ।
1: पता नहीं क्या बात है।
2: अरे
1: हाँ, पता नहीं, आई डोंट नो। उत्तम जी आ गए बेटा।
2: वाह।
1: तो उस दिन से मैं उनके लिए उत्तम हो गया और फिर उनके जनाजे तक मैं साथ में था।
2: जी। नौशाद साहब की और बहुत सारी बातें हम शेयर करेंगे, यहाँ पहले उनका एक गाना सुनते हैं। अभी मदन मोहन जी वाली बात बाकी है, उसको
1: नहीं, पहले नौशाद साहब का एक गाना सुना दीजिए जो मेरा उनके साथ पहला गाना है।
2: जी।
1: माय फ्रेंड का गाना है वो।
2: हाँ हाँ।
1: रफी साहब का गाया हुआ गाना है, नैया मेरी बहती जाए, ये मेरा पहला गाना उनके साथ।
2: वाह वाह वाह, ये सुनते हैं उसके बाद।
1: ये सुनिए, उसके बाद फिर हम मदन साहब के ऊपर चलते हैं।

0: नौशाद साहब की बातें तो और होंगी, ये गाना हमने सुना। एक बहुत दिलचस्प वाकया है मदन जी से मुलाकात का,
1: जी जी,
0: जो वैसे हमारी आपकी मुलाकातों में आपने सुनाया। हमारे सुनने वालों को ये वाकया सुनाइए जिस किस्सा गोई के साथ आप सुनाते हैं।
1: जी जी, ये शायद 1963-64 की बात होगी
0: जी,
1: जब उनके यहाँ डैडी 2-3 दफा लेके गए, मुझे मिले नहीं।
0: हाँ, बहुत बिजी थे।
1: बिजी रहते थे और उस टाइम पे म्यूजिशियंस जाते थे सुनाने, तो मोस्टली लोग सुनते नहीं थे। तो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चौथी बार चांस मिल गया। मदन साहब मिल गए बाहर, उनके असिस्टेंट थे सूरी साहब करके,
0: जी जी,
1: वो बाहर बैठे हुए। तो डैडी ने कहा कि हम लोग आए हैं तो चाहते हैं कि लड़के को सुन ले। बोले ठीक है। तो सूरी साहब अंदर गए तो 5 मिनट के बाद हमको बोला जाइए। तो मैं वायलिन लेके, हम दोनों बाप बेटा अंदर चले गए, नमस्ते की उनको। हाँ जी, आइए बैठिए। बैठ गए हम लोग। आप कौन है? तो डैडी ने बोला मेरा नाम सो एंड सो है। ये कौन है? बोलते इज माय फादर, मेरे डैडी बोलते हैं उनको,
0: इज
1: माय फादर। तो मदन साहब को अच्छा नहीं लगा। व्हाट डू यू मीन? सर, वो कहते हैं ना, चाइल्ड इज ए फादर ऑफ ए मैन।
0: ओ,
1: यू मीन दैट? यस। हाँ, क्या करते हैं? ये वायलिन बजाता है। अच्छा, सुनाओ। तो मैंने वायलिन खोली और वही पोलका बजाया जो मुझे टीचर ने सिखाया था।
0: फेलिक्स की दास्तान आप पहले बता चुके हैं।
1: फेलिक्स हेरिडे साहब ने वो पोलका सिखाया था
0: जी।
1: वो पोलका कुछ 9-10 मिनट का है, और वो पोलका ऐसा है कि इसमें कंप्लीट वायलिन आ जाती है, तो वो सुनते रहे
0: जी,
1: क्योंकि संगीतकार थे, उन्होंने सब देखा हुआ था। सुनते रहे 10 मिनट के बाद में, जब मैं ऐसे, मुझे देखते रहे, मुझे वो उनकी आंखें मुझे आज भी याद है, मुझे देखते रहे। फिर डैडी ने कहा कि गाना सुनाओ। तो मदन साहब का कौन सा गाना है मुझे याद नहीं, बट मैंने मदन साहब का गाना बजाया।
0: गजब।
1: ये पोलका के बाद मैंने उनका गाना बजाया।
0: वाह।
1: और गाना बजाने के बाद हम लोग बाहर आए। यूनुस जी, आप सोचो कि वो दिन गया और उनका लास्ट गाना दिल ढूंढता है आई वॉज कंडक्टिंग।
0: क्या बात है। मतलब 1964 में जब आप 16-17 बरस के रहे होंगे, तब से लेकर आखिर 75 तक उनका साथ रहा।
1: सबसे पहला नाम उनकी लिस्ट में मेरा होता था
0: जी, क्योंकि दिल ढूंढता है मेरे ख्याल 1975 में आई थी ये फिल्म।
1: तो
0: मौसम,
1: हाँ, इसी दौरान मैं एक रिकॉर्डिंग बजा रहा था उनकी। तो उस टाइम पे केसी ने भी छोड़ दिया था, मास्टर जी ने भी छोड़ दिया था।
0: मास्टर जी यानी सोनिक जी,
1: सोनिक साहब। हाँ, इनका एक अरेंजर आ गए थे ज्ञान वर्मा।
0: जी जी जी,
1: जो आज जो हमारा प्रकाश है वर्मा, उसके बड़े भाई।
0: हम्म,
1: जिन्होंने दिल ढूंढता है सब उन्होंने किया था।
0: ज्ञान वर्मा कभी उषा खन्ना के साथ भी हुआ करते थे।
1: उषा खन्ना के साथ वायलिन बजाया करते थे, अरेंजर मुझे याद नहीं।
0: जी
1: जी, रवि साहब क्या उन्होंने बहुत काम।
0: हाँ
1: हाँ, रवि साहब क्या बहुत काम किया। तो हम सब बजाते थे साथ में। ज्ञान अच्छा वायलिनिस्ट भी था, बजाता भी था। तो सुबह सुबह 9 बजे पहुंचे हम लोग। तो ज्ञान ने सारा इंट्रोडक्शन वगैरह सब पूरा रिहर्सल कराया, हम लोग करा के बैठ गए। तो मदन साहब आए 9:45 के करीब।
0: जी
1: आए तो सब चुप हो गए, शांत हो गए सब। हाँ ज्ञान सुनो। तो ज्ञान ने कुछ सुनाया, म्यूजिक बजाया हम लोगों ने। फिर उन्होंने बोला म्यूजिक वन सुनाया। तो वो बैठ गए, एक्चुअली खड़े हुए थे तो कुर्सी पे बैठ गए। और उनका चेहरा मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है,
0: पसंद नहीं आ रहा है
1: कुछ, इनको म्यूजिक पसंद नहीं आया। तो गाना था हर तरफ अब यही अफसाने। तो ये गाना था और मैं बजाते चले गया।
0: हिंदुस्तान की कसम फिल्म का,
1: हिंदुस्तान की कसम। और मैं ये गाना बजाता चले गया। 70 म्यूजिशियन चुप बैठा हुआ है और एक लड़का वायलिन बजा रहा है।
0: आपको पता था कि मदन जी गुस्से में है, उनको पसंद नहीं आ रहा
1: है, उसके बावजूद भी वो गाना मैं बजाता रहता।
0: ये किस धुन पे किया था?
1: पता नहीं, आई डोंट नो
0: जी,
1: उस टाइम पे क्या हुआ मुझे पता नहीं,
0: क्योंकि मदन जी का गुस्सा बहुत मशहूर था।
1: लेकिन क्या था कि मदन जी का गाना बजा रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे शायद कुछ नहीं

0: जी
1: क्योंकि मैं कहीं और चीज नहीं बजा रहा था,
0: हाँ
1: मैं उनका ही गाना दारारी रारी यही बजा रहा था। बजाते बजाते मैंने कुछ बजा दिया,
0: अपनी तरफ से,
1: अपनी तरफ से बज गया,
0: वाह
1: मैंने
0: वाह।
1: जानबूझकर नहीं बजाया, बज गया। तो वहां से उठे और सीधा मेरे पास आके बोलते, व्हाट डिड यू प्ले? मेरे तो पसीने छूट गए, एसी में मुझे पसीना आ गया। सर, आई सेड सर नथिंग, व्हाट डिड यू प्ले जस्ट नाउ? एकदम उनका आवाज चेंज हो गई पूरी।
0: हाँ।
1: मैंने, मुझे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ अपने, सर या आई प्लेड दिस, तारारी री री तिरी री तारारी तर तारी री री द द द त त, ये बजाया मैंने।
0: हाँ वो एक पीस आप वायलिन लाए हैं, हम चाहते हैं कि आप ये सुनाएं हमको।
1: लाया तो हूं।

0: ज्ञान, ये जो उत्तम बजारा है ये फर्स्ट म्यूजिक होगा एंड सोलो वैलिड होगा एंड उत्तम विल प्ले सोलो वैलिड।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: यहां से यूरज जी आई बिकेम ए सोलो वायलिनिस्ट फॉर हिम।
1: क्या बात है। और फिर बहुत गानों में वायलिन,
0: बहुत गानों में सोलो बजाया
1: जी। कुछ गानों का जिक्र हो जाए।
0: मुझे याद नहीं है लेकिन बहुत से गाने हैं
1: जी।
0: हाँ, ये गाना याद है मुझे।
1: जी
2: हर तरफ अब

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले रविवार।

अभी आप आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है FM 102.5 MHz पर। इस समय शाम के 5 बजे हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। इस सभा का आगाज हम कर रहे हैं युववाणी कार्यक्रम के साथ।

0: नमस्कार।
1: रविवार की इस सुहानी शाम में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन का युवा कार्यक्रम युववाणी। मैं हूँ रिद्धि।
0: और मैं हूँ आयशा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस एक घंटे की खूबसूरत यात्रा पर।
1: रविवार का दिन वैसे तो आराम के नाम होता है, हफ्ते भर की भागदौड़ के बाद लगता है कि आज बस थोड़ी देर चैन से बैठेंगे, चाय बनाएंगे, खिड़की के पास बैठकर बारिश देखेंगे और दुनिया को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे।
0: लेकिन आजकल का रविवार भी बेचारा कहाँ आराम पाता है। स्कूलों में त्रैमासिक परीक्षाओं की तैयारी चल रही है, तो कहीं कॉलेज में क्लासेस अपने पूरे शबाब पर है, असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशंस अपनी जगह, और ऊपर से त्योहारों की धूम।
1: बिल्कुल, घर में त्योहार की तैयारियां, बाहर बारिश का मौसम और मोबाइल में लगातार आने वाले मैसेजेस, कल की क्लास का क्या सिलेबस है, असाइनमेंट कब सबमिट करना है, एग्जाम में क्या आएगा।
0: और अगर आप स्टूडेंट हैं तो शायद इस समय आपकी जिंदगी में तीन ही मौसम चल रहे होंगे, बारिश का मौसम, परीक्षा का मौसम या फिर अटेंडेंस का मौसम।
1: और मौसम सबसे अनप्रिडिक्टेबल होता है।
0: बिल्कुल सच में। लेकिन शायद यही तो हमारी युवा जिंदगी की खूबसूरती भी है। एक तरफ पढ़ाई, करियर और फ्यूचर की चिंता, दूसरी तरफ दोस्त, त्योहार, बारिश, संगीत और छोटी छोटी खुशियाँ। स्केड्यूल कितना भी बिजी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हमें अपने आसपास की दुनिया के लिए थोड़ा समय निकालना ही पड़ता है।
1: और इसी बात से आज के हमारे कार्यक्रम की शुरुआत होती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे दो ऐसे खास दिनों की जो सीधे तौर पर युवाओं, उनकी भागीदारी और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी से जुड़े हैं।
0: तो बस इतना समझ लीजिए कि आज की हमारी बातचीत में युवा शक्ति भी होगी, खेल और विश्वविद्यालयों की चर्चा भी होगी और अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने की बात भी होगी।
1: एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज सिर्फ क्लासरूम्स, लेक्चर्स और एग्जामिनेशंस तक सीमित नहीं है। यहाँ बनने वाली फ्रेंडशिप्स, एक्सपीरियंसेस, स्पोर्ट्स, टीम वर्क और पार्टिसिपेशन

0: हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बनते हैं
1: और दूसरा दिन हमारे आसपास की उस दुनिया की तरफ देखने के लिए प्रेरित करता है जिसे हम अक्सर बहुत आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे शहर की सड़कें, सार्वजनिक जगह, प्रकृति और हमारा एनवायरनमेंट।
0: और सबसे अच्छी बात की है कि इन दोनों पहलुओं में पार्टिसिपेशन के लिए शायद किसी बहुत बड़े पंच की ज़रूरत ही ना पड़े।
1: बिल्कुल, कभी कोई एक छोटा सा कदम, कोई एक घंटे की कोई एक एक्टिविटी या फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया गया कोई छोटा सा प्रयास भी बहुत मायने रख सकता है।
0: तो अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं या बस एक ऐसे युवा है जो अपने आसपास की दुनिया में थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज देखना चाहते हैं तो आज का कार्यक्रम आपके लिए है।
1: और अगर आप अपने रविवार की शाम वाली चाय हाथ में थामे बैठे हैं
0: तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द हम खोलेंगे आज के इन दिनों दोनों खास दिनों का राज।
1: लेकिन उससे पहले आइए शुरुआत करते हैं इस सफ़र की एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ।

0: इस गाने को आपने सुना मेहुना फिल्म से, बहुत ही चुलबुला सदाबहार गीत को आवाज़ दी थी के वसुंधरा दास ने और शब्द लिखे थे जावेद अख्तर ने और संगीत था अनु मलिक का।
1: तो दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने आपसे कहा था कि आज की शाम हम बात करेंगे दो खास दिनों की, और अब वक्त है उस पहले खास दिन से पर्दा उठाने का।
0: जी हाँ, ये दिन खास तौर से जुड़ा है यूनिवर्सिटीज, स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स से। हर साल 20 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट।
1: अब आप सोच रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स को सेलिब्रेट करने के लिए एक पूरा इंटरनेशनल डे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी।
0: दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। यूनिवर्सिटी लाइफ को हम अक्सर लेक्चर्स, असाइनमेंट्स, एग्जामिनेशंस, अटेंडेंस और प्लेसमेंट्स से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी सिर्फ किताबों से सीखने की जगह नहीं है। खेल भी एजुकेशन का एक बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि मैदान पर भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है।
1: टीम वर्क, डिसिप्लिन, हार के बाद वापस उठना, रूल्स का सम्मान करना और सबसे जरूरी फेयर प्ले।
0: बिल्कुल, और इसी सोच को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ावा देने की दिशा में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी FISU ने एक खास दिन मनाने का प्रस्ताव यूनेस्को के सामने रखा।
1: और फिर आया साल 2015, यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस में इस दिवस को ऑफिशियली प्रोक्लेम किया गया,
0: और इसका पहला ऑफिशियल सेलिब्रेशन हुआ 20 सितंबर 2016 को।
1: लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, आखिर 20 सितंबर को ही क्यों, कोई और तारीख क्यों नहीं?
0: तो रिद्धि, इस तारीख के पीछे भी एक बेहद ही दिलचस्प कनेक्शन है। 20 सितंबर को इसलिए चुना गया क्योंकि ये समय आम तौर पर यूनिवर्सिटीज के लिए नए एकेडमिक कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है, यानी स्टूडेंट्स के लिए एक नए कैलेंडर, एकेडमिक ईयर, नए एक्सपीरियंस और नई एक्टिविटी की शुरुआत का समय।
1: लेकिन कहानी में एक और हिस्टोरिकल कनेक्शन भी है। 1924 में पहली वर्ल्ड स्टूडेंट चैंपियनशिप्स की शुरुआत हुई थी और 20 सितंबर की तारीख उससे भी जुड़ती है,
0: यानी लगभग एक सदी पुरानी यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स की इंटरनेशनल जर्नी को ये दिन आज भी याद करता है।
1: सोचिए, 1924 में जब आज जैसे स्मार्टफोन्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस नहीं थी, तब भी स्टूडेंट्स अलग अलग जगहों से स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशंस के लिए एक साथ आ रहे थे।
0: और आज हम एक क्लिक में किसी इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट का लाइव अपडेट देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन स्टूडेंट्स में कॉम्पिटिशन, टीम वर्क और खेल के प्रति एंथुसियाज्म आज भी वही है।
1: वैसे स्पोर्ट्स की बात हो और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात हो, तो एक सवाल बनता है, क्या स्पोर्ट्स सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल एथलीट्स बनना चाहते हैं?
0: बिल्कुल नहीं, यही इस दिवस की खूबसूरत बात है दोस्तों। यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ मेडल्स या चैंपियनशिप नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है फिजिकल एक्टिविटी और हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देना, और स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच एक स्ट्रॉन्गर कनेक्शन को डेवलप करना,
1: और फेयर प्ले, रिस्पेक्ट और टीम वर्क जैसी वैल्यूज को भी स्ट्रेंथन करना।
0: क्योंकि क्लासरूम में टीचर्स कह सकते हैं कि टीम वर्क जरूरी है, लेकिन मैदान में एक टीम के साथ खेलते हुए टीम वर्क को महसूस करना एक अलग ही अनुभव है।
1: और शायद इसी वजह से यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स का कनेक्शन सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रखा गया, उसका एक उद्देश्य यूनिवर्सिटीज और उनके पास कि लोकल कम्युनिटीज के बीच भी मजबूत संबंध बनाना है।
0: मतलब खेल सिर्फ अपने लिए नहीं, खेल के माध्यम से कम्युनिटी को डेवलप करना।
1: जब हम यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ ट्रेडिशनल गेम्स जैसे क्रिकेट, फुटबॉल या एथलीट नहीं आती। यूनिवर्सिटी लेवल स्पोर्टिंग कल्चर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग खेलों और एक्टिविटीज को शामिल करता है।
0: और FISU का काम भी सिर्फ कॉम्पिटिशन्स तक सीमित नहीं है, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स को एजुकेशन, कल्चर और स्टूडेंट लाइफ के साथ जोड़ना इसके एक ब्रॉडर विजन का हिस्सा है।
1: तो अगली बार जब कोई कहे कि स्पोर्ट्स से पढ़ाई का क्या कनेक्शन है,
0: तो आप कह सकते हैं कि बहुत गहरा कनेक्शन है बंधु,
1: क्योंकि यूनिवर्सिटी में हम सिर्फ सब्जेक्ट

0: नहीं पढ़ते, हम हैबिट्स, रिलेशनशिप्स, डिसिप्लिन और जीवन के लिए जरूरी स्किल्स भी सीखते हैं।
1: और 20 सितंबर का इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट इसी बात को याद दिलाने का एक इंटरनेशनल ओकेजन है कि एजुकेशन और फिजिकल एक्टिविटी एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ ही हो सकते हैं।
0: लेकिन अब एक और सवाल बाकी है,
1: इस साल इस खास दिन की आखिर क्या थीम हो सकती है?
0: और सबसे जरूरी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं?
1: इन सवालों के जवाब के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले सेगमेंट्स में हम इस बारे में बात करेंगे, इस साल की थीम को जानेंगे और जानेंगे कि आप इस मूवमेंट का हिस्सा कैसे बन सकते हैं।
0: हमारी बातचीत तो जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक और गीत।

0: श्रोताओं, आपने बेहद खूबसूरत गीत सुना जिसके गायक थे कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार थे जतिन ललित।
1: दोस्तों, अभी अभी हमने जाना कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट की शुरुआत आखिर कैसे हुई, यूनेस्को ने इसे कैसे ऑफिशियली प्रोक्लेम किया और 20 सितंबर को इसके लिए चुना। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी इस खास दिन को एक खास थीम के साथ मनाया जा रहा है।
0: और इस साल की थीम सुनकर शायद आपको लगे कि ये कोई मैथ्स का सवाल है,
1: लेकिन नहीं, इसका आंसर है 10 ईयर्स 10 किलोमीटर्स,
0: यानी 10 साल पूरी होने की खुशी में 10 किलोमीटर।
1: दरअसल 2026 में यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट के ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन को 10 साल पूरे हो रहे हैं। इसी 10वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए FISU ने दुनिया भर की यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कम्युनिटी के सामने रखा है एक ग्लोबल चैलेंज, 20 सितंबर को 10 किलोमीटर की फिजिकल एक्टिविटी को पूरी करने का।
0: अब यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, 10 किलोमीटर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको प्रोफेशनल रनर बनना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, आप वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, और अगर पानी के आसपास की सुविधा है तो रोइंग के जरिए भी डिस्टेंस कवर की जा सकती है।
0: मतलब चैलेंज एक है लेकिन रास्ते कई हैं।
1: बिल्कुल रिद्धि, और शायद यही इसे और इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी का मतलब सिर्फ स्पीड या जोश नहीं है, कभी कभी बस छोटी सी शुरुआत करना भी बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है।
0: और अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि 10 किलोमीटर मेरे तो रोज के स्टेप्स ही पूरे नहीं होते,
1: तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसे आप अपनी कैपेसिटी और कंफर्ट के हिसाब से पूरा कर सकते हैं। अकेले करना चाहें तो इंडिविजुअली पार्टिसिपेट कर लीजिए, या अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक कैंपस एक्टिविटी का हिस्सा बन सकते हैं।
0: आप अपने यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से भी जानकारी ले सकते हैं, कई यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस इस तरह के ओकेजन्स पर वॉक्स, कैंपस रन्स या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करती हैं।
1: और अगर आपके कैंपस में कोई इवेंट नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई छोटी सी एक्टिविटी प्लान करें, जैसे कि मॉर्निंग वॉक, ग्रुप साइकिलिंग या कैंपस में कोई फिटनेस एक्टिविटी।
0: और आजकल किसी एक्टिविटी को दुनिया तक पहुँचाना भी मुश्किल नहीं है,

0: आप अपनी पार्टिसिपेशन की फोटो या छोटा सा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं।
1: और FISU ने इसके लिए खास हैशटैग्स भी दिए हैं दोस्तों, जैसे कि #IDUS2026 और #Let'sIDUS। पार्टिसिपेंट्स को 20 सितंबर को शाम 4 बजे के लोकल टाइम अपनी एक्टिविटी शेयर करने के लिए इनकरेज किया गया था और FISU को टैग करने के लिए भी कहा गया था।
0: तो हो सकता है 20 सितंबर की शाम दुनिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कोई दौड़ रहा हो, कोई चल रहा हो, कोई साइकिलिंग कर रहा हो
1: और कोई दोस्त अपने दोस्तों से बस ये कह रहा हो कि चल 10 किलोमीटर पूरे करके आते हैं।
0: बिल्कुल आयशा, कभी कभी किसी बड़े बदलाव की शुरुआत भी ऐसे ही छोटी सी बात से होती है और आज का ये चैलेंज शायद इसी बात को फिर से याद करने का एक बहाना है। चलते रहिए।
1: हाँ, लेकिन अगर फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए किसी वजह से पॉसिबल नहीं है तब भी आप इस इनिशिएटिव से जुड़ सकते हैं दोस्तों।
0: कैसे? यूनिवर्सिटीज में स्पोर्ट्स और स्टूडेंट वेलबींग पर वेबिनार्स, वर्कशॉप्स और राउंड टेबल डिस्कशंस भी ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, यानी पार्टिसिपेशन सिर्फ मैदान में होना जरूरी नहीं,
1: क्योंकि स्पोर्ट्स का असर सिर्फ शरीर पर नहीं पड़ता, ये स्टूडेंट वेलबींग, सोशल कनेक्शन और कम्युनिटी हेल्थ से भी जुड़ा होता है।
0: तो इस 20 सितंबर को सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आपने कितने किलोमीटर्स पूरे किए,
1: सवाल ये भी है कि आपने अपने दिन में कितने कदम चले, अपनी हेल्थ के लिए और अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आपने क्या समय निकाला।
0: 10 साल की जर्नी
1: और सेलिब्रेशन के लिए 10 किलोमीटर।
0: तो अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कम्युनिटी का हिस्सा हैं, इस साल 20 सितंबर को आप ही इस ग्लोबल चैलेंज का हिस्सा बन सकते हैं।
1: और अब वक्त है हमारे आज के दूसरे खास दिन की ओर बढ़ने का,
0: जिसका रिश्ता है हमारे आसपास की दुनिया से, हमारी सड़कों से, हमारी सार्वजनिक जगहों से और इस एनवायरनमेंट से जिसमें हर दिन जीते हैं।
1: क्या है वो दिन और इसकी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई,
0: जानेंगे अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए आइए श्रोताओं इस गीत का आनंद लेते हैं।

0: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
1: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो। ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
0: RBI कहता है, जानकार बनिए,
1: सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, इस ब्रेक से पहले आपने सुना फिल्म लगान से खूबसूरत सा गीत, जिसे गाया था आशा भोसले और उदित नारायण ने, जिसे शब्द दिए थे जावेद अख्तर ने और संगीत दिया था AR रहमान ने। और दोस्तों, आज की हमारी बातचीत में हमने अब तक यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स की बात की, चलने की, दौड़ने की और एक्टिव रहने की बात की, लेकिन इसी तारीख से जुड़ता है एक और बहुत महत्वपूर्ण दिन,
3: जो है वर्ल्ड क्लीनअप डे।
2: नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? कूड़ा उठाना, सफाई करना, हाथ में ग्लव्स और गार्बेज बैग्स लेके भागना।
3: लेकिन वर्ल्ड क्लीनअप डे की कहानी सिर्फ सफाई करने की कहानी नहीं है, ये कहानी है इस बात की जब लोग मिलकर अपने आसपास की जिम्मेदारी लेते हैं तो एक छोटा सा लोकल आइडिया कैसे ग्लोबल मूवमेंट बन सकता है।
2: और इसकी शुरुआत हुई थी यूरोप के एक छोटे से देश एस्टोनिया से साल 2008 में।
3: उस समय एस्टोनिया में एक सिविक मूवमेंट शुरू हुआ था, लेट्स डू इट। और सोचिए, उस दिन पूरे देश को साफ करने के लिए 50,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स एक साथ आए,
2: सिर्फ 5 घंटे में।
3: जी हाँ श्रोताओं, 50,000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर पूरे देश में क्लीन अप किया और करीब 10,000 टन कचरा इकट्ठा किया।
2: और यहीं से एक सिंपल आइडिया ने जन्म लिया, अगर एक देश के लोग एक दिन के लिए भी साथ आकर अपने एनवायरनमेंट की सफाई कर सकते हैं तो क्या दुनिया के दूसरे लोग भी ऐसा नहीं कर सकते?
3: यही आइडिया धीरे धीरे बॉर्डर्स पार करता गया। 2018 में पहला कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल वर्ल्ड क्लीनअप डे हुआ, जिसमें 157 कंट्रीज और टेरिटरीज से 18 मिलियन से ज्यादा वॉलंटियर्स जुड़े।
2: यानी एस्टोनिया की एक छोटी सी पहल से शुरू हुई बात एक ग्लोबल मूवमेंट बन गई
3: और इस मूवमेंट को इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन भी मिला। यूनेस्को जापान प्राइज ऑन एजुकेशन फॉर

0: सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 2018 में एस्टोनिया को लेट्स डू इट फाउंडेशन को उसके वर्ल्ड क्लीनअप डे और कीप इट क्लीन प्रोजेक्ट्स के लिए सम्मानित किया गया।
1: लेकिन वर्ल्ड क्लीनअप डे की कहानी में एक और बड़ा पड़ाव आया दोस्तों 2023 में।
0: 8 दिसंबर 2023 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन 78/122 को अडॉप्ट करते हुए 20 सितंबर को वर्ल्ड क्लीनअप डे के रूप में हर साल ऑब्जर्व करने की घोषणा की। इसके ग्लोबल ऑब्जर्वेंस को यूएन हैबिटेट फैसिलिटेट करता है।
1: तो अब ये सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ वॉलंटियर्स का कैंपेन नहीं रहा दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के स्तर पर भी इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट और रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट से जोड़कर देखा जाता है।
0: और अब जरा इस ग्लोबल स्टोरी को अपने शहर से जोड़कर देखते हैं, यानी उज्जैन से।
1: उज्जैन सिर्फ हमारा एक शहर नहीं है, ये एक ऐसी खास जगह है जहाँ हर दिन श्रद्धा, संस्कृति और टूरिज्म एक साथ चलते हैं। महाकाल की नगरी में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, शिप्रा के घाटों पर लोग पहुँचते हैं।
0: और जब किसी शहर में इतनी बड़ी संख्या में विजिटर्स आते हैं तो नेचुरली वेस्ट जनरेशन का प्रेशर भी बढ़ता है, खासकर फेस्टिवल्स और बड़े धार्मिक आयोजनों के समय।
1: सोचिए, फूल मालाएं, नारियल, फूड पैकेजिंग, प्लास्टिक बॉटल्स, ये चीजें अगर इधर उधर पड़ी रहें तो सिर्फ शहर की सुंदरता ही प्रभावित नहीं होंगी,
0: बल्कि जिस जगह पर लोग शांति और आस्था का अनुभव करने आते हैं वही जगह अस्वच्छ दिखाई देने लगी तो उसे पूरे अनुभव पर असर पड़ता है।
1: हमारी भारतीय सोच में तो स्वच्छता और पवित्रता का रिश्ता बहुत पुराना है, शायद इसीलिए हमारे लिए स्वच्छता से दिव्यता सिर्फ एक स्लोगन नहीं है बल्कि एक भाव है।
0: और बात सिर्फ धार्मिक भावना की नहीं है, क्लीन सराउंडिंग्स का सीधा संबंध पब्लिक हेल्थ से भी है। खुले में पड़ा कचरा, गंदा पानी और अनमैनेज्ड वेस्ट कई तरह के हेल्थ रिस्क को बढ़ा सकता है।
1: और जब हम शिप्रा जैसी पवित्र नदी की बात करते हैं तो वेस्ट मैनेजमेंट और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आखिर नदी सिर्फ देखने या पूजा करने की जगह नहीं है, वो एक इकोलॉजिकल सिस्टम भी है।
0: और उज्जैन जैसे शहर की इकोनॉमी भी टूरिज्म से जुड़ी है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, लोकल ट्रांसपोर्ट, स्ट्रीट वेंडर्स, गाइड्स, कितने ही लोगों की रोजी रोटी विजिटर्स से जुड़ी होती है।
1: यानी एक साफ शहर सिर्फ देखने में अच्छा नहीं लगता,
0: वो रहने वालों के लिए हेल्दियर हो सकता है, विजिटर्स के लिए वेलकमिंग हो सकता है और लोकल इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है।
1: और इसी दिशा में भारत में स्वच्छ भारत मिशन और साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी लगातार जोर दिया गया है। सोर्स सेग्रीगेशन, डोर टू डोर कलेक्शन और वेस्ट प्रोसेसिंग जैसे छोटे कदम इसी लार्जर क्लीनलीनेस सिस्टम का हिस्सा हैं।
0: तो वर्ल्ड क्लीनअप डे हमें सिर्फ ये नहीं कहता आज एक दिन सफाई कर लो,
1: बल्कि शायद एक ज्यादा बड़ा सवाल पूछता है कि हम अपने आसपास ऐसा क्या बदल सकते हैं कि कल वही कचरा दोबारा हमें दिखाई ही ना दे।
0: क्योंकि सफाई करना एक एक्टिविटी है,
1: लेकिन कचरा कम करना, उसे सही जगह पर डालना और वेस्ट को अलग अलग करके मैनेज करना एक हैबिट है।
0: और मोमेंट्स तभी सफल होते हैं जब एक दिन की एक्टिविटी धीरे धीरे रोजमर्रा की आदत बन जाए।
1: तो 20 सितंबर को दुनिया भर में लोग अपने अपने तरीके से क्लीन अप एक्टिविटीज से जुड़े होंगे। सवाल ये है कि हम और हमारे शहर के युवा इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं
0: और क्या इसके लिए किसी बड़े इवेंट का इंतजार करना जरूरी है।
1: जवाब जानेंगे हमारे अगली कुछ कड़ियों में, जहां बात होगी वर्ल्ड क्लीनअप डे की और इस साल के खास फोकस एरियाज की। तब तक के लिए आइए सुनते हैं एक और गीत।

0: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
1: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
0: अरे क्यों?
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
0: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
2: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
0: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: दे रे भाई,
3: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं मैक्सिमम फायदे से ही।
4: श्रोताओं, आपने सुना ये बेहद खूबसूरत गीत फिल्म तुम मिले से, जिसके गायक थे नीरज श्रीधर, गीतकार थे कुमार और संगीत दिया था प्रीतम ने।
5: दोस्तों, अब तक हमने जाना कि वर्ल्ड क्लीनअप डे की शुरुआत आखिर कहां से हुई थी और कैसे एस्टोनिया से शुरू हुआ एक छोटा सा सिविक मूवमेंट धीरे धीरे पूरी दुनिया तक पहुंचा।
4: और अब बात करते हैं इस साल की, क्योंकि 20 सितंबर 2026 को वर्ल्ड क्लीनअप डे एक बहुत इंटरेस्टिंग थीम के साथ मनाया जा रहा है।
5: From clean plates to clean cities,
4: यानी साफ प्लेट से साफ शहर तक।
5: अब पहली नजर में तो लगेगा कि आखिर ये प्लेट और सिटी का आपस में कनेक्शन क्या है,
4: लेकिन कनेक्शन बहुत सीधा है। जरा सोचिए, हम रोज खाना खाते हैं और रोज किसी न किसी मात्रा में खाना वेस्ट भी होता है। घर में बचा हुआ खाना, रेस्टोरेंट्स में बची प्लेट्स, शादी ब्याह और फंक्शंस में बचा फूड,
5: और कई बार हम जितना खा सकते हैं उससे ज्यादा प्लेट में ले लेते हैं और फिर आधा छोड़ देते हैं।
4: वहीं से शुरू होती है एक ऐसी वेस्ट स्ट्रीम जो धीरे धीरे हमारे शहरों पर भी प्रेशर डालती है।
5: इस साल वर्ल्ड क्लीनअप डे का फोकस इसी फूड वेस्ट को कम करने, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने और शहरों में सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत करने पर है।
4: और फूड वेस्ट की स्केल सुनकर शायद आपको अंदाजा हो कि ये कितनी बड़ी समस्या है। दुनिया भर में हर दिन 1 अरब से ज्यादा मील्स वेस्ट होने का अनुमान है।
5: और दूसरी तरफ दुनिया में ऐसे भी लाखों लोग हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन और बेसिक सर्विसेज तक आसानी से एक्सेस नहीं मिलता।
4: यानी एक तरफ खाना वेस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ उसकी जरूरत है। इसलिए फूड वेस्ट सिर्फ खाना फेंक दिया वाली छोटी सी बात नहीं है,
5: क्योंकि उस खाने के पीछे पानी लगा है, जमीन लगी, एनर्जी लगी और उसे उगाने और तैयार करने वाले लोगों की मेहनत लगी, और फिर उसे मार्केट तक पहुंचाने में रिसोर्सेज भी लगे।
4: और जब वही खाना कचरे में चला जाता है तो उन सारी रिसोर्सेज का भी एक हिस्सा व्यर्थ चला जाता है।
5: इसलिए इस साल का मैसेज बहुत ही सुंदर तरीके से कहता है कि क्लीन प्लेट्स से ही क्लीन सिटीज की शुरुआत हो सकती है।
4: अब सवाल है, हम इसमें पार्टिसिपेट कैसे करें?
5: तो सबसे पहला तरीका है दोस्तों, अपने आसपास होने वाले लोकल क्लीनअप इवेंट्स में शामिल हो जाएं। वर्ल्ड क्लीनअप डे के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड क्लीनअप एक्टिविटीज और कम्युनिटी इवेंट्स की जानकारी उपलब्ध होती है।
4: आप अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज या लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर किसी पार्क, स्ट्रीट या रिवर बैंक के आसपास क्लीनअप एक्टिविटी भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
5: और अगर आप ग्रुप में कुछ करना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, NSS, NCC, स्टूडेंट क्लब्स या किसी लोकल कम्युनिटी ग्रुप के साथ मिलकर एक छोटा सा क्लीनअप ड्राइव प्लान कर सकते थे।
4: लेकिन पार्टिसिपेशन

0: का मतलब सिर्फ गार्बेज बैग लेकर सड़क पर निकलना ही नहीं है।
1: बिल्कुल, इस थीम के हिसाब से आप अपने घर और कॉलेज में फूड वेस्ट कम करने की छोटी छोटी हैबिट्स को शुरू कर सकते हैं।
0: जैसे जितनी भूख हो उतना ही खाना प्लेट में लेना,
1: बचा हुआ खाना सही तरीके से स्टोर करके बाद में इस्तेमाल करना,
0: फंक्शंस या गैदरिंग्स में जरूरत के हिसाब से फूड प्लानिंग करना,
1: और जहां पॉसिबल हो फूड स्क्रैप्स को अलग रखना और प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशन करना।
0: यानी वर्ल्ड क्लीनअप डे सिर्फ एक दिन सड़क साफ करने का दिन नहीं है,
1: ये उस पूरी चेन के बारे में सोचने का दिन है कि हम क्या कंज्यूम करते हैं, कितना वेस्ट करते हैं और उस वेस्ट का आखिर होता क्या है।
0: और यही आइडिया है सर्कुलर इकोनॉमी का, रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके सीधे कचरे में भेज देने की बजाय उन्हें जितना संभव हो सके सिस्टम में वापस लाना और उनको बेहतर इस्तेमाल करना।
1: वैसे इस साल का ग्लोबल ऑब्जर्वेंस भी खास है, 19 से 21 सितंबर तक चाइना के शाओक्सिंग और जीजांग प्रोविंस में ऑफिशियल ग्लोबल ऑब्जर्वेंस आयोजित किया जा रहा है।
0: लेकिन वर्ल्ड क्लीनअप डे की खूबसूरती यही है कि आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है,
1: आप जहां हैं वहीं से इसका हिस्सा बन सकते हैं।
0: अपने शहर में एक छोटा क्लीनअप,
1: अपने कॉलेज में फूड वेस्ट अवेयरनेस एक्टिविटी,
0: अपने दोस्तों के साथ एक क्लीनलीनेस कैंपेन,
1: या बस अपनी रोजमर्रा की एक ऐसी हैबिट बदलना जिससे कचरा पैदा थोड़ा कम हो,
0: और अपनी एक्टिविटी को सोशल मीडिया पर शेयर करके दूसरों को भी इंस्पायर किया जा सकता है। ऑफिशियल कैंपेन के हैशटैग्स के साथ अपनी छोटी एक्शन स्टोरी दुनिया तक पहुंचाई जा सकती है,
1: क्योंकि कभी कभी अवेयरनेस किसी बड़े भाषण से नहीं एक छोटी सी तस्वीर से भी फैल सकती है। एक साफ किया हुआ पार्क, फूड वेस्ट से बची हुई एक प्लेट, या दोस्तों के साथ मिलकर लगाया गया एक छोटा सा एफर्ट।
0: तो इस 20 सितंबर को एक बार अपनी प्लेट को जरूर देखिएगा
1: और फिर उसके बाद अपने शहर को भी,
0: क्योंकि फ्रॉम क्लीन प्लेट्स टू क्लीन सिटीज सिर्फ इस साल की थीम नहीं
1: बल्कि एक सोच है कि हमारे छोटे छोटे डेली चॉइसेस मिलकर हमारे शहरों की बड़ी तस्वीर बनाते हैं।
0: इसी के साथ आइए श्रोताओं, वक्त हो चला है एक और गीत का।

0: दोस्तों, परिणीता फिल्म से आपने ये खूबसूरत गीत सुना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में, जिसे लिखा था स्वानंद किरकिरे ने और संगीत दिया था शांतनु मोइत्रा ने। दोस्तों, आज की हमारी बातचीत में हमने स्पोर्ट्स से लेकर क्लीनलीनेस और यूथ पार्टिसिपेशन तक कई ज़रूरी बातें की, लेकिन युवाओं की बात हो और करियर की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है?
1: बिल्कुल, आखिर पढ़ाई, स्किल्स और एक्टिविटीज़ के साथ साथ हम सभी की नज़र रहती है एक अच्छे करियर अपॉर्चुनिटी पर, और इसलिए अब वक्त है आज की हमारी आखिरी सेगमेंट का, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़।
0: तो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, इंटर्नशिप के मौके तलाश रहे हैं या अपने करियर की अगली सीढ़ी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो पेन और डायरी उठा लीजिए और नोट कर लीजिए आज के चार काम की अपडेट्स।
1: पहली अपडेट है टीचिंग फील्ड में करियर बनाने वालों के लिए। मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है।
0: बोटनी, केमिस्ट्री, मैनेजमेंट, हिंदी और कंप्यूटर साइंस जैसे कई सब्जेक्ट्स में पद खाली हैं। एलिजिबिलिटी UGC के 2018 के नियम के हिसाब से तय होगी।
1: ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके लिए आवेदन स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है और फॉर्म पहुँचने की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर 2026 शाम 6 बजे तक है। डिटेल्स आपको उनकी वेबसाइट mpbou.edu.in पर मिल जाएंगी।
0: अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। बैंक ऑफ इंडिया ने स्केल 4 तक के विभिन्न ऑफिसर पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है।
1: बिल्कुल, जिन साथियों को बैंक में ऑफिसर लेवल की जॉब चाहिए, वे ऑनलाइन जाकर सीधे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की लिस्ट डेट 25 सितंबर 2026 है।
0: सही कहा, यानी समय बहुत थोड़ा है, तो बिना देर किए बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट

0: विभिन्न ऑफिसर पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है।
1: बिल्कुल, जिन साथियों को बैंक में ऑफिसर लेवल की जॉब चाहिए वे ऑनलाइन जाकर सीधे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की लिस्ट डेट 25 सितंबर 2026 है।
0: सही कहा, यानी समय बहुत थोड़ा है, तो बिना देर किए बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट

0: वेकअप सिट से ये खूबसूरत गीत सुना आपने कविता सेठ की आवाज़ में, जिसे शब्द दिए थे जावेद अख्तर साहब ने और संगीत था अमित त्रिवेदी का।
1: तो श्रोताओं, अब धीरे धीरे वक्त हो चला है आज के युवाणी से विदा लेने का।
0: आज की इस मुलाकात में हमने जाना कि एक युवा सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि स्पोर्ट्स, सोसाइटी और एनवायरनमेंट में भी अपनी भूमिका निभाने वाला एक एक्टिव सिटीजन होता है।
1: कभी अपने कदमों से जैसे 10 किलोमीटर की एक्टिविटी में शामिल होकर,
0: कभी अपने छोटे छोटे डेली चॉइसेस से जैसे फूड वेस्ट कम करके और क्लीनलीनेस का ध्यान रखकर,
1: और कभी अपने करियर के लिए सही मौके तलाश कर।
0: और दोस्तों, इसी के साथ अब घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि ये वक्त है आप सबसे विदा लेने का। आप अब तक सुन रहे थे आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से युववाणी, मेरे यानी आयशा
1: और रिद्धि के साथ। अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, अपने आसपास की दुनिया के प्रति सजग रहिए
0: और अपने सपनों के लिए कदम बढ़ाते रहिए।
1: नमस्कार।

युवा श्रोता अभी अपना कार्यक्रम युववाणी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है FM 102.5 MHz पर। इस समय शाम के 6 बजे हैं। समय है कार्यक्रम भजन संध्या का। भजन संध्या कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं इस गणेश वंदना के साथ।

ईश्वर के साथ सच्चा संबंध तो तब है जब किसी अनिष्ट का भय ना हो, जब कोई डर ना हो, बल्कि हृदय से हृदय को जोड़ लिया जाए, उस ईश्वर के साथ प्रेम का संबंध स्थापित किया जाए।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के गाए इस भजन के बाद आप सुन रहे हैं इस समय ये कार्यक्रम का अंतिम भक्ति गीत बेला सुलेखा और साथियों के स्वर हैं।

श्रोताओं, इस भजन के साथ ही आज का ये भजन संध्या कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन संध्या। आकाशवाणी का ये प्रसारण जारी है आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। हमारे केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत की यह पहली पेशकश कश्मीर की कली फिल्म का गीत आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की थी। ओपी नैयर की बनाई धुन में बोल थे एसएच बिहारी के। सुनवा रहे हैं अगला गीत, लिया है हमने फिल्म सहरा से। गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर, संगीतकार रामलाल, गीतकार हसरत जयपुरी।

हैं आपको अब अगला गीत। ये गीत निकला आनंद बख्शी की कलम से, संगीतबद्ध किया इसे कल्याण जी आनंद जी ने और अपनी आवाज़ें दी मुकेश और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम मेरे हमसफर।

बेशक जिसका हाथ पकड़ा हो उसे ज़िंदगी के सफ़र में कहीं छोड़कर जाना गलत है, लेकिन दिन में कुछ मौके ऐसे ज़रूर आते हैं जब सबको अपने अपने काम होते हैं और उनके चलते जाना ही होता है।

ये धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई हुई। हमजोली फिल्म का गाना।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गाए, आनंद बख्शी के लिखे। फिल्म हम जूली के इस गाने के बाद सुनवा रहे हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है आंसू बन गए फूल, शब्द गोविंद मुनीश के, तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, स्वर किशोर कुमार और आशा भोसले।

और श्रोताओं, इस सफर के आखिर में अब रूना लैला की आवाज में, जयदेव के संगीत में, गुलजार के बोल फिल्म घरौंदा के गीत में, आकाश

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है FM बैंड 102.5 MHz पर। शाम के 7 बजने को है, थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा भाग ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सली कमांडर ब्रिजेश गंझू मारा गया है। ये मुठभेड़ उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ हुई। ब्रिजेश गंझू को गोपाल सिंह भोक्ता के नाम से भी जाना जाता था। वो प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी का शीर्ष कमांडर था। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एयर शो का अवलोकन किया। टीम ने कल पहली बार उड़ान भरी और अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2 दिनों के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों ने इस प्रदर्शन को देखा। इनमें विद्यार्थी, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक भी शामिल थे। श्री सेठ ने सूर्य किरण टीम के साहस और समर्पण की सराहना की। मत्स्य पालन विभाग कल कोलकाता में मत्स्य पालन विकास पर एक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा। बैठक की सह अध्यक्षता मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी करेंगे। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। मेयर सोबियानिन के अनुसार पूरे मॉस्को क्षेत्र में हुए इन हमलों में 2 लोगों की मौत हुई और 20 घायल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेनिल वलारिवन महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। अन्य खेलों में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने आज अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का
1: FM 102.5 MHz पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। हमारे केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले हमारी इसी सभा के शीर्ष कार्यक्रमों की जानकारी। हमारी सभा में शाम 7:21 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज। रात्रि 8:00 और 8:30 पर हमारे केंद्र से फिल्म संगीत होगा। रात्रि 8:15 पर आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे कार्यक्रम डगर विकास की। रात्रि 9:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी भोपाल से ही रात्रि 10:00 20वें एशियाई खेल 2026 पर विशेष कार्यक्रम सुनेगा डेली हाइलाइट्स कैप्सूल और रात्रि 10:20 पर समाचार सेवा प्रभाग और नई दिल्ली द्वारा प्रसारित विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। श्रोताओं, अब जानकारी कल के मुख्य कार्यक्रमों की। कल सुबह 7:00 सुनिएगा महाकाल वंदन। सुबह 7:20 पर गीत संगीत से सजा प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन सुनिएगा। सुबह 8:30 पर उज्जैनी आरजी और सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे बॉलीवुड बीट्स।

कल सुबह 10 बजे उज्जैन दर्शन कार्यक्रम में प्रस्तुतकर्ता के साथ सुनिएगा उज्जैन के गणपति पंडालों के दर्शन, और सुबह 10:30 पर बहनों के लिए कार्यक्रम महिला सभा होगा। विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों में आकाशवाणी मुंबई से कल हम रिले करेंगे सुबह 11 बजे रंग तरंग, दोपहर 12:05 पर यादों की महफिल, दिन में 1 बजे सुरीला सफर, सदाबहार नगमे दिन में 2:30 पर, सखी सहेली 3 बजे और शाम 4 बजे सेहतनामा। कल शाम 5 बजे युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी के साथ हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी। भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या शाम 6 बजे होगा। कल शाम 6:30 पर सुनेगा फिल्म संगीत। आकाशवाणी भोपाल से शाम 6:40 पर कल क्षेत्रीय समाचार एकांश भोपाल का कार्यक्रम आजकल, और 6:45 पर प्रादेशिक समाचार दर्शन रिले किया जाएगा। कल शाम 7:21 पर सुनेगा कार्यक्रम माँ टीरी बात। कल रात्रि 8 बजे आकाशवाणी भोपाल से विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा।

कल रात्रि 8:35 पर फिल्म संगीत सुनिएगा। कल रात्रि 9:30 अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक आकाशवाणी दिल्ली से, और रात्रि 10 आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित किया जाएगा 20वें एशियाई खेल 2026 पर विशेष कार्यक्रम डेली हाईलाइट्स कैप्सूल। और रात्रि 10:20 पर कल आकाशवाणी भोपाल से फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश डेली किया जाएगा। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी इन जानकारियों के साथ ही संपन्न हुआ कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है, एफ एम बैंड 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:10 होने को है, थोड़ी देर में हम आकाशवाणी भोपाल से प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित करेंगे।

0: संदेश सुनी। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन को लेकर स्थानीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर ठोस प्रयास करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को पढ़ाई के साथ रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। गांधी सागर अभ्यारण्य के जंगलों में आज मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चीता CCB-2 को छोड़ा और सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। उन्होंने स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सभी पक्षों के बीच सक्रिय सहयोग मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को सुलभता से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार कई नवाचारी कदम उठा रही है। हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि इंदौर, उज्जैन सहित प्रदेश के सभी आईटी पार्क और इंजीनियरिंग कैंपस में युवाओं को पढ़ाई के साथ रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। डॉक्टर यादव रविवार को आईटी पार्क और उज्जैन शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का अवलोकन के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कहा,
2: राज्य में युवाओं को रोजगार को लेकर के कई प्रकार से काम सरकार कर रही है। ऐसे में ये आईटी पार्क इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में बच्चों को पढ़ने की सुविधा के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। राज्य की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रदर्शन भी हो और नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन के बलबूते पर हमारा परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो। समय सीमा के अंदर ये सारे काम चल रहे हैं।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 14 राज्य साझेदार राज्यों के रूप में भाग लेंगे, जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के रूप में आमंत्रित किया गया है। 22 से 25 सितम्बर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रदेश भर में गरिमा और सम्मान के साथ मनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वृद्धजनों ने अपने ज्ञान, अनुभव और परिश्रम से परिवार, समाज तथा राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन के लिए संवेदनशील एवं सहयोगात्मक वातावरण तैयार करना हम सभी का दायित्व है। मंत्री कुशवाहा ने आज अपने संदेश में कहा कि वृद्धजनों की अधिकतम और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उनके साथ संवाद कर उनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं के निराकरण की दिशा में सार्थक पहल की जाए। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज चीता प्रोजेक्ट के तहत नीमच जिले के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता CCB-2 को खुले जंगल में छोड़ा। इसके साथ ही अभयारण्य में चीतों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है।
4: मध्य प्रदेश में नहीं, ये एशिया का पहला प्रोजेक्ट है और 20 चीते जो शुरू में लाए गए थे वो 12 बचे थे, 8 खत्म हो गए थे। आज हमारे यहाँ राज्य के अंदर लगभग 56 से ज्यादा चीता और उनके बच्चे मौजूद हैं। हर क्षेत्र के अंदर मध्यप्रदेश वास्तव में देश का दिल है और वनांचल के मामले में मध्यप्रदेश अपना बहुत समृद्धशाली इतिहास रखता है, लेकिन जहां सैकड़ों साल पहले चीते खत्म हो गए थे वो दोबारा खेलते कूदते किसानों के साथ दिखाई दे रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नीमच से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैहर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में सहभागिता कर कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किसानों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों तथा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं और नवाचारों की

जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ पशुपालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराकर आधुनिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश भर में सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नीमच जिले में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में सहभागिता कर विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। अभियान के अंतर्गत आगरमालवा स्थित सांदीपनी शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विकसित भारत 2047 विषय पर आयोजित हुई चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपनी कल्पनाशीलता, रचनात्मकता एवं विचारों के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना को प्रस्तुत किया। मंदसौर जिले के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में मेरे सपनों का भारत विषय पर चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। अभियान के दूसरे चरण में कल 21 सितंबर को विद्यालय स्तर पर प्रदर्शनी तथा तीसरे चरण में 26 सितंबर को जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी आयोजित होगी। वहीं धार जिले में भी भाषण एवं चित्रकला प्रतियोगिता में 26,684 विद्यार्थियों ने भाग लिया। पन्ना के सीएम राइज विद्यालय इंद्रपुरी एवं सांदीपनी उत्कृष्ट विद्यालय में चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह शामिल हुए और विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत चित्रों तथा भाषणों को देखा एवं सुना। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का एयर शो का अवलोकन किया। टीम ने कल पहली बार आसमान में उड़ान भरी और अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2 दिनों के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों ने इस शानदार प्रदर्शन को देखा। रक्षा राज्य मंत्री ने सूर्य किरण टीम के साहस और समर्पण की सराहना की। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ. जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। अब बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई से पहले मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर तेज हो सकता है। उत्तर अंडमान सागर में बन रहा निम्न दाब क्षेत्र प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर सकता है। अगले 4 दिन भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर समेत कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि 23 सितंबर तक प्रदेश में भी भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन नए सिस्टम की दिशा और ताकत के आधार पर मौसम के पूर्वानुमान में बदलाव हो सकता है। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत की एला वैनिल विलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक जीता। वहीं भारतीय तैराक ऋषभ दास ने पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रनों से हराया। अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अगला मुकाबला मंगलवार को श्रीलंका से स्वर्ण पदक के लिए होगा। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराकर शानदार शुरुआत की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि देश के करोड़ों खेल प्रेमियों को उत्साह से भर देने वाली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मानसिक स्वास्थ्य व नशा मुक्ति के लिए विद्यार्थियों को ब्रह्म कुमारी संस्था ने नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। अनूपपुर में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए जिले में किसान पंजीयन 10 अक्टूबर तक चलेगा। उज्जैन में गणेश उत्सव पर गणेश पंडाल सजाए गए हैं। इन पंडालों में भगवान गणेश के अलग अलग आकर्षक स्वरूप विराजमान हैं। सीहोर के देलावाड़ी घाट पर खाद्य तेल से भरा एक टैंकर खाई में पलटने से ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी का ये उज्जैन केंद्र है एफएम बैंड 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज।

राम राम किसान भाई। आकाशवाणी उज्जैन से आपको अपना रेडियो साथी मुकेश भैया, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मालवी गिटारी गूंज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मालवा की धरती, किसान की मेहनत, अपना खेत में लहलहाती फसल और फसल कटवा का बाद अपना खेत में बचियो थको सुकलो बगदो ने खापा ने और भी बचिया हुआ नरा अवशेष, कभी आपने सोचो कि जिके अपन फालतू समझे ने फेंकी दा वीज अपना गाँव की ऊर्जा को साधन बनी सके है, जिकी जिनी पराली के जलावा में धुओं फैले है उसे गैस बनी सके है, जिन्हें डंठल हुनो के अपन बिना काम का समझी के उनके बिजली का ताप ऊर्जा करी सका है, और गोबर ने जैविक अवशिष्ट तैयार बायोगैस अपना घर का चौका तक पहुँचे सके है। तो किसान भाई, आज अपनी मालवी गिटारी गूंज कार्यक्रम को विषय है कृषि अवशिष्ट से ऊर्जा को उत्पादन, खेत का अवशेष गाँव की ऊर्जा का आधार। तो किसान भाई, मालवी गीता की गूंज कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहला अपन देश और दुनिया का हाल जानिला और सुना मालवी समाचार।

सगला किसान भयुन के राम राम। अब आप मुकेश मेहता से मालवी समाचार सुनो। सबसे पहला आज का खास समाचार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कियो है कि प्रदेश का युवा हुन के पढ़ाई का साथे रोजगार का नवा अवसर भी उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज गांधी सागर अभयारण्य का जंगल हुन में चीता CCB2 के मुक्त करियो और सेवा संकल्प अभियान का अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम को आयोजन हो। अब समाचार विस्तार से, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन प्रवास का दौरान सिंहस्थ 2028 के लेके नीलगंगा रोड सहित अलग अलग जगह पे चलवा वाला विकास का काम उनके निरीक्षण करियो। साथेज आईटी पार्क पहुंची के वहां बनी रही अधोसंरचना और सुविधा उनका अवलोकन करियो। एकाबाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया प्रभारी उनके चर्चा में कियो कि इंदौर उज्जैन समेत प्रदेश का सगला आईटी पार्क और इंजीनियरिंग कैंपस में युवा उनके पढ़ाई का साथे रोजगार का नवा अवसर भी उपलब्ध कराया जाएगा। उनने बतायो कि उज्जैन इंडोर मेट्रोपॉलिटन सिटी एरियो बनाई रहा है, इसे भी युवा उनके रोजगार उपलब्ध होगा। उनने कियो कि सिंहस्थ 2028 का वास्ते जरूरी सगला विकास कार्य शीघ्रता से पूरा करिया जा रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मंगलवार के नई दिल्ली में नोवा भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 को उद्घाटन करेगा। 5 दिन का इन आयोजन में विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बतायो कि इन अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी के साझेदार देश का रूप में शामिल होगा। 14 राज्य साझेदार राज्य का रूप में भाग लेगा, जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालय और विभिन्न विभाग के भी साझेदार का रूप में आमंत्रित करियो है। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी को भी आयोजन होगा। प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट लगातार फली फूली रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बोत्सवाना से लई गई चीता CBC2 के गांधी सागर अभयारण्य का जंगल में विमुक्त करियो। नवी मादा चीता के गांधी सागर पहुंचवा का साथे अभयारण्य में 2 नर और 2 मादा सहित कुल 4 चीता हुई जाएगा। इसे गांधीनगर में चीता संरक्षण और पुनर्स्थापना का प्रयास के आगे बढ़ावा में मदद मिलेगा। सेवा संकल्प अभियान का अंतर्गत आगर मालवा में स्थित शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विकसित भारत 2047 विषय पे आयोजित चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता में विद्यार्थी हुन ने अपनी कल्पनाशीलता, रचनात्मकता और विचार हुन का माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना के चित्र और भाव का माध्यम से प्रस्तुत करियो। कार्यक्रम का दौरान विद्यार्थी द्वारा तैयार किया गया चित्र उनकी विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई। वहां आज आगर

स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित हुआ कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा विद्यार्थी उनके नशा का शारीरिक मानसिक और सामाजिक नुकसान की जानकारी देता हुआ नशा से दूर रहवा की प्रेरणा दी और नशा मुक्ति की शपथ भी दिली। साथेज मंदसौर जिला का शासकीय और अशासकीय विद्यालय हुन में मेरे सपनों का भारत विषय पे चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। अभियान का दूसरा चरण में कल 21 सितंबर के विद्यालय स्तर पर प्रदर्शनी और तीसरा चरण में 26 सितंबर के जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता और प्रदर्शनी को आयोजन होगा। धार जिला में भी भाषण और चित्रकला प्रतियोगिता में 26,684 विद्यार्थी हुन ने भाग लियो। झाबुआ जिला में महिला हुन और छात्रा हुन की सुरक्षा और सार्वजनिक स्थान पर अनुशासन राखवा वास्ते चलवा वाला ऑपरेशन मर्यादा का तहत पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार का निर्देशन में अभियान शुरू होवा से अभी तक कुल 530 हुड़दंगी हुन और नियम का उल्लंघन करवा वाला का विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई हो चुकी है और उल्लास का अभिनव प्रयोग 2026 का अंतर्गत जिला न्यायालय परिसर में झाबुआ में बड़ो स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित करो गयो। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सक हुन ने स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जापान का आइची नागोया में एशियाई खेल में भारत को एलोवेलिक वाला रिवन ने महिला हुन की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में रजत पदक जीतियो। भारतीय तैराक ऋषभ दास ने पुरुष हुन की 100 मीटर की ब्रेस्ट स्ट्रोक प्रतियोगिता का फाइनल में प्रवेश कर लियो है। एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश के 114 रन से हरायो। अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम को अगलो मुकाबलो मंगलवार के श्रीलंका से स्वर्ण पदक का वास्ते होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम में उज्बेकिस्तान के 19-0 से हरे के शानदार शुरुआत करी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एशियन गेम्स 10 मीटर एयर राइफल्स महिला टीम का फाइनल में रजत पदक जीतवा वाला खिलाड़ी उनके शुभकामना दिए। मुख्यमंत्री ने कियो कि यह उपलब्धि देश का करोड़ों खेल प्रेमी होने में उत्साह भरवा वाली है। दक्षिण पश्चिम मानसून विदाई से पहला मध्य प्रदेश में एक बार फिर बरसात को दौर तेज हो सकता है। उत्तर अंडमान सागर में बनवा वाला निम्न दाब का क्षेत्र का मौसम के प्रभावित कर सकता है। अगला 4 दिन में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर समेत नरा जिला में कहीं तेज तो कहीं हल्की बरसात होवा की संभावना है। हालांकि 23 सितंबर तक प्रदेश में भारी बरसात को कोई भी अलर्ट नहीं है, पर नवा सिस्टम की दिशा और ताकत का आधार पर मौसम का पूर्वानुमान में बदलाव हो सकता है। तो ये था आज का समाचार।

किसान भाई अपना खेत में जदे फसल की कटाई हुई जावे तो अपने मुख्य फसल का साथे साथे नरी तरह की बचिया हुआ अवशेष भी मिले, जैसे गेहूं को सुखलो, धान की पुआल, मक्का का राड़ा ने डूंडिया, सोयाबीन को कचरो और भी नरी तरह का अवशेष अपनी फसल में काटवा का बाद मिले है। और इका अलावा अपना पालतू पशु उनका पास से भी गोबर, खेत हूं से निकलवा वाला जैविक पदार्थ और कृषि संस्करण का साथे निकलवा वाला अवशेष भी अपनी ऊर्जा उत्पादन का रूप में उपयोग आ सकता है। पर एक बात को ध्यान रखना है कि सगला कृषि अवशेष के जलानों और मशीन में डालना सही तरीको नहीं है। अपना नरा अवशेष खेत में मिलवा, अपना पशु उनका चारा पानी करवा और खेत की मिट्टी की संरचना सुधारवा वास्ता भी उपयोगी रहे। इना वास्ते अपने ऊर्जा उत्पादन वास्ते बीज अवशेष काम में लेना चाहिए जो अपनी मिट्टी, पशुपालन और दूसरी आवश्यकता उनके प्रभावित नहीं करे। तो किसान भाई अपना मालवा की बोली ने लोकगीत में अपनोपन बसी हो तो कार्यक्रम के आगे बढ़ावा का साथ अपन मालवा का गीत की सुंदर श्रृंखला को एक गीत का आनंद ले ला।

किसान भाई, चलो अब अपन कृषि अवशिष्ट का उपयोग का तीन प्रमुख रास्ता के समझा। पहलो है जैविक अपघटन से बायोगैस। आपने अपना गांव में गोबर गैस का बारे में तो जरूर सुने होगा। गोबर गैस जिके अपन बायोगैस भी कहाँ, ऐसो ईंधन है जो जैविक पदार्थ के बिना ऑक्सीजन वाला वातावरण में विघटन से बने हैं। इनमें मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड रहे। मीथेन वाज गैस है जो जलवा पे ऊर्जा दे है। याज गैस अपना चौका में चूल्हो जलावा के उपकरण हूं के चलावा के और उपयुक्त व्यवस्था में बिजली उत्पादन का रूप में भी उपयोग आ सके। अब बात करें दूसरा तत्व की, तो दूसरो रस्तो है बायोमास से बिजली और ताप ऊर्जा। बायोमास को मतलब है जैविक मूल का पदार्थ, जैसे पौधा हूं का अवशेष, लकड़ी, कृषि अवशिष्ट और दूसरी जैविक सामग्री। इना कृषि अवशेष उनके नियंत्रित और वैज्ञानिक तरीका से अगर अपन उपयोग करा तो उनसे ताप ऊर्जा और भाप और बिजली भी बनी सकती है। हमारा प्यारा किसान भाई, अपना मालवा की माटी को स्वर जदे अपना

0: किस कान में पड़े है, तो वे खाली गीत नहीं रहे, वे तो अपनी संपूर्ण संस्कृति का अनुभव है, अपनी संस्कृति का आगे बढ़ावा ने आप लो मालवा की प्यारी प्यारी बोली में गीत को आनंद।
1: प्रथम सुमरू जी भैया, प्रथम सुमरू।

किसान भाई, अब बात करें बायो सीएनजी की, तो बायोगैस में मीथेन का साथे कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में दूसरी गैस हुन भी रहे। पर जदे इके शुद्ध करी के मैं मीथेन की मात्रा बढ़े दा तो इके बायो मीथेन या अपनी सामान्य भाषा में इके सीएनजी कही सका। तो बायो सीएनजी को उपयोग वाहन ईंधन और दूसरी ऊर्जा की आवश्यकता का वास्ते करो जावे है। पर किसान भाई, एक बात को ध्यान रख जो कि बायो सीएनजी बनानो घरेलू बायोगैस संयंत्र से अलग है। इका वास्ते विशेषज्ञ और तकनीकी संस्था की सहायता से अपने काम करना चाहिए। तो बात के आगे बढ़ावा, इका पहला थोड़ा सा विश्राम लेला और एक मालवी को प्यारो लोकगीत सुनला।

किसान भाई कृषि अवशेष से बनने वाली ऊर्जा को उपयोग अपन स्थानीय जरूरत का हिसाब से कर सकता है, जैसे सामुदायिक रसोई, दूध शीतकरण केंद्र, अनाज सुखाव की व्यवस्था, कृषि प्रसंस्करण, सिंचाई का वास्ते उपयुक्त बिजली की व्यवस्था और ग्रामीण लघु उद्योग। किसान भाई बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली डाइजेस्ट सिलेरी को उचित प्रबंधन का बाद अपन जैविक खाद या मृदा सुधारक का रूप में उपयोग कर सका है। पर एक बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एकांदर कोई हानिकारक पदार्थ ऐसो नहीं हो जो अपना खेत के खराब करे। एक बात और याद रखवा की है, जो ऊर्जा को उत्पादन को मतलब खाली ईंधन बनाना नहीं है, यो एक पूरा चक्र है। खेत से अवशेष आवे, उनसे ऊर्जा बने, ऊर्जा से ग्रामीण आवश्यकता की पूर्ति होवे और बची हुई जैविक सामग्री को वापस खेत में उचित उपयोग करना है। इन्हीं सोच के अपन जैविक संसाधन को चक्रीय उपयोग कर सका। किसान भाई अपना मालवा की लोक संस्कृति में गीत संगीत और परंपरा उनको विशेष महत्व है। अपनी बोली में जो मिठास है, गीत में तो अपनोपन है और अपनी संस्कृति में प्रेम है। इन्हीं लोक संस्कृति का खजाना में से आपका वास्ते यो प्यारो सो मालवी लोकगीत।

किसान भाई, कदी अपना पास में कृषि अवशेष पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होए तो अपनी अतिरिक्त आय को अवसर भी बनी सके। उनको संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और ऊर्जा उत्पादन स्थानीय रोजगार का अवसर भी पैदा कर सके। किसान अपना अनुपयोगी और अतिरिक्त अवशेष बेची के आय प्राप्त कर सके, पण यह आय अपना स्थानीय बाजार, परिवहन खर्चा, अवशेष की गुणवत्ता और संयंत्र की मांग पर निर्भर करे। तो किसान भाई अपना

मालवा की माटी को स्वर जदे अपना कान में पड़े है तो वे खाली गीत नहीं रहे, वे तो अपनी संपूर्ण संस्कृति का अनुभव है। अपनी संस्कृति के आगे बढ़ावा ने आप लो मालवा की प्यारी बोली को आनंद।

किसान भाई, अपना गांव में बायोगैस या बायोमास ऊर्जा की व्यवस्था हुआ से अपना गांव में ऊर्जा की जरूरत का वास्ते स्थानीय संसाधन भी उपलब्ध हो सके, जैसे कृषि अवशेष संग्रह, मशीन संचालन, परिवहन, गैस और ऊर्जा प्रबंधन और जैविक खाद को प्रबंधन। किसान भाई, महिला स्व सहायता समूह जैविक खाद या स्थानीय ऊर्जा का उपयोग जैसा काम में आगे आवे तो इनमें महिला की भागीदारी भी स्थानीय उद्यमिता के बढ़ावा में मदद कर सके। किसान भाई, अपन अवशेष उनको उचित संग्रह करा तो उनका खुला में जलावा की जरूरत कम कर सकता है। यह बात सही है कि खाली ऊर्जा संयंत्र लगावा से खुली जगह में जलानो पूरी तरह से बंद नहीं होगा। इका वास्ते संग्रहण व्यवस्था, उचित कीमत, किसान प्रशिक्षण और स्थानीय प्रबंधन भी जरूरी है। किसान भाई, अपना खेत का अवशिष्ट खाली बचा हुआ पदार्थ नहीं है, ये तो ऊर्जा का संभावित स्रोत है। गोबर और जैविक अवशेष उनसे बायोगैस बनी सके है। उपयुक्त कृषि अवशेष से बायोमास ऊर्जा प्राप्त कर सका है और विशेष तकनीक से जैव ऊर्जा उत्पादन भी संभव है। पर हर तकनीक का वास्ते सही योजना, विशेषज्ञ की सलाह और आर्थिक स्थिति और सुरक्षा की व्यवस्था जरूरी है। एक बात ध्यान से समझो, अपना खेत को हर अवशेष कचरो नहीं है, पर हर अवशेष ईंधन भी नहीं रहे। कोई भी अवशेष को ऊर्जा का रूप में उपयोग करवा से पहला यो समझना जरूरी है कि उसको खेत की मिट्टी, अपना पशु हुन का चारा पानी और जैविक खाद की जरूरत पे कोई प्रभाव कहीं पड़ेगा। तो किसान भाई, आओ मालवी की मीठी मीठी बोली में एक सुरीलो गीत सुनीला।

किसान भाई, बात बात में टेम को पतो ज नहीं चलियो ने स्टूडियो की घड़ी केवा लागी गी के बाप से विदा लेवा को टाइम वही गयो है। प्रिय किसान भाई, मालवी गिटारी गूंज कार्यक्रम आपकी अपनी आवाज है। आप अपनी खेती से जुड़ी कोई समस्या, सरकारी योजना को कोई सवाल, कोई अच्छो अनुभव या सुझाव या नवाचार हो तो अपनी बात पत्र का माध्यम से आकाशवाणी उज्जैन तक जरूर पहुंचाजो। हमारो पतो है मालवी गिटारी गूंज द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भवन विद्यापति नगर उज्जैन मध्य प्रदेश 456010। तो आज का वास्ते अपना मुकेश भैया की आज्ञा दो। बाबा महाकाल से प्रार्थना है आप सबका जीवन में आनंद और उत्साह और उमंग बनी रहे। फिर मिलांगा गांव से चुड़िया एक नया विषय का साथ। तब तक का लिए सगड़ा किसान भूई के राम राम, जय श्री महाकाल।

श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है FM 102.5 MHz पर। हमारा प्रसारण अब आप मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं, न्यूज़ ऑन AIR ऐप। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है, रात्रि के 8 बजने को है। थोड़ी देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको जो गीत सुनवा रहे हैं, ये गीत हमने लिया है 2010 में रिलीज हुई फिल्म राजनीति से। इस गीत को गाया है मोहित चौहान और अंतरा मित्रा ने। इरशाद कामिल के बोल हैं और

श्रोताओं, अब समय है इस कार्यक्रम के अंतिम गीत का। ये गीत हमने लिया है फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से। इस गीत को गाया है मोहित चौहान ने, बोल इरशाद कामिल के हैं और संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं, इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है कार्यक्रम डगर विकास की। विषय है स्टार्टअप इंडिया योजना, योगदान आकाशवाणी गुना का है।

श्रोताओं नमस्कार, डगर विकास की कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम जानेंगे भारत सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जो युवाओं से संबंधित है। यह है स्टार्टअप इंडिया योजना, जिसे 16 जनवरी सन 2016 में लॉन्च किया गया था और जिसका उद्देश्य है देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, साथ ही साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा कर

0: गुना जिले में इस योजना पर क्या काम किया जा रहा है, आइए इस पर विस्तार से बातचीत करते हुए हमारे साथ हैं महाप्रबंधक उद्योग विभाग गुना श्री अमित कुमार शर्मा।
1: हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई एक पहल है जिसका संचालन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, जिसके बारे में अगर हम कहें तो नवाचार, उद्यमिता और ऐसे युवा जिनके पास कई नए आइडियाज हैं, नई उत्पाद हैं, नई तकनीक है या किसी समस्या का नया समाधान है, ऐसे व्यवसाय के रूप में विकसित करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता, पेटेंट, अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और इसके लिए पात्र जो भी संस्था हैं या व्यक्ति हैं वो अपने आइडियाज को DPIIT के अंतर्गत रिकॉग्नाइज कराता है
0: जी। अच्छा, यह योजना गुना जिले में कब से संचालित?
1: वर्ष 2016 से ही संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया था और अभी वर्तमान में इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की भी एक स्टार्टअप पॉलिसी है, वो भी इसके साथ संचालित हो रही है
0: जी। अब एक बड़ा मन में प्रश्न ये उठ रहा है कि स्टार्टअप इंडिया योजना किन उद्देश्यों को लेकर प्रारंभ की गई?
1: देखिए, सरकार का ये मानना है कि हमारे देश में युवा जो है बहुमूल्य प्रतिभा का धनी है, तो निश्चित है कि उनके पास कई आइडियाज हैं, तो सरकार चाहती है कि लोग जो युवा है वो रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त भी हम नए उत्पाद कैसे बाजार में लेकर आए या हम नई तकनीक को कैसे विकसित करें या उनको आकर्षित करना या अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा कैसे करें, इस योजना का जो मूल उद्देश्य है वो ये है
0: जी। अभी बातचीत में एक अच्छी बात निकली कि युवा रोजगार देने वाले बने
1: जी,
0: तो इसमें कौन कौन से ऐसे उद्यम आ सकते हैं जिनको कि हमारे युवा प्रारंभ कर सकते हैं?
1: किसी भी प्रकार का आइडिया जो सरकार कहती है कि अभी जैसे गुना में बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, तो गुना में भी हमने एक तेजस वर्कशॉप की। तेजस वर्कशॉप भारत के कुछ चुनिंदा जिलों के लिए या चुनिंदा शहरों के लिए आयोजित हुई थी। उसके तहत क्या था कि जो युवा है जो महानगर में निवास कर रहा है उसके पास तो कई संसाधन है कि वो जानकारी एकत्रित कर सकता है, लेकिन जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उनके पास आइडियाज तो बहुत हैं, लेकिन वो उनको वो मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है कि वो किस तरीके से अपने आइडियाज को धरातल पर लेकर आए या उसको किस प्रकार हम आगे की ओर बढ़ाएं, तो उसी के लिए तेजस वर्कशॉप आयोजित की गई थी। तो इसमें जितने भी आपके आइडियाज हैं जो इससे पूर्व किसी ने नहीं सोचे, या हम अपने रोजगार को कैसे गति दें, अगर हम छोटा मोटा रोजगार कर रहे हैं तो उसको कैसे विकसित करें, या हम कौन सी नई तकनीक का प्रयोग करें, इसी के लिए ये संचालित की जा रही है।
0: अच्छा, हमारे मन में एक विचार ये आ रहा है कि जैसे अगर कोई युवा है और उसको लगता है कि मुझे अपना एक संगीत विद्यालय डालना है
1: जी,
0: है ना, या कोई शैक्षिक स्कूल डालना है
1: जी,
0: तो क्या वो भी उद्यम इसके अंतर्गत आता है?
1: जी, हम कोई भी व्यक्ति जिसके पास सेवा क्षेत्र का या विनिर्माण क्षेत्र का उसके पास कुछ नया करने के लिए है या जो है उसको वो बेहतर करने के लिए उसके पास कुछ नई तकनीकी है या नए टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो वह व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है, लेकिन उसको सिर्फ हमें DPIIT के माध्यम से रिकॉग्नाइज कराना अनिवार्य होगा जी।
0: अच्छा, एक प्रश्न और मन में आ रहा है कि ये जो स्टार्टअप इंडिया है, क्या एकल व्यक्ति के द्वारा संचालित कोई उपक्रम इसमें आएगा या संगठन है वही इसका लाभ ले सकते हैं?
1: नहीं, इसके लिए एकल व्यक्ति भी हो सकता है या कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई फर्म भी हो सकती है, ये सभी के लिए, सभी लोग इसके लिए पात्र हैं
0: जी। जी, वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि जैसे कि रिकॉर्डिंग स्टूडियोज हैं
1: जी,
0: या वीडियोग्राफी से रिलेटिव भी बहुत सारे काम है जहां बड़े पैमाने पर वीडियो से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं, तो क्या वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
1: इसके लिए उनको नई तकनीक पर काम करना होगा। हम जो लंबे समय से तकनीक लेके चले आ रहे हैं उसको बदलते हुए हमें कुछ नया लाना होगा, तो ऐसा, और उसके बाद हम अपने जो नई तकनीकी प्रयोग की या हमने अधिक से अधिक उसमें रोजगारों के अवसर बढ़ाए, क्योंकि नई तकनीक जब आती है तो निश्चित है कि हमें चीजें परिवर्तन करनी होती हैं, और उससे अधिक रोजगार जब अवसर उत्पन्न होते हैं तो हम इसका रजिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइज करा के इसको हम स्टार्टअप की श्रेणी में ला सकते हैं।
0: और अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो विभाग है इस योजना के संचालन को किस तरह से करता है?
1: देखिए।

0: मध्य प्रदेश में स्टार्टअप योजना का संचालन एमएसएमई विभाग यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के माध्यम से इसका संचालन किया जा रहा है। तो सरकार जो सरकार का उद्देश्य है वो केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। सरकार चाहती है कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें जिसमें हम इनक्यूबेटर की सहायताएं, मेंटर, इन्वेस्टर और उनको मार्केट तक कैसे आना है, मार्केट तक वो अपने प्रोडक्ट को कैसे लेकर आए,
1: जी
0: उस पर सरकार पूरा काम कर रही है।
1: जी अब मन में एक प्रश्न ये आ रहा है कि इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है, या क्या पात्रताएं हैं, क्या नियम, क्या शर्तें हैं इस योजना के लाभ उठाने के लिए?
0: ऐसा कोई भी नया उद्यम जो किसी प्रोडक्ट, सर्विस अथवा प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट कर रहा है, उसको वो बढ़ा रहा है और जिससे रोजगार और व्यवसाय की बढ़ाने की क्षमता भी उसके अंदर जागृत हो रही हो, वह स्टार्टअप इंडिया के तहत मान्यता के लिए पात्र हो सकता है। ये हम बिल्कुल कंफर्म इस चीज़ को मान सकते हैं। और लेकिन उसको सिर्फ अपना DPIIT के तहत रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा।
1: जी तो यहाँ पर थोड़ा सा आपसे ये और जानना चाहेंगे कि जो DPII के तहत आप रजिस्ट्रेशन की बात आ रही है बार
0: जी
1: बार,
0: जी जी
1: किस तरह से उसमें रजिस्ट्रेशन कराना
0: उसके
1: पड़ेगा,
0: लिए
1: कहाँ जाना होगा,
0: जी
1: कौन
0: जी
1: सी ये संस्था है, कृपया बताएं।
0: जी औद्योगिक निवेश एवं संवर्धन विभाग भारत सरकार का एक विभाग है, उसके पोर्टल पर जाकर हम वांछित दस्तावेज उसमें जो चाहे गए हैं उनको उस पर अपलोड करेंगे तो हम वहाँ उसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
1: जी
0: एक रजिस्ट्रेशन होने के बाद उपरांत ही हम ये सारी चीज़ों के लिए पात्र हो जाते हैं। सरकार से जितने भी हमें लाभ प्राप्त हो रहे हैं वो सभी एक स्टार्टअप रिकॉग्नाइज होने के बाद ही होंगे।
1: जी और इस बीच अब हमारे मन में एक प्रश्न ये आ रहा है कि इस योजना से जुड़ने के लिए क्या है आवेदन की प्रक्रिया?
0: कोई भी व्यक्ति स्वयं इसका आवेदन कर सकता है और ऑनलाइन प्रक्रिया है, भारत सरकार का जो पोर्टल है उस पर ऑनलाइन प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। इसके लिए किसी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है और सरकार ने इसके लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया हुआ है,
1: जी
0: तो आप सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से भी इसका लाभ ले सकते हैं।
1: और अब आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे गुना जिले में इस योजना से अभी तक लाभान्वितों की संख्या क्या है, और साथ ही साथ हम ये भी पूछना चाहेंगे कि जो लाभान्वित हैं उन्होंने किस किस कार्य के लिए ये लाभ लिया है?
0: जी DPIIT के रिकॉर्ड के अनुसार अगर हम देखें तो अभी वर्तमान तक गुना में 211 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं, जो जिले के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अगर जब हम पूरे मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखते हैं तो लगभग 6,000 है, जिसमें से 211 सिर्फ गुना जिले में रजिस्टर्ड हैं। अभी वर्तमान में कुल 14 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनको EIR के तहत लाभ दिया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी जो 2025 लागू हुई है उसके तहत ऐसे स्टार्टअप जो अभी प्रारंभिक स्टेज पे हैं, रिकॉग्नाइज हो गए हैं लेकिन वो प्रारंभिक स्टेज पे अभी चल रहे हैं, तो सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती है, हमारे पास आइडियाज तो लोगों के पास होते हैं लेकिन उन्हें हम धरातल पे जब लाने का सोचते हैं तो सबसे पहली समस्या होती है फंडिंग, कि हम उसके लिए पैसा कहाँ से लाएं, उसको हमें काम करना है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। EIR के तहत हम फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद उसमें अगर आपका रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है तो आपको 10,000 रुपये प्रति माह एक वर्ष तक दिया जाता है, जिससे कि आप अपने स्टार्टअप को गति दे सकते हैं। तो अभी 211 कुल स्टार्टअप्स गुना जिले में पंजीकृत हैं, जिसमें से 14 स्टार्टअप ऐसे हैं जिनको EIR का लाभ मिल रहा है। और कुल मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग 6,000 लोग स्टार्टअप के तहत रजिस्टर्ड हैं।
1: जी
0: सबसे पहले तो मैं सभी श्रोतागणों को यही कहूंगा कि आप स्टार्टअप के संबंध में आपके जिले में हर जगह सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि आप तक वो जानकारियां समय समय पर सही समुचित रूप से पहुंचे, तो उसके लिए आप सभी कार्यशालाएं या जो भी सेमिनार हो रहे हैं या जिला व्यापार उद्योग केंद्र के माध्यम से आप जानकारी एकत्रित करें और अपने आइडियाज को धरातल पर लाने के लिए प्रयास करें, जिससे सरकार भी आपको वो इकोसिस्टम तैयार करके दे रही है कि उन आइडियाज को हम धरातल पर ला सकें। हमारे देश का जो युवा है वो रोजगार मांगने वाला ना होते हुए वह रोजगार देने वाला बने, यही मैं कहना चाहूंगा।
1: साथियों, स्टार्टअप इंडिया योजना के कुछ हितग्राहियों से हमने बातचीत की और उन्होंने हमें बताया।
2: मेरा नाम आशुतोष धाकड़ है, मैं रुठियाई से निवास करता हूँ। मैंने स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम है उसका बेनिफिट मार्च के टाइम पे लिया है। जब मैंने मोहन यादव जी का भाषण जनवरी में उन्होंने मीटिंग की थी उसमें मैंने सुना कि स्टार्टअप इंडिया एक जो प्रोग्राम है इसके तहत गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है।

0: तो मैंने भी इस योजना का लाभ लिया है और अभी मुझे फंडिंग आना स्टार्ट हो गई है। इस योजना से मैं बहुत लाभान्वित हो रहा हूँ, मेरे को हेल्प मिल रही है अपने स्टार्टअप में, क्योंकि इस योजना से गवर्नमेंट मुझे फंडिंग कर रही है। और इनिशियली जब मैंने ये वर्क स्टार्ट किया था तब मेरे पास 16 वर्कर्स थे, आज के टाइम पे मेरे पास 26 वर्कर्स हैं, जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। इस योजना के लिए मैं भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार का। और हम आगे बढ़ रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, और मेरे जैसे युवाओं के साथ साथ और भी जो युवा हैं इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है।
1: मेरा नाम मनमोहन सिंह यादव है, मैं ग्राम कनारी ब्लॉक बमोरी और डिस्ट्रिक्ट गुना का रहने वाला हूँ। हमारा एक स्टार्टअप है महाकाल स्टार वेंचर के नाम से, और उसके बाद हम लोगों ने गवर्नमेंट की ये स्कीम थी स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की, उसके बारे में हमें उद्योग विभाग से जानकारी मिली। तो उन्होंने कहा कि इसमें आप कुछ गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करना चाह रही है स्कीम है, इसमें आप इसका लाभ ले सकते हैं। और इसके बाद में रजिस्ट्रेशन के बाद में हमारा भोपाल में एक वहाँ से भी कॉल आया, उनने हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया मेल पे, हमसे वापस से डॉक्यूमेंट मांगे सभी। उनको वेरिफिकेशन करने के बाद में हमारा जो EIR का जो स्टाइपेंड मिलता है सरकार से MP गवर्नमेंट से, वो 10,000 रुपये महीना आना शुरू हो गया है। हमारा अभी स्टार्टिंग में तो हॉर्टिकल्चर से संबंधित काम है, और हम सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम कर रहे हैं, जैसे कि टेंडर डालते हैं हम गेल इंडिया लिमिटेड में, उसके द्वारा हम सर्विस देते हैं और मशीनरी लगती है वो भी हम ही प्रोवाइड कराते हैं। इस योजना का लाभ लेने के बाद हमें थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, इससे हमें फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है।
2: आज के अंक में हमने जाना भारत सरकार की एक योजना स्टार्टअप इंडिया के बारे में। साथियों, अगले अंक में एक नई योजना पर विस्तृत जानकारी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे समन्वित कार्यक्रम डगर विकास की। आलेख और वाचन स्वर था हरिशंकर शिभरे का। प्रस्तुतकर्ता थी राजकुमार कौशल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के गुना केंद्र पर तैयार किया गया और इस कार्यक्रम का प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये प्रस्तुति थी आकाशवाणी के गुना केंद्र की। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में हो।
2: ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला गीत सुनवा रहे हैं आपको इस्माइल दरबार की बनाई धुन में नुसरत बद्र की बोल। श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाजें हैं। फिल्म देवदास का ये गीत है।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।

ये सुरीली आवाज अलका याग्निक की गीत में साथ देंगे कुमार सानू। फिल्म का नाम दिल क्या करे, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार जतिन ललित।

मुख्य आवाज अलका याग्निक की, संगीत या रहमान का, गीत इरशाद कामिल के, फिल्म तमाशा के। इस गीत के साथ ही संपन्न होता है फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।

से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। मॉस्को सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता

0: भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
1: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को क्षेत्रों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
0: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों और युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। ये पहला अवसर है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
3: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरिता ने भारतीय मेहमान नवाजी की प्रशंसा की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितम्बर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर

0: क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्रजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था।
2: ब्रजेश गंजू करीब 2 दशक से फरार था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें नागरिकों और पुलिसकर्मियों की कथित हत्या के मामले भी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुठभेड़ में शामिल ATS टीम के लिए 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। ब्रजेश गंजू पर घोषित 30 लाख रुपए के इनाम में झारखंड पुलिस ने 25 लाख और NIA ने 5 लाख रुपए की राशि रखी थी। महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्रों की। इन केंद्रों में देश विदेश के बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आधुनिक परिसर भारत के मजबूत होते बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उसकी क्षमता को दर्शाते हैं।
3: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर हैं। इन्हें भारत को माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का उद्घाटन किया था। इसके कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉल रूम और 13 बैठक कक्ष समेत कुल 15 कन्वेंशन कमरे हैं। इनमें एक साथ करीब 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है। भारत मंडपम को प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 में राष्ट्र को समर्पित किया था। यहाँ G20 शिखर सम्मेलन और हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। भारत मंडपम के बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में कुल 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह क्षमता ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से भी अधिक है। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को भी सुविधा मिलेगी।
4: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
3: आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में आयोजित 2 दिवसीय एयर शो में शानदार हवाई प्रदर्शन किया। टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरते हुए रोमांचक प्रदर्शन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर शो देखा और सूर्य किरण टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
5: सूर्यकिरण एरोबेटिक जो टीम है उसका अद्भुत साहस और भारतीय वायुसेना का पराक्रम तो दुनिया लोहा मानती है और दुनिया के 800 जगह इन्होंने शो किए हैं। हम सब प्रेरणा लेते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। वही मोटिवेशन भारत की सेना को हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जिनका हमेशा रहता है कि कैसे भारतीय पूरे डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनस

0: अवेयरनेस करना, उनको मजबूत करना।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। एक रिपोर्ट।
2: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: रूस में ये नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनावों का आखिरी चरण जारी था। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेलिन वलारेवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेलिन वलारेवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया और हॉकी में भी भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने आज अपने अपने मैच जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu calls for stronger climate action and global cooperation to tackle rising natural disasters, addresses conference on future of environment and climate dynamics in New Delhi. India and Japan air chiefs take Tejas sorties during joint air exercise in Jodhpur. IAF chief AP Singh says first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in defense ties. Naxal commander carrying 30 lakh rupee bounty killed in encounter with Uttar Pradesh anti-terrorism squad in Varanasi. Ukraine fires over 1,000 drones at Russia in largest ever attack, including hundreds at Moscow oil refinery hit. And at Asian Games, India bagged 2 silver medals in shooting. Women's cricket team reaches final and badminton team enters quarterfinal. Men's and women's hockey teams begin campaigns with wins in Japan. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The president was addressing the valedictory session of the 2-day conference on the future of environment and climate dynamics organized by the National Green Tribunal.

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कुदरती आफात के बढ़ते हुए हादसात से निपटने के लिए आबो हवा से मुतल्लिक मजबूत तर कार्रवाई और आलमी ताबुन पर जोर दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में माहौलियात और आबो हवा के महरिकात के मुस्तकबिल से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। भारत और जापान के फजाई सरबराहान ने जोधपुर में मुश्तरका फजाई मश के दौरान तेजस तैयारों की परवाजें की। भारतीय फजाइया के सरबराह ने कहा कि भारतीय सरजमीन से जापानी जंगजू तैयारे की अभी तक की ये पहली परवाज दिफाई ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। एक नक्सल कमांडर जिस पर 30 लाख रुपए का इनाम था, वाराणसी में दहशतगर्दी की रोकथाम के उत्तर प्रदेश स्क्वाड के साथ एक झड़प में मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं, जो अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। इन हमलों में मास्को और तेल रिफाइनरी पर दागे गए सैकड़ों मिसाइल भी शामिल हैं। और एशियाई खेल मुकाबलों में भारत ने निशानेबाजी में चांदी के 2 तमगे जीते हैं। खवातीन क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है। मर्दों और खवातीन की हॉकी टीमों ने जापान में अपनी कारकर्दगी का आगाज जीत के साथ किया। और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हालिया दिनों में बार बार रोनुमा होने वाली कुदरती आफात की वजह से आबो हवा से मुतालिक मजबूत इकदाम और आलमी तआवुन की फौरी जरूरत है, ताकि आबो हवा की तब्दीली के मुजिर असरात से निपटा जा सके। सदर जमहूरिया आज शाम नई दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से मुनाकिदा माहौलियात और आबो हवा के महरिकात के मुस्तकबिल के बारे में 2 रोजा कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी जलसे से खिताब कर रही थी।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।

0: रुमू ने कहा कि आबो हवा की तब्दीली से इंसानी जिंदगी में मुख्तलिफ पहलुओं से अदम तवाजुन पैदा हो रहा है, जिनमें हयातियाती तनवो, पानी की दस्तियाबी और जमीनी वसायल भी शामिल हैं।
1: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
0: भारतीय फजाइया के सरबराह मार्शल एपी सिंह और जापानी फजाइया जेएएसटीएफ के सरबराह जनरल ताके हिरो मोरिता ने आज जोधपुर में फजाई करतब के दौरान मुल्क में ही तैयार किए गए हल्के जंगजू तैयारे तेजस की परवाज की। दोनों सरबराहान ने ये परवाजें साथ साथ की। दोनों मुल्कों के फजाई सरबराहान ने ये परवाजें भारतीय फजाइया और जापानी फजाइया की मुश्तरका फजाई मशक वीर गार्डियन 2026 के तहत अंजाम दी। ऐसा पहली बार है कि जापानी फजाइया के जंगजू तैयारे इस दो तरफा मशक के तौर पर भारतीय सरजमीन पर परवाज कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई शराकत दारी में मजीद गहराई लाना है। फजाइया के सरबराह एपी सिंह ने इस मशक को भारत जापान दिफाई ताल्लुकात में एक बड़ा संग मील करार दिया है। भारतीय फजाइया के सरबराह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेजस की परवाज का जनरल मोरिता का फैसला भारत में तैयार करदा जंगजू तैयारे पर उनके एतमाद की एक वाजह मिसाल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का फजाई शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है, जिसमें तहकीको तरक्की और तैयारे तैयार किया जाना भी शामिल है। वीर गार्डियन 2026 मशक का आगाज 9 सितंबर को हुआ था और ये 22 सितंबर को इख्तिताम पजीर हो जाएगी। भारतीय फजाइया की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में एक फजाई शो के तहत एक सहरंगेज कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसमें 9 हॉक MK-132 तैयारों ने एक दूसरे के काफी करीब रहते हुए करतब पेश किए। दिफाई उमूर के वजीर मुमलिका संजय सेठ ने इस शो का नजारा किया और टीम की यह कहते हुए तारीफ की कि इस फजाई शो का मकसद नौजवानों को तहरीक देना है कि वो फौज में शामिल हों। ये दो रोजा फजाई शो कल शुरू हुआ था। वजारत दिफा ने बताया कि तलबा एनसीसी कैडेट्स और नेशनल सर्विस स्कीम NSS के रजाकारों समेत 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने इस शो का नजारा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सेठ ने इस तकरीब को उसूल पसंदी, एहतियात से की जाने वाली कार्रवाई, तालमेल के साथ किए जाने वाले काम, पेशावाराना महारत का एक काबिल जिक्र इम्तिजाज और भारतीय फजाइया की शानदार सलाहियतों का एक सबूत करार दिया। उत्तर प्रदेश के इंसदाद दहशतगर्दी दस्ते ATS ने आज वाराणसी में एक बड़ी कार्रवाई के दौरान झारखंड की ममनुआ इंतहा पसंद तंजीम तृतीय प्रस्तुति कमेटी TPC के सरबराह ब्रिजेश कंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता उर्फ सरदार जी को एक एनकाउंटर में हलाक कर दिया। ब्रिजेश कंझू तकरीबन 2 दहाइयों से मफरूर था। झारखंड पुलिस और कौमी तहकीकती एजेंसी NIA ने उसके ताल्लुक से मालूमात फराहम करने पर मजमूई तौर पर 30,00,000 रुपए के इनाम का ऐलान कर रखा था। उसके खिलाफ अगवा, जबरी वसूली, आतिशजनी, मुजरमाना साजिश और सरकारी मुलाजमीन पर हमलों समेत 50 से ज्यादा मुकदमात दर्ज थे। इन मुकदमात में आम शहरियों और पुलिस अहलकारों की मुबैना हलाकतें भी शामिल थीं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव कृष्णा ने इस एनकाउंटर में शामिल ATS टीम के लिए 2,00,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया है। गंजू के लिए ऐलान करदा कुल इनामी रकम में से 25,00,000 रुपए झारखंड पुलिस की जानिब से मुकर्रर किए गए थे, जबकि NIA ने 5,00,000 रुपए इनाम का ऐलान किया था। यूक्रेन ने रूस पर रात भर 1,000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें मास्को को निशाना बनाकर किए गए सैकड़ों ड्रोन हमले भी शामिल हैं। मास्को के मेयर सर्गेई सोवियनिन ने इसे राजधानी पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया है और एक तेल रिफाइनरी और एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचने की भी इत्तला है। जनाब सोवियनिन ने बताया कि मास्को के वसी इलाके में इस हमले से 2 अफराद हलाक और 20 जख्मी हुए हैं। रूस की वजारत दिफा ने बताया कि उसकी फौजों ने मुल्क में 1,100 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन के सदर विलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उनके मुल्क ने इस हमले में तेल और लॉजिस्टिक ठिकानों पर बहुत से मिसाइल और ड्रोन दागे थे, जिनमें यूक्रेन के अपने बनाए हुए मिसाइल भी शामिल थे। पाकिस्तानी हुक्काम ने जेल में कैद साबिक वज़ीरे आज़म इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान को आज गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें अगले हफ्ते उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी पीटीआई की तरफ से एक मनसूबा बंद एहतजाज से पहले गिरफ्तार किया गया है। अलीमा खान को लाहौर में गिरफ्तार किया गया और कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया। वो अपने 73 साल भाई की रिहाई के लिए मुहिम चला रही हैं।

0: जो 2023 से कैद में हैं। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज ने पंजाब में अवामी नज्म व नस्क के 1960 के हुक्म इम्तनाई के तहत उन्हें 30 दिन के लिए हिरासत में रखने का हुक्म दिया है। इस कानून के तहत हुक्काम को ये अख्तियार हासिल है कि वो ऐसे अफराद को हिरासत में ले लें जो अवामी जगहों और नज्म व नस्क के लिए खतरे का सबब बन गए हैं। खान की पीटीआई पार्टी साबिक क्रिकेटर और सियासतदान की रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने के मकसद से 27 सितंबर को एक एहतजाज का मंसूबा बना रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। एक ऐसा सफर जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इसका सिलसिला जारी है। सेवा से सुशासन के नजरिए से तहरीक पाकर हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ की खातिर मुसलसल काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम इस बारे में मालूमात फराहम करेंगे कि भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे जदीद तरीन और आला मेयार के कन्वेंशन और नुमाइशगाहों के जरिए इस विजन को किस तरह अमली जामा पहनाया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के आलमी मयार के नुमाइश और कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में जिनका मकसद भारत को माइस यानी इजलास तरगीबात कॉन्फ्रेंसों और नुमाइशों के शोबे में आलमी रहनुमा के तौर पर पेश करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका इलाके में यशोभूमि का इफ्तिताह किया था। इसमें 15 कन्वेंशन रूम्स हैं और 11,000 मंदूबीन की गुंजाइश है। वज़ीर-ए-आज़म ने जुलाई 2023 में भारत मंडपम मुल्क के लिए वक्फ किया था। भारत मंडपम में G20 सरबराह मीटिंग और हाल ही में मुनक़दा ब्रिक्स सरबराह मीटिंग जैसे अहम आलमी इज्तिमात मुनक़द हो चुके हैं। इसके शानदार हॉल में मजमूई तौर पर 7,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है, जो ऑस्ट्रेलिया के मशहूर सिडनी ओपेरा हाउस की गुंजाइश से भी ज्यादा है। भारत मंडपम का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा था कि ये कन्वेंशन सेंटर मुल्क में कॉन्फ्रेंसों से मुतालिक सियाहत को फरोग देगा।
2: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
1: आकाशवाणी से बात करते हुए एक तालिब इल्म ऋतिक, जिसने भारत मंडपम में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की है और रजाकाराना तौर पर खिदमात अंजाम दी हैं, बताया कि इस आलमी मयार के मकाम ने भारत में तकरीबात के मंजरनामे को यकसर बदल कर रख दिया है। आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही मुल्क में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े मराकज बन चुके हैं। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर अमरीका के न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें आला सतह के इजलास के दौरान भारतीय वक्त की क़यादत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इस माह की 26 तारीख को अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के आला सतह के सेशन से खिताब करेंगे। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर मुख्तलिफ कसीर जहती और दो तरफा मीटिंगों में भी शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का मौसम खजां का सेशन कल से श्रीनगर में शुरू हो रहा है। 10 रोजा सेशन 7 इजलास के साथ 30 सितंबर तक जारी रहेगा। सेशन के दौरान हुकूमत मुख्तलिफ कानूनी तजावीज पेश करेगी, जिसमें जीएसटी से मुतल्लिक तजावीज, बल्दियाती हुकूमत और तिजारत के तरीकेकार शामिल हैं। आज मुल्क भर में संकल्प समारोह का इनेकाद किया गया, जो 100 हफ्ते के नशा मुक्त युवा अभियान के हिस्से के तौर पर था। अभियान का मकसद एक तरक्की याफ्ता भारत के लिए नशे से पाक एक नौजवान बिरादरी तैयार करना था। नौजवानों और खेलकूद की वजारत ने बताया कि इस मुहिम में नौजवानों ने सरगर्म हिस्सा लिया और पूरे मुल्क में 1067 जगहों पर प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने ओडिशा, साहिली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 से 3 रोज के लिए शदीद से शदीद तर बारिश की पेशगोई करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल के गंगा के इलाके, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और शुमाल मशरिक के कुछ हिस्सों में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। जापान के शिनोगोया में जारी एशियन गेम्स के आज इफ्तिताही दिन भारत ने चांदी के दो तमगे जीतकर एक मजबूत शुरुआत की है। तीन खिलाड़ियों की टीम दर्शा विनोद एलेवेनिल वेलावीरा और सोनम मास्कर ने खवातीन के 10 मीटर एयर

0: कल मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है, जबकि एलेवेनिल ने भी इनफरादी मुकाबले में एक और चांदी का तमगा हासिल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को इस कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी है। क्रिकेट में भारतीय खवातीन टीम ने गोल्ड मेडल मैच में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बांग्लादेश से 114 रन से जीत हासिल की है। शिफाली वर्मा ने अपने T20 इंटरनेशनल का पहला सेंचुरी 49 गेंदों पर 100 रन बनाई। स्मृति मंधाना ने 19 गेंदों पर 37 रन बनाया। भारत ने 4 विकेट पर 195 रन बनाकर बांग्लादेश को 81 रन पर आउट कर दिया। फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के दरमियान मंगल के रोज खेला जाएगा। सुचिका त्रियाल एशियन गेम्स में खवातीन के रवायती 60 किलोग्राम के सेमीफाइनल में पहुंचकर मुल्क की पहली एथलीट बनकर तारीख रकम की है। भारतीय खवातीन की बैडमिंटन टीम कजाकिस्तान से 3-0 से जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। हॉकी में मर्दों और खवातीन दोनों टीमों ने एक बड़ी जीत के साथ शुरुआत की है। मर्दों की टीम ने इंडोनेशिया को पूल ए के मैच में 13-1 से शिकस्त दी, जबकि खवातीन टीम ने अपने पूल बी में उज्बेकिस्तान को 19-0 से शिकस्त दी। टेबल टेनिस में भारतीय खवातीन टीम ने इंडोनेशिया को 3-0 से और सिंगापुर को 3-2 से, जबकि मर्दों की टीम ने इंडोनेशिया को 3-0 से शिकस्त दी, लेकिन ईरान से 0-3 से हार गई। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कुदरती आफात के बढ़ते हुए हादसात से निपटने के लिए आबो हवा से मुतल्लिक मजबूत तर कार्रवाई और आलमी ताबुन पर जोर दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में माहौलियात और आबो हवा के मुहर्रिकात के मुस्तकबिल से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। भारत और जापान के फजाइया सरबराहान ने जोधपुर में मुश्तरका फजाई मशक के दौरान तेजस तैयारों की परवाजें की। भारतीय फजाइया के सरबराह ने कहा कि भारतीय सरजमीन से जापानी जंगजू तैयारे की अभी तक की पहली परवाज दिफाई ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। एक नक्सल कमांडर जिस पर 30 लाख रुपए का इनाम था, वाराणसी में दहशतगर्दी की रोकथाम के उत्तर प्रदेश स्क्वाड के साथ एक झड़प में मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं, जो अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। और एशियाई खेल मुकाबलों में भारत ने निशानेबाजी में चांदी के 2 तमगे जीते हैं। खवातीन की क्रिकेट टीम भी फाइनल में पहुंच गई है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक पगली। ये नाटक देवदत्त हरिभाऊ रुकड़ीकर के लिखे मराठी नाटक बेड़ी का हिंदी नाट्य रूपांतर है। हिंदी रूपांतरकार हैं पुरुषोत्तम जोशी और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक पगली।
2: जोशी साहब, आपने कभी लड़कियों का मजाक उड़ाया है, उन्हें छेड़ा है?
3: घोर बेइज्जती
4: है। क्यों? कोई बॉस हमें किसी काम लायक नहीं समझता है, पत्नी किसी लायक नहीं समझती। अरे इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने जवानी के 4 दिन देखे ही नहीं है? अरे बापट भाई, हमारे बाल सफेद क्या हुए, तुमने हमें पैदाइशी बूढ़ा मान लिया।
3: हाँ, भाई तुम लड़कियों का मजाक उड़ाते हो या नहीं, छेड़ते हो या नहीं?
2: अरे जोशी साहब, हमारी तो उम्र ही है लड़कियों का मजाक उड़ाने की।
3: अच्छा, डॉक्टर ने हमें भी तो मना नहीं किया, क्यों ठीक है ना देशमुख?
4: और क्या। अरे बापट मांजरेकर, हम भी कभी जवान थे।
3: पर दुर्भाग्य से हमारी शादी हो गई। हाँ। और कहानी में सितार की जगह सारंगी ने दे दी।
4: पर भाई वो मजाक उड़ाना या छेड़ना तमीजदारों की तरह होता था, पिटने और गाली खाने वाला नहीं। हाँ।
5: अरे आपके समय की बात अलग थी, अब तो मिलावटी जमाना है।
2: अच्छा जोशी साहब।
4: हाँ।
2: हमारे ये देशमुख साहब कैसे थे,
5: कमीज की कमीज वाले या हमारी तरह के?
3: ये देशमुख पूछो मत, तुम्हारे से छोटी उम्र का था तभी से नौकरी कर रहा है।
2: अच्छा।
3: मगर जब ये कुवारा था तब भी इसके अंदर एक शादीशुदा प्रेत की आत्मा बसती।
5: शादीशुदा प्रेत की आत्मा मतलब?
3: मजाल है जो देशमुख ने किसी टाइपिस्ट की तरफ नजर उठाकर देखा।
2: अच्छा।

0: भले और हमारा काम भला हो, पर आज ना वो जमाना रहा ना वैसे लोग, अब तो करने के जैसे बंदों से ऑफिस भरा पड़ा है।
1: अरे हाँ जोशी जी, करणिक की बात पर याद आया, ये तो बताइए कि बड़े साहब ने करणिक को बुलाया किस लिए था?
0: हाँ हाँ, बड़े साहब किस लिए बुलाते हैं ये आपको नहीं मालूम? अजी साहेब, बड़े साहब ने बुलाया है तो समझिए कि आज
2: चंपी चंपी बोलो चंपी चंपी चंपी बोलो चंपी।
1: अरे करणिक के सामने तो लड़की बैठती है, कहीं उसने कोई शिकायत तो नहीं कर दी करणिक के अगेंस्ट?
0: करणिक हमेशा मजाक उड़ाता रहता है उसका।
3: अजी साहब, अपने ऑफिस में 4-5 दिन पहले जो एक लड़की आई है ना, वो उसका भी हमेशा मजाक उड़ाता है।
0: कौन सी लड़की?
3: अरे वही जो मांजरेकर के टेबल के बाजू में बैठती है।
1: अरे मिस साने, क्या लड़की है साहब। अरे सच में ऑफिस में आज तक इतनी खूबसूरत लड़की ने काम नहीं किया कभी।
0: बापट बापट, तुम बता रहे हो या अपने आप को याद दिला रहे हो?
1: बता रहा हूँ जोशी साहब,
0: दिल पर हाथ रखकर इतनी मीठी आवाज में।
1: आप भी ना।
3: अरे चलो भाई चलो, बहुत काम पड़ा हुआ है।
1: चलिए चलिए चलिए, आइए। अरे बस क्यों नहीं आ रही है? ज्योति साहब, ज्योति साहब।
0: हाँ बोलो बोलो करणी।
1: हमारे ऑफिस में वो जो नई लड़की आई है ना, मिस साने। हाँ हाँ मिस साने। अरे साहब वो हाफ मैड है।
0: हाफ मैड?
1: हाँ हाँ हाफ मैड।
0: कैसे?
1: तुम्हारे थोबड़े पर कुछ दे मारा क्या उसने करणी का? अजी साहब बड़ी अजीब लड़की है।
3: अरे आखिर हुआ क्या?
1: अरे बात ऐसी हुई कि कल मैं लंच ब्रेक में आपकी तरफ आ रहा था, रास्ते में वो मुझे मिली, उसकी तरफ देखकर मैं थोड़ा, वो मेरे पास आई और कहने लगी, डार्लिंग करने तुम मुझे बहुत पसंद हो, चलो ना हम शादी कर लें, हाँ कहीं दूर भाग जाए, और मेरे गले में बाहें डालने आगे बढ़ी। अरे मैं तो इतना घबराया कि बस, आप ही कहिए कोई ठीक ठाक लड़की ऐसा करेगी क्या? अरे पगली है वो पगली।
4: अरे तुम भी बड़े फेंकू हो करणिक।
1: हैं?
4: किसी भी शरीफ सभ्य स्त्री का अपमान करके तुम्हें बहुत आनंद आता है।
1: मंत्रीगढ़, मैं तो मिस साने के बारे में बात कर रहा हूँ, और मिर्ची आपको लग रही है, हैं? कोई लगती है क्या तुम्हारी?
3: अरे करणिक, वो मांजरेकर की टेबल के पास बैठती है, इतना संबंध काफी नहीं है क्या?
4: देख करणिक, लगती तो कोई नहीं है, मगर तुम किस किस्म के आदमी हो ये पूरा ऑफिस जानता है। हर लड़की के बारे में तुम्हारे विचार बड़े ही ऊंचे होते हैं। तुम में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो है। मिस साने पगली है, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास?
1: सबूत? मेरे पास सबूत है, पूरा पूरा सबूत है।
4: तो दीजिए ना सबूत।
1: आपके सामने जो मिस्टर बापट है ना, आप उनसे ही पूछ कर देखिए।
4: बापट, तुम्हारे साथ क्या किया उसने? करणिक सही कह रहा है?
3: हाँ मांजरेकर, करणिक का कहना सही है, मिस साने एक पगली है भाई, ये बात सच है। मैं सबसे बताना तो चाहता था कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हुई।
1: क्या कह रहे हो, मिस साने पगली है? तुम्हारे साथ क्या किया उसने?
3: मिस्टर मांजरेकर, आपके टेबल के नजदीक वो जरूर बैठती है, लेकिन याद रखना उससे ज्यादा नजदीकी मत बढ़ाना, उससे दोस्ती वोस्ती के चक्कर में मत पड़ना, पगली है वो, और पागलों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा।
5: हे भगवान, नियति भी क्या क्या खेल दिखाती। भाई कौन सोच सकता था कि इतनी सुंदर लड़की पगली होगी। बेचारी।
4: चलो भाई चलो दोस्त।
6: अरे जोशी जी,
4: मेरे पास आ गए।
6: मैं तो
4: अरे भाई अनारकर।
7: जी सर।
4: जरा इधर आओ।
7: जी सर।
4: ये लो ये फाइल बड़े साहब के पास ले जाना, और मेरे लिए एक गिलास पानी भी ले आना।
7: जी अच्छा।

0: Excuse me, Mr. Mansukar.
1: जी, आपने मुझसे कुछ कहा?
0: जी, माफ कीजिए, मैं आपको कुछ तकलीफ दे रही हूँ. क्या आप मेरा एक काम करेंगे?
1: काम?
0: जी, ये कैलकुलेशन मेरी समझ में नहीं आ रहा है. डेटा ही नहीं मिल रहे. आप जरा देखिए ना इस फाइल को. आप इधर उधर क्या देख रहे हैं?
1: किधर? नहीं, कुछ नहीं. क्या कह रही थी आप?
0: नंबर्स मैच ही नहीं हो रहे हैं. यदि आपके पास थोड़ा समय हो तो कृपया आप मेरी मदद कीजिए ना.
1: जी, फाइल कहाँ है?
0: ले लीजिए.
1: एक मिनट है. हाँ, ये देखिए, ये रही गड़बड़ी.
0: कहाँ? ये?
1: हाँ, ये और ये जो, हाँ, नीचे ये हैं आपके मिसिंग नंबर.
0: अरे वाह, इतनी जल्दी मिल गए. मैंने 4 बार रिकैलकुलेशन किया और इस गलती पर ध्यान ही नहीं गया मेरा.
1: इसमें सब अटकते हैं, अनुभव से आता है ये. जल्दी सीख जाएंगे आप. ये आपकी फाइल.
0: थैंक यू.
1: नहीं, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है. एक दूसरे की मदद करना तो हमारा कर्तव्य है. अरे, 6:30 बज भी गए. अच्छा मिस सानी, मैं निकलने की तैयारी करता हूँ. कल मिलते हैं.
0: मिस्टर मांसेकर, 1 मिनट रुकिए.
1: जी.
0: मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ?
1: मेरे साथ मगर मैं.
0: चलिए मिस्टर मांसेकर, आइए.
1: जी जी जी.

0: इसे आप इस ऑफिस में कब से काम कर रहे हैं?
1: कोई 2 वर्षों से। क्यों पूछ रही हैं आप?
0: नहीं कुछ नहीं, यही पूछा। अच्छा ऑफिस है।
1: हाँ वो तो है, और सबसे अच्छी बात यह है कि 11:30 बजे से ऑफिस शुरू होता है, सुबह के ट्रैफिक से भी बच जाते हैं और शाम के पीक ट्रैफिक की भीड़ से भी।
0: ये तो है, कोई चाहे तो सुबह किसी दूसरी जगह भी काम कर सकता है।
1: आप बस कहाँ से लेती हैं?
0: मैं तो वो मंदिर वाले स्टैंड से लेती हूँ।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: मैं उल्टी साइड वाले स्टैंड से लेता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ फिर, है नमस्ते।
0: अब आपके लिए मंजिल कर, यदि आपको कुछ असुविधा ना हो तो हम कहीं चाय पी सकते हैं, आज चाय पीने का बहुत मन कर रहा है।
1: अरे वो मुझे आज
0: क्यों, वाइफ ने आज जल्दी बुलाया है आपको?
1: नहीं नहीं, वाइफ ने नहीं, वो मेरी दीदी ने बुलाया है, जल्दी पहुंचना है, कुछ काम था। अच्छा आज्ञा दीजिए हैं।
0: अच्छा
1: जी जी, कल मिलते हैं।
0: बाय
1: बाय बाय बाय बाय। ईश्वर मलटन गई।
2: दीदी दरवाजा खोलो। दीदी
3: आई।
4: अरे सचिन बहुत देर लगा दी आज तूने।
1: हाँ दीदी जरा देर हो गई। अरे ये क्या दुकान खोल रखी है?
4: तुम बच्चों के पेपर से जांचने बैठी थी। अच्छा अब तू हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं चाय लेकर आती हूँ, अभी लाती हूँ। ये ले चाय।
1: दीदी
4: क्या हुआ?
1: दीदी तुम अपनी नौकरी छोड़ दो।
4: हाँ नौकरी छोड़ दो? सचिन बेकार की बातें मत कर, नौकरी छोड़कर घर बैठी बैठी क्या करूंगी? समय बिताने के लिए तो मैं नौकरी करती हूँ।
1: दीदी मगर तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है?
4: अरे उसमें काहे की तकलीफ, अब तो आदत हो गई है मुझे, जब से सवेरे का स्कूल हुआ है ना, क्या बताऊं दोपहर काटनी मुश्किल हो जाती है।
1: दीदी तुमने मेरे लिए कितने कष्ट उठाए हैं, मुझे पढ़ाने लिखाने के चक्कर में तुमने
4: शादी तक नहीं की, मेरे

0: के लिए तुमने इतने दुखों के पहाड़ सिर पर उठा लिए वगैरह वगैरह। क्यों रे, कैसी बच्चों सी बातें कर रहा है।
1: दीदी, तुमने आज तक जो किया वो बहुत हुआ,
0: अच्छा,
1: लेकिन अब और नहीं। मेरी तनख्वाह इतनी तो है कि हम दोनों का निर्वाह अच्छी तरह हो सकता है ना।
0: ठीक है, लेकिन मिस्टर सचिन मांजरेकर जी, घर में आपकी स्थिति का दिल नहीं लगता, इसीलिए वो नौकरी करती है।
1: मगर मैं चाहता हूँ कि अब तुम नौकरी छोड़ दो।
0: अच्छा, तू कहता है तो नौकरी छोड़ दूंगी बस।
1: सचमुच?
0: बस रे, तेरी शादी हो जाए, तेरा संसार बस जाए, फिर तू बाप बन जाए और मैं तेरे बच्चों को गोदी में लेकर लोरियां सुना सुना कर दिल बहला लूंगी।
1: दीदी, क्या कह रही हो तुम? अपना सारा जीवन क्या मुझ पर उपकार करने में बिता दोगी?
0: सचिन, अपने छोटे भाई पर कैसा उपकार है, हम दो ही तो बचे हैं परिवार में। अच्छा सुन, अब तो शादी कर ले, ठीक? कहीं लड़की भी देखी है या नहीं?
1: क्या कहती हो दीदी, मेरे लिए लड़की देखना तो तुम्हारा काम है।
0: पगला कहीं का।
1: पगला?
0: अरे,
1: कोई
0: लड़की पसंद तो नहीं कर रखी है तूने जिसके बारे में मुझे पता नहीं?
1: नहीं दीदी, ये क्या बोल रही हो तुम? सच बताऊं, जब तुमने मुझे पगला कहा तो मुझे कुछ याद आ गया।
0: क्या?
1: दीदी, 15 दिन हुए हमारे ऑफिस में एक नई लड़की आई है। दिखने में सुंदर है, काम भी बड़ी अच्छी तरह से करती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कहते हैं कि वो पगली है।
0: पगली?
1: हाँ दीदी, खूबसूरती और पागलपन का ये मेल कुछ अजीब सा लगता है।
0: लेकिन सचिन, हर कोई उसे पगली क्यों बोलता है रे?
1: दीदी, अगर वो हर किसी से ये पूछती फिरे कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो लोग तो पागल ही समझेंगे ना। अरे अभी तक तो मुझसे नहीं पूछा, लेकिन मेरे ऑफिस के कर्णिक और बापट से उसने पूछा था।
0: बड़ी विचित्र सी लगती है लड़की, उसको नौकरी ऐसे मिल गई भाई।
1: दीदी, यही तो मेरी समझ में भी नहीं आया। कहते हैं कि उसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ था और हमारे साहब उस पर बहुत ही खुश हुए। जाने दो ना। खैर दीदी, तुम्हारे स्कूल में एक टीचर की जरूरत थी ना, वो बापट बोल रहा था कि उसकी चचेरी बहन है।
0: देर हो गई है रे, कल ही एक टीचर को अपॉइंट कर लिया है, बहुत अच्छी है, BA BT, नाम भी बहुत प्यारा सा है, विभावरी, विभावरी साने।
1: साने? विभावरी साने? दीदी, मैं अभी जिस लड़की के बारे में बता रहा था ना, वही ऑफिस वाली पगली।
0: हाँ हाँ,
1: उसका पूरा नाम तो मुझे मालूम नहीं, मगर सब उसे मिस साने ही कहते हैं।
0: तुम्हारी मिस साने होगी पगली, मगर हमारी विभावरी साने पगली नहीं है, वो तो बहुत समझदार और संस्कारी है। और हाँ, खूबसूरत भी बहुत है।
1: अच्छा, अजीब संयोग पर संयोग है, आपके यहाँ भी मिस साने, मेरे यहाँ भी मिस साने, एक ही दिन में 2 साने।
0: सुन सचिन, विभावरी साने अभी अनमैरिड है, बात चलाऊं?
1: लो, अभी तो मैं 2-2 साने के चक्कर में ही घन चक्कर हो गया हूँ। और तुम हो कि 1 साने को घर में दुल्हन बनाकर लाने के चक्कर में पड़ गई। दीदी, साने के बाकी गाने हम फिर किसी दिन गा लेंगे ना।
0: अरे, जाकर देख ले एक बार उसका घर। पता है उसका मेरे पास। एक काम कर, परसों रविवार है, है? विभावरी के घर हुआ।
1: पागल तो नहीं हो गई हो? वहां जाकर क्या बोलूंगा मैं दीदी? विभावरी जी, मेरी दीदी आपसे मेरी शादी करवाने की सोच रही है, मैं इसलिए आपका घर देखने आया हूँ। क्या सोचेगी वो?
0: अरे पागल, तू बोलेगा कि मुझे अपनी बेटी के लिए एक ट्यूटर की तलाश है, इसलिए आपके पास आया हूँ।
1: ए लो जी, अब मेरी बेटी भी पैदा करवा दी, शादी तो होने दो मेरी।
0: इसीलिए तो कह रही हूँ, रविवार को विभावरी साने का घर देखा। अरे मिल तो आ, वरना तेरी वाली मिस्साने जैसी

0: ना मिल जाए कोई। और हाँ हाँ सुन, याद आया, एक फाइल भी मंगवानी है उसके पास से। उसी को लाने के लिए मेरा दूत बनकर चले जाना।
1: अच्छा बाबा, चला जाऊंगा। क्या बनाया आज खाने में?
0: तेरी पसंद की सब चीजें बनाई है, चल आ जा।
1: मेरा नाम सचिन मांजरेकर है।
2: सचिन तेंदुलकर को तो मैं जानती हूँ, महान क्रिकेटर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी। संजय मांजरेकर जी को क्रिकेट की कमेंट्री करते देखा है। आप तो आधा उधर के और आधा इधर के हो गए। देखिए मिस्टर, आधा वो आधा ये, अगर आप कोई सामान बेचने आए हैं तो यहाँ आपकी कोई दाल नहीं गलने वाली। दीदी आपको देखते क्या बोलेगी मालूम? आगे जा रहे बाबा।
1: आपकी दीदी विभावरी साने ऐसा बोलती है मुन्नी?
2: अच्छा, तो आप मेरी दीदी को जानते हैं?
1: वो घर पर है क्या?
2: वो घर पर तो नहीं है, आने वाली होंगी। लेकिन उनके आने से पहले मैं एक बात हमेशा के लिए क्लियर कर दूं कि मेरा नाम मुन्नी नहीं सुरेखा है। क्या नाम है मेरा?
1: सुरेखा।
2: वेरी गुड मेमोरी, गुड बॉय।
1: थैंक यू।
2: अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि दरवाजा खोलो?
1: जी।
2: तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जब दीदी घर में नहीं होती तो मैं यूं ही ग्रिल के अंदर से बात करती हूँ। अनजान लोगों के लिए दरवाजा खोलने का मतलब है रात में क्राइम सीरियल में आपकी खबर। आप भी नहीं खोलना?
1: कभी नहीं खोलूंगा। क्या तुम विभावरी साने की बहन हो?
2: हाँ, लेकिन मैं उन्हें विभावरी साने नहीं दीदी कहती हूँ।
1: अच्छा अच्छा, बड़ी होशियार हो तुम।
2: ये तो मुझे मालूम है।
1: अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम?
2: क्योंकि मैं होशियार हूँ।
1: हाँ ठीक है। अच्छा सुरेखा, ये तो बताओ कि तुम्हारी दीदी कब लौटेंगी?
2: बस अब वो आती ही होंगी, वो कह गई हैं कि जल्दी लौटूंगी। हमारी दीदी कभी झूठ नहीं बोलती, अगर मिठाई लाऊंगी ऐसा कहती है तो वो जरूर ले आती है। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, और अगर रुकना है तो बातें करते हैं तब तक, ठीक?
1: हाँ, एकदम ठीक।
2: तो आपको रुकना है, चलिए बातें करते हैं फिर। नाम तो आपने बता दिया।
1: हाँ।
2: आप रहते कहाँ हैं? आप काम क्या करते हैं?
1: मैं यही मुंबई में रहता हूँ, और काम तो तुम्हारी दीदी को ही बताऊंगा। अच्छा अब ये बताओ, तुम्हारी दीदी जल्दी आएंगी या मैं जाऊं?
2: देखिए, दीदी कहती हैं किसी पर अपनी इच्छा कभी लादनी नहीं चाहिए। आपको जाना है तो जाइए।
1: अच्छा सुरेखा, दीदी स्कूल गई है क्या?
2: अरे आज तो रविवार है, आज क्या वहाँ झाड़ू लगाने जाएंगी? रविवार को छुट्टी होती है।
1: सॉरी, भूल गया था।
2: फिर तो आप सुबह योगा किया करें, याददाश्त ठीक होती है। आपका नाम सचिन मांजरेकर है ना?
1: हाँ।
2: मैं आपको कैसे बुलाऊं? आपका नाम तो ले नहीं सकती, मेरी दीदी ने कहा है
1: कि बच्चे बड़ों के नाम नहीं लेते, यही ना?
2: हाँ, लेकिन आपको ये कैसे मालूम?
1: क्योंकि जैसे आपकी एक दीदी है ना, वैसे ही मेरी भी एक दीदी है।
2: आपकी भी बड़ों की भी दीदी होती है?
1: हाँ।
2: गुड। दीदी, मेरी दीदी आ गई। दीदी ये है
3: मिस्टर मांजरेकर।
1: मिस साने,
3: आप यहाँ?
1: आप यहाँ?
3: आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ रहती हूँ?
1: देखिए सच कहूँ, मैं तो विभावरी साने से मिलने आया था, लेकिन तुम अब आप, मुझसे गलती हो गई। ऑफिस में आपको सब मिस साने कहकर पुकारते हैं, आपका पूरा नाम मुझे मालूम ही नहीं था।
2: दीदी ये बड़ी अजीब बातें करते हैं कि इनकी भी दीदी है।

0: और इन्हें इतना भी नहीं मालूम कि रविवार को स्कूल की छुट्टी होती है। मैंने जब इनसे पूछा कि मैं इन्हें क्या कहकर बुलाऊं, तो इन्होंने जवाब ही नहीं दिया।
1: सुरेखा, तुम अंदर जाओ। मिस्टर मानसिकर, आइए, अंदर आइए।
2: थैंक यू।
1: आइए बैठिए।
3: आपने यहां आने का कष्ट कैसे किया?
2: स्नेहलता मांजरेकर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, ऑफिस की फाइल के लिए। नहीं नहीं, ट्यूटर के लिए नहीं, फाइल, ट्यूटर।
3: स्नेहलता मांजरेकर आपकी?
2: वो मेरी दीदी है।
3: ओह अच्छा।
1: चुप क्यों हो गए? क्या सोच रहे हो?
2: आपके बारे में।
1: मेरे बारे में क्या
2: सोच रहा था? कि
3: मैं दो जगह नौकरी क्यों करती हूँ?
2: जी,
3: अपना संसार चलाने के लिए। मेरे माता पिता अब नहीं रहे और छोटे भाई बहनों की शिक्षा का भार मुझको ही उठाना है।
2: मैं समझ सकता हूँ, मेरी दीदी ने भी मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं और आज भी कष्ट उठा रही हैं। दुनिया के सारे कष्ट उन्होंने अपने हिस्से में रखकर मुझे सुखी बनाया।
3: परिस्थितियों के आगे हर किसी को माथा झुकाना पड़ता है।
2: ठीक कहा, दीदी कहती हैं परिस्थितियों के प्रवाह में बहते चले जाना ही जीवन है। एक बात पूछूं निस्सा ने?
3: जी।
2: करणिक और कुछ और लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं।
1: क्या कहती है?
2: कहते हैं कि आप आप
1: पगली हैं।
2: जी
1: ठीक ही तो कहते हैं।
2: यानी सचमुच आप?
3: करना पड़ता है, करना पड़ता है। अपने आप को अपने कर्तव्य के पथ पर सजग बनाए रखने के लिए करना पड़ता है सचिन।
2: मैं समझा नहीं।
3: सुंदरता कभी कभी अभिशाप भी बन जाती है। कर्णिक और बापट जैसे लोग हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मुझे उन जैसे लोगों से खुद को बचाने के लिए कुछ अजीब सी हरकत करनी पड़ती है। और दूसरी बात है कि इससे मुझे लोगों से अलग रहने में आसानी होती है। सोचो, अगर मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जिसे मेरे कर्तव्यों का पथ स्वीकार ना हो, मेरी जिम्मेदारियों का एहसास ना हो, तो क्या होगा? सिर्फ अपनी खुशी के लिए मैं इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकती। मैं
2: लेकिन लोग तो पगली समझते हैं तुम्हें।
3: मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे अपने छोटे भाइयों और बहनों से वास्ता है। क्या आप भी मुझे पगली समझते हैं?
2: नहीं, मुझे इस बात पर कभी विश्वास नहीं हुआ और इसी वजह से कर्णिक से झगड़ा भी हुआ था।
3: मेरे लिए?
2: मिस साने, मुझे अब आपके बारे में सोचकर अजीब लग रहा है। दुख भी, सहानुभूति भी, इज्जत भी, सम्मान भी।
3: और कहाँ ना? बोलो।
2: विभावरी, मेरी दीदी का एग्जाम्पल मेरे सामने है, जिसने अपने भाई के लिए अपना जीवन मिटा डाला, और शायद तुम भी उसी रास्ते पर हो। विभावरी, एक बात पूछूं? मुझसे शादी करोगी? मुझे भी तुम अपने कर्तव्य में हिस्सा लेने की स्वीकृति दो। तुमको अपने परिवार में पाकर मेरी दीदी को बहुत खुशी होगी, सुख पहुंचेगा। और फिर अरे
3: आप भी पागल हैं।
2: पागल?
3: हाँ पागल, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न पूछने की वजह से लोग मुझे पगली कहते हैं, और अब तुम भी।
2: विभावरी, तो फिर क्या सोचा तुमने?
3: दीदी से भी तो पूछ लेना चाहिए ना।
4: सच?

0: मम्मी मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ।
1: राजी
0: क्या हम दीदी के पास अभी चल सकते हैं?
2: अभी?
0: हाँ अभी।
2: ठीक है चलो,
0: लेकिन वहाँ हंसने का पागलपन मत करना।
2: हाँ तुम भी ये फाइल टूटे मत करना।
0: नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। चले
3: पगली। अभी आप ये नाटक सुन रहे थे। ये नाटक देवदत्त हरिभाव रुकरीकर के लिखे मराठी नाटक बेड़ी का हिंदी नाट्य रूपांतर था। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। जोशी की भूमिका में थे कीमती आनंद, देशमुख अशोक मलकानी, बापट राजेश काम्बोज, स्नेहलता सुचित्रा गुप्ता, मांजरेकर अनुराग अरोड़ा, कर्णिक संजय वर्मा, विभावरी साने कुमकुम जैन और सुरेखा की भूमिका में थी बेबी सारा मायणकर। प्रस्तुतिकरण सहयोग शिवाली का था और इस नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: And here is the update for today for the 20th of September, the Asian Games 2026.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: नमस्कार, खेल की दुनिया से इस वक्त की सबसे अहम रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं। एक तरफ जापान की धरती और आईची नगोया का खेल मैदान है तो दूसरी तरफ हर खेल में पदक की उम्मीद में धक धक करती करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन है। आईची नगोया एशियन गेम्स 2026 का औपचारिक उद्घाटन और दो दिन पहले शुरुआती मुकाबलों के रोमांच के बाद आज से महामुकाबले और पदकों की दौड़ में एक दूसरे को पछाड़कर आगे निकलने की होड़ शुरू हो चुकी है।
4: एशिया के 45 देशों के सर्वश्रेष्ठ एथलीट यहां जुटे हैं। 43 खेलों के कुल 469 मेडल इवेंट में हर खिलाड़ी अपना सब कुछ झोंक देने के लिए तैयार है।
3: तो अब आज की सुर्खियां। भारत ने शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल पर साधा निशाना। एलेवेनिल वलारिवन विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 0.6 अंक से गोल्ड से चूकी। एलेवेनिल सोनम मस्कर और विदार्सा विनोद को टीम इवेंट में भी सिल्वर। मिक्स्ड मार्शल आर्ट में सुचिका दरियाल ने इतिहास रचा, सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक किया पक्का। भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची, खिताब के लिए श्रीलंका से होगा मुकाबला। हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों का धमाकेदार आगाज, अपने अपने वर्गों में हासिल की बड़ी जीत। और बैडमिंटन में महिला टीम ने अपना पहला मैच आसानी से जीता, अब जापान से अगला मुकाबला।
4: वक्त बदल रहा है और खेल भी। इस साल एशियन गेम्स में 6 नए खेलों को पहली बार मेडल स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया गया है। ये खेल है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, पैडल, सर्फिंग, टेक बॉल, वर्चुअल टाइकोंडो और बीएमएक्स फ्रीस्टाइल। भले ही खेल नए हो लेकिन भारतीयों का जज्बा पुराना और आक्रामक है। जापान की धरती पर इतिहास रचते हुए भारत के लिए पहला पदक सुचिका तरियाल ने पक्का कर लिया है। सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ट्रेडिशनल कैटेगरी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर दुनिया को बता दिया है कि नए दौर के नए खेलों में भी भारत

0: किसी से पीछे नहीं है। MMA में सुचिका की सफलता के बारे में बता रही हैं कविता शर्मा।
1: आईटी नागोया एशियन गेम्स में मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी MMA में भारत के लिए आज का दिन मिलाजुला रहा। महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के 36 वर्षीय सुचिका तारियाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मंगोलिया की अल्तानची मेग बैगलमा को क्वार्टर फाइनल में 2-0 से हराया और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। इस जीत के साथ सुचिका ने एशियन गेम्स के इतिहास में MMA में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दोनों हारने वाले खिलाड़ियों को कांस्य पदक मिलता है, इसीलिए सुचिका का कम से कम कांस्य पदक तय हो चुका है। वहीं पुरुषों के 77 किलोग्राम वर्ग में भारत के वरुण सान्याल का अभियान मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वजन वर्ग में आने के लिए वजन घटाने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें चक्कर आए और वो बेहोश हो गए। मेडिकल जांच के बाद उन्हें प्रतियोगिता के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें चिकित्सा सहायता दी गई और बाद में उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस तरह सुचिका ने इतिहास रचा तो दूसरी तरफ वरुण के लिए दिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। भारत की नज़र अब सुचिका के सेमीफाइनल मुकाबले पर है।
2: सुचिका ने इन खेलों में भारत का पहला मेडल भले पक्का किया, लेकिन पहला मेडल शूटिंग में मिला। कमाल के मेंटल स्ट्रेंथ और सटीक निशाने साधने के इस खेल में पहले दिन भारत की सफलता की जानकारी दे रहे हैं दर्पण तिकिया।
3: एशियन गेम्स 2026 में सफलता का पहला समाचार शूटिंग रेंज से आया है। 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धाओं में महिला निशानेबाजों ने टीम इंडिया को दिलाए हैं 2 सिल्वर मेडल। पहला टीम इवेंट में एलावनिल वलारीवन, सोनम मास्कर और विदर्शा विनोद की तिगड़ी के नाम रहा। भारतीय टीम ने पिछले एशियन गेम्स रिकॉर्ड को पछाड़ते हुए कुल 1898 अंक हासिल किए। हालांकि चीन से आने वाली तिगड़ी ने 1904.2 अंक हासिल कर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया और गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। सोनम मास्कर ने क्वालिफाइंग एशियन गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 634.1 अंक हासिल किए। वहीं दिग्गज खिलाड़ी एलावलिन ने 633.5 तो विदर्शा ने 630.4 अंक हासिल किए। इस प्रदर्शन के चलते एलावलिन और सोनम 10 मीटर एयर राइफल के वुमेन्स इंडिविजुअल इवेंट के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई की। एकल प्रतियोगिता के फाइनल में जहां सोनम के हाथ छठा पायदान लगा, तो वहीं एलावनील लगातार गोल्ड मेडल पोजीशन पर बरकरार रही। हालांकि उनके अंतिम कुछ शॉट निशाने से अंश मात्र ही भटके और वो मेजबान जापान की हिनाटा ताइची से 0.6 अंकों से पिछड़ गई। कुल 253 अंक हासिल कर ताइची ने नया गेम्स रिकॉर्ड स्थापित किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो वहीं भारत की एलावनिल वलारीवन के हाथ सिल्वर मेडल लगा। जापान जाने से पहले उन्होंने यही बताया था दैट शी इज ट्राइंग टू स्टे इन द प्रेजेंट।
4: मुझे लगता है कि अगर मैं अपना बेस्ट दूंगी तो वो मेरे उस दिन के लिए काफी रहेगा एंड मैं बस उसी पे फोकस कर रही हूँ। एट द एंड ऑफ द डे हम यही चाहते हैं कि इंडिया का फ्लैग सबसे ऊपर रहे।
2: एशियन गेम्स के जरिए ओलंपिक क्वालिफिकेशन का लक्ष्य लेकर उतरी भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम्स ने अपने अभियान की शुरुआत उम्मीदों के अनुरूप की। महिला टीम ने ग्रुप के अपने पहले मैच में उज्बेकिस्तान को तो पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को टिकने का मौका ही नहीं दिया, बता रही हैं अमीशा।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए पूल बी के ग्रुप स्टेज के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 के बेहद विशाल अंतर से मात दी, जिसमें भारतीय फॉरवर्ड दीपिका सहरावत ने इंडिविजुअल 8 गोल दागे, जिसमें 6 गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए आए। ये किसी भी महिला हॉकी फील्ड मैच में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा किया गया विश्व रिकॉर्ड जैसा एक बेहतरीन व्यक्तिगत प्रदर्शन है। इसके अलावा इशिका चौधरी ने एक शानदार हैट्रिक लगाई। वहीं लालरम सियामी, बलजीत कौर, नेहा गोयल, लाल थंथलुंगी और साक्षी राणा ने भी गोल करने में अपना योगदान दिया। भारतीय टीम ने मैच की शुरुआत से ही दबदबा बना लिया था और पहले हाफ में ही 8-0 की मजबूत बढ़त बना ली थी, जो दूसरे हाफ में 11 गोल्स के साथ 19-0 हो गई। ये एशियन गेम्स के इतिहास में भारत की तीसरी सबसे बड़ी जीत है। अब भारतीय महिला हॉकी टीम का अगला ग्रुप स्टेज मैच कल इंडोनेशिया के खिलाफ होगा। वहीं दूसरी तरफ मेंस हॉकी में भी भारत का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम ने अपने पूल ए के ग्रुप मैच में इंडोनेशिया को 13-1 से शिकस्त दी, जिसमें दिलप्रीत सिंह ने अपनी हैट्रिक पूरी करते हुए 4 शानदार गोल दागे। भारत ने शुरुआत में ही आक्रामक खेल दिखाते हुए हाफ टाइम तक 7-0 की बढ़त बना ली थी, जो सेकेंड हाफ के अंत तक 13-1 हो गई। इस मैच में 8 अलग अलग खिलाड़ियों ने गोल किए, जिसमें दिलप्रीत के अलावा अभिषेक, शिलानंद लाकड़ा, राजेंद्र सिंह, मनदीप सिंह और कप्तान हरमनप्रीत सिंह शामिल थे। इस जीत के बाद भारत का अगला ग्रुप स्टेज मैच 22 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ होगा।
2: टेबल टेनिस में भी भारत की दोनों ही वर्गों में धमाकेदार शुरुआत हुई। इस खेल में मजबूत शुरुआत महिला टीम ने की। भारतीय टीम ने ग्रुप एफ के अपने पहले मैच में इंडोनेशिया को 3-0 की करारी शिकस्त दी। पहले मैच में शिजा अकुला ने अपनी प्रतिद्वंदी एन महरानी को करारी शिकस्त दी। शिजा ने यह मैच 3-1 से जीता। दूसरे मैच में दिया चिताले ने अपनी प्रतिद्वंदी अलमायरा नेबुच डनेजर को पांव जमाने का भी मौका नहीं दिया। दिया ने अपनी विरोधी को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से मात दी। इसके बाद बारी थी अनुभवी यशस्विनी घोरपड़े की। उन्होंने भी निराश नहीं किया और इंडोनेशियाई खिलाड़ी चित्रा रश्मि का 3-0 से क्लीन स्वीप किया। ग्रुप बी के दूसरे मैच में विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर मौजूद भारतीय टीम ने 14वीं रैंकिंग वाली टीम सिंगापुर को बेहद रोमांचक मुकाबले में 3-2 से शिकस्त देकर दूसरी जीत दर्ज की। इस मुकाबले में यशस्विनी घोरपड़े ने पहला मैच 3-1 से जीता। दूसरे मैच में शिजा अकुला को लॉय मिंग ने 2-3 से हराया। टाई का तीसरा मैच सिंगापुर की तेंझाओ ने दिया चिताले को 3-1 से हराकर जीता। चौथे मुकाबले में शिजा अकुला ने भारत को वापसी कराई। उन्होंने जेंग जियान के खिलाफ ये मैच 3-1 से जीता। टाई 2-2 पर पहुंच गया। अब बारी थी पांचवें यानी निर्णायक मुकाबले की। यशस्विनी घोरपड़े का सामना 15 साल की लॉय मिंग से था। हर खेल प्रेमी की धड़कन बढ़ी हुई थी। इसी बीच लॉय मिंग ने पहला गेम 11-5 से जीत कर बढ़त बना ली, लेकिन इसके बाद यशस्विनी ने 11-8 12-10 से जीत हासिल कर वापसी की। फिर मिंग ने चौथा गेम 4-11 से जीत लिया। मैच का फैसला पांचवें गेम पर पहुंचा। इसे यशस्विनी ने 11-9 से जीत कर भारत को लगातार दूसरा मैच जिता दिया। भारतीय पुरुष टीम ने भी जीत से शुरुआत की। उसने ग्रुप एफ में इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। पहला मैच जी साथियान और मोहम्मद नेगारा के बीच खेला गया, जिसे जी साथियान ने 3-0 से आसानी से जीता और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। मानव ठक्कर और मोहम्मद जुनिंद्रा के बीच खेला गया दूसरा मैच बेहद नजदीकी रहा। इस रोमांचक मुकाबले में मानव ने 3-2 से जीत हासिल की। तीसरा मैच मानुष शाह और अफ़ान प्रातामा के बीच खेला गया, जिसे मानुष शाह ने 3-0 से जीत कर भारत की जीत पक्की कर दी। हालांकि दूसरे मुकाबले में 15वीं रैंकिंग वाले भारत को 20वीं रैंक वाली टीम ईरान ने एकतरफा अंदाज में 3-0 से हराया। उधर भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने उम्मीदों के अनुरूप अपने अभियान का आगाज किया है, बता रही हैं अमीषा।
0: 20वें एशियन गेम्स आईची नागोया में बैडमिंटन के विमेंस टीम इवेंट के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में इंडियन टीम ने कजाकिस्तान को 3-0 से हराकर अच्छा प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली है। इस पूरे टाइम में इंडियन शटलर्स ने शुरुआत से ही कोर्ट पर अपना फुल कंट्रोल बनाए रखा। मैच की शुरुआत की भारत की स्टार शटलर और 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने। सिंधु ने कजाकिस्तान की कामिला समागुलोवा को स्ट्रेट सेट्स में 21-7 21-9 से हराकर भारत को 1-0 से शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद दूसरी सिंगल्स खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने भी अपना जलवा दिखाया। उन्नति ने अपनी रफ्तार और सटीक स्मैश के दम पर कजाकिस्तान की अलीसा कुलेशोवा को 21-7 और 21-10 से हराकर ये मैच अपने नाम कर लिया। इस समय मुकाबला पूरी तरह भारत की झोली में था और फिर आखिर में जीत की इस औपचारिकता को पूरा करने के लिए कोर्ट पर उतरी युवा शटलर तन्वी शर्मा। तन्वी ने कजाकिस्तान की विपक्षी खिलाड़ी डियाना नामेनोवा को 21-5 और 21-10 से एक तरफा मुकाबले में हराकर मैच अपने नाम कर लिया, जिसके चलते भारत 3-0 से अजय बढ़त बना पाया और क्वार्टर फाइनल्स का टिकट कंफर्म किया। अब इंडियन टीम इसी जीत के इरादे से 22 सितंबर को होस्ट कंट्री यानी जापान से भिड़ेगी।
2: शारीरिक चपलता और स्टेमिना के खेल टेक बॉल में हम ऐतिहासिक पदक के करीब पहुंचकर चूक गए, परिणाम के बारे में बता रही हैं कविता।
1: डेब्यू हुए टेक बॉल से पदक की उम्मीदें थी, लेकिन दिन की शुरुआत निराशा के साथ हुई। महिला सिंगल्स के कांस्य पदक मुकाबले में क्विंसी डिसूजा को जापान की विश्व नंबर 7 युइना साकामोटो के खिलाफ 2 सेटों में सीधे हार का सामना करना पड़ा। दोनों गेम बेहद करीबी रहे, लेकिन क्विंसी दोनों सेट 11-12 के अंतर से हार गयी। इसी के साथ टेक बॉल में अगला मुकाबला हुआ मिक्स डबल्स का, जहां एक और कांस्य पदक दांव पर था, लेकिन ये मुकाबला भी भारतीय टीम वियतनाम की जोड़ी से हार गई। मिक्स डबल्स में क्विंसी और मोहम्मद अनस इमराद बेग की जोड़ी वियतनाम से 12-9, 12-6 से हार कर बाहर हो गई। ये अभियान यहां जरूर समाप्त हुआ, लेकिन क्विंसी ने अपने मुकाबले जीतने के लिए पूरी मशक्कत की। क्विंसी लगातार मुकाबलों के बीच

रंग में दिखी, जहां मुकाबला कुछ मिनटों के लिए रोकना पड़ा। खेल के दौरान क्विंसी का दर्द साफ नजर आ रहा था, जिसका नतीजा उनकी परफॉर्मेंस पर भी देखने को मिला। और इस तरह से एशियन गेम्स में टैकबॉल में भारत का अभियान बिना पदक के समाप्त हो गया। पर भले ही ये खिलाड़ी मुकाबला हार गई हो, लेकिन

0: पांचवें स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने रहे। हालांकि पदक की दौड़ में वे चीनी और जापानी खिलाड़ियों की तगड़ी चुनौती के बीच पोडियम तक नहीं पहुंच सके। फाइनल में ऋषभ ने टाइमिंग के लिहाज से अपने प्रदर्शन को और निखारा, फिर भी वे 54.77 सेकंड का समय लेकर 9 खिलाड़ियों के मुकाबले में छठे स्थान पर रहे। इसी स्पर्धा के हीट में उत्कर्ष पाटिल ने 56.19 सेकंड का समय लिया और ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे। इस तरह वे फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। पुरुष 100 मीटर फ्री स्टाइल में रोहित बेनेडिक्टन अपनी हीट में 50.25 सेकंड के समय के साथ 5वें स्थान पर रहे। वह ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहे। इसी इवेंट में आकाश मणि ने 50.85 सेकंड का समय निकाला और अपनी हीट में 8वें स्थान पर रहे। इस प्रदर्शन से वे भी फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। अपने खिताब के बचाव के लिए उतरी महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश की टीम के साथ दो दो हाथ किया और जीत के साथ स्वर्ण पदक के और करीब पहुंच गई है। अमीशा की रिपोर्ट।
1: आज जापान के कुरुगी स्पोर्ट्स पार्क में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी जब बांग्लादेश के खिलाफ एशियन गेम्स के सेमीफाइनल मुकाबले में नाबाद शतक लगाकर शिफाली वर्मा ने क्रिकेट के इतिहास में एशियन गेम्स में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया। शिफाली ने मात्र 49 गेंदों में 100 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली जिसमें 9 छक्के और 3 चौके शामिल थे। भारत ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 195 रनों का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। बल्लेबाजों के बाद अब बारी गेंदबाजों की थी। 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेशी टीम भारतीय गेंदबाजी और बड़े लक्ष्य के प्रेशर के आगे टिक नहीं पाई और महज 81 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से शानदार गेंदबाजी करते हुए दीप्ति शर्मा और नंदिनी शर्मा ने 3-3 विकेट चटकाए और भारत ने 114 रनों के विशाल अंतर से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ अब भारत अपना सिल्वर मेडल तो पक्का कर चुका है, पर अब उनका लक्ष्य अपना गोल्ड मेडल बचाने पर होगा।
0: वुशु में भारत के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही, बता रही है कविता।
2: भारतीय वुशु खिलाड़ियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहा। भारत के सूरज सिंह, मयांग लाम्बम, अपर्णा धैया और विक्रांत बालियान अपने अपने मुकाबलों में पदक की दौड़ से बाहर हो गए। दिन की शुरुआत पुरुषों के चांगक्वान फाइनल से हुई जहां भारत के सूरज सिंह, मयांग लाम्बम ने 21 खिलाड़ियों के बीच 9.683 अंक के साथ 11वां स्थान हासिल किया। सूरज ने क्वालिटी ऑफ मूवमेंट में 5.000 और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी में 2.000 अंक हासिल किए जबकि उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर 2.683 रहा। इसके बाद महिलाओं की 52 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में भारत की अपर्णा धैया का मुकाबला ईरान की सोगंध सिंकाई चेतान से हुआ। राउंड ऑफ 16 में अपर्णा को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। दोनों राउंड में उन्हें 5-0 के स्कोर से हार मिली और इसके साथ ही उनका एशियन गेम्स अभियान समाप्त हो गया। वहीं पुरुषों की 75 किलोग्राम सांडा में भारत के विक्रांत बालियान का सामना ईरान के सोहेल मौसवी से हुआ। विक्रांत को भी राउंड ऑफ 16 में 0-2 से हार मिली और वो प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इस तरह 20 सितंबर को भारतीय वुशु के तीनों मुकाबलों में भारत को जीत नहीं मिल पाई।
0: और अब बात कल के मुकाबलों की। सेपक टेकरा में भारतीय पुरुष रेगु टीम की भिड़ंत ग्रुप बी में जापान से होगी। शॉट टेनिस में मिक्स डबल्स में जय मीणा और आद्या तिवारी का सामना ग्रुप बी में कंबोडिया से होगा। फिर ये भारतीय जोड़ी मंगोलिया के साथ खेलेगी। इन्हें दक्षिण कोरिया से भी मैच खेलना है। वुशु में न्यमान वाक्सु महिला चेंगक्वान में चुनौती रखेंगी। पुरुषों के 56 किलोग्राम वर्ग में आर्यन राउंड ऑफ 16 में अफगानिस्तान के प्रतिद्वंदी का सामना करेंगे। शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल मेंस कैटेगरी के व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन, पार्थ मान्य और रुद्रांश पाटिल निशाना साधेंगे। पुरुषों के स्कीट इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन टीम फाइनल के पहले दिन अनंतजीत सिंह नारूका, भवतेक सिंह गिल और मैराज अहमद खान की चुनौती होगी। इसी इवेंट के महिला वर्ग में महेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल के साथ साथ रायजा ढिल्लन निशाने साधेंगी। महिला टेबल टेनिस में भारत का सामना ग्रुप एफ में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। तैराकी में पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक के हीट 2 में ऋषभ दास और श्री हरि नटराज स्विमिंग पूल में होंगे। पुरुष फ्री स्टाइल के हीट 2 में आकाश मणि उतरेंगे। हीट 4 में गीतेश हीरशाह भारत की चुनौती रखेंगे। पुरुषों की ब्रेस्ट स्ट्रोक में हीट 1 में दानुष सुरेश उतरेंगे। पुरुषों की 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले के हीट 2 में वेदांत माधवन, दक्षिण शशि कुमार, अनीश गौड़ा और साजन प्रकाश की चौकड़ी होगी। MMA के महिला ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में सूची का तरियाल ईरानी प्रतिद्वंदी से

0: मुकाबला करेंगी। हॉकी में भारतीय महिला टीम का सामना इंडोनेशिया से होगा। कबड्डी में पुरुष टीम का ग्रुप ए में जापान से मुकाबला होगा। महिला टीम ग्रुप ए में बांग्लादेश के साथ दो दो हाथ करेगी। वुशु में रोशिबीना देवी महिलाओं के 60 किलो वर्ग के राउंड ऑफ 16 में बांग्लादेश की खिलाड़ी का सामना करेंगी। बॉक्सिंग में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में पहले मैच में सुमित थाईलैंड के सिंसिरी का सामना करेंगे। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम की टक्कर पाकिस्तान से होगी।
1: तो अब बात करते हैं मेडल्स टैली की। चाइना 11 गोल्ड 6 सिल्वर और 3 ब्रोंज के साथ कुल 20 मेडल्स जीतकर टॉप पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर जापान है जिसके पास भी कुल 20 मेडल्स हैं, लेकिन 6 गोल्ड 7 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ वे चाइना से पीछे है। तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है जिन्होंने 4 गोल्ड 3 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ कुल 14 मेडल्स अपने नाम किए हैं। वहीं अगर भारत के प्रदर्शन पर नजर डालें तो भारत फिलहाल 10वीं पोजीशन पर बना हुआ है, जहां भारत के खाते में अभी तक कुल 2 सिल्वर मेडल्स आए हैं और देश को अभी अपने पहले गोल्ड का इंतजार है।
0: तो भारतीय खिलाड़ियों की जीत की ये शुरुआत तो बस एक झांकी है, पूरी कहानी तो अभी बाकी है। हमारे पदक वीरों को आपकी दुआओं और चीयर्स की जरूरत है। अब जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। कल सुबह 9:30 बजे हर घंटे हम आईची नागोया एशियन गेम्स की हर अपडेट के साथ हाजिर होंगे। फिर रात 10 बजे दिन भर की रिपोर्ट लेकर उपस्थित होंगे। अभी प्रोग्राम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश और अमिशा पटेल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2000 श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा।
3: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के चौथे संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा पानी संकट से सुरक्षा तक। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र किशोर। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
4: कहते हैं जल है तो जीवन है, लेकिन भारत जैसे देश में पानी की कहानी सिर्फ जीवन की कहानी नहीं है। ये खेती की कहानी है, गाँव की अर्थव्यवस्था की कहानी है, महिलाओं के श्रम की कहानी है, स्वास्थ्य की कहानी है और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की कहानी भी है। पिछले 25 वर्षों में श्री नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन को देखें तो जल प्रबंधन का विषय उनकी प्रशासनिक यात्रा के महत्वपूर्ण पहलुओं में रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के अंतर्गत चर्चा करेंगे 25 वर्ष पानी संकट से सुरक्षा तक। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं स्टूडियो में राष्ट्रीय जल मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र किशोर। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
5: नमस्ते
6: जी, धन्यवाद।
4: अशोक जी, सबसे पहले आपसे पूछा जाए तो जल क्षेत्र में आपका लंबा अनुभव रहा है। मोदी जी की जो गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर जल सुरक्षा के अंतर्गत किए गए उपायों को आप किस तरह से आंकते हैं?
5: धन्यवाद। पहले मोदी जी को बधाई 25 ईयर्स कम्प्लीशन करने के लिए। मोदी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, पावर, रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर सब में इकोनॉमी में क्या है, बट जो वाटर सेक्टर में जितना योगदान किया है, बहुत बड़ा योगदान उन्होंने प्रधानमंत्री और सीएम के तौर पे किया था। बेसिकली उनके जो फिलॉसफी थे वाटर के बारे में, ये वाटर एक बुनियादी रिसोर्स है जिसको हम मानते थे पहले कुदरत की देन है, तो हमेशा आते रहते हैं, बट उसको भी संभालना है, उसको डेवलप करना है। ये उन्होंने 2001 में जब सीएम गुजरात बने थे तब से वो शुरू कर लिया था। कच्छ में वो पानी लेके उसको अच्छा वो खासा बनाया, ग्रीनरी बनाया, वहां पे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया था। और इनफैक्ट अनरिलेटेड सेक्टर जो हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में एक ग्राम ज्योति योजना किया था उसने, दैट इज एक्चुअली फॉर सेपरेशन ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चर फीड लैंड। उसका भी प्रभाव वाटर में पड़ा था। प्रधानमंत्री के नाते भी इन्होंने यहाँ के 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन भी किया था। जल का मैनेजमेंट तो अनेक छोटे छोटे साइलोस में बांटे हुए थे। उन्होंने 2019 में सबको एक ही अम्ब्रेला के अंडर में लाके एक नया दिशा दिया था। इंस्टीट्यूट, मेजर इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट था मिनिस्ट्री ऑफ जल।

0: मंत्रालय बना के, और ये बहुत बड़ा कदम साबित हुआ और इससे धीरे धीरे बदलाव भी आ रहा है। अमरेंद्र जी, आपने जो गुजरात के जल संकट को बहुत करीब से देखा है, तो गुजरात जैसे राज्य में जहां कई क्षेत्रों को लंबे समय तक पानी की कमी से जूझना पड़ा था और उसे दूर करा जब मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी, और फिर यही सोच वे राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आए और उन्हीं जो प्रोग्राम से, उन्हीं जो मिशन थे उसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया, तो इस दृष्टिकोण का क्या महत्व है आप देखते हैं?
1: देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक प्रयोगधर्मी व्यक्तित्व हैं, लगातार प्रयोग करते हैं और उनका प्रयोग बड़ा सफल रहता है। गुजरात को मैंने बहुत ही करीब से देखा है और बार बार देखा है। वहाँ की जो जल समस्या रही है या आज थोड़ी बहुत जो भी है, वही राष्ट्रीय स्तर पर वही समस्या मौजूद है और उन चीजों को, उन मुद्दों को सही तरीके से वहां पर लागू किया जाता है। जैसे देखिए, गुजरात में है कि कच्छ का एक युगीन सूखा है, आप जानते हैं, जमाने से चला आ रहा है, ये नहीं कि वहां पर किसी तरीके का कुछ असंतुलन पैदा हुआ। दूसरा है, सौराष्ट्र में पानी की लगातार कमी रही है। तीसरा है, उत्तर गुजरात में जो भूजल का दबाव है आबादी की वजह से, वो भी है। और चौथा जो है, वो हर जगह आप देखने को मिलता है पूरे भारत में, जो तटीय इलाका है, समुद्र तटीय इलाका, खारे पानी की समस्या है। इन सारी समस्याओं को बहुत ही करीब से देखकर, समझकर जो नीतियां बनी गुजरात में, वही राष्ट्रव्यापी बन गया। कोई भी नीति हो, कोई भी योजना हो, जब राज्य से चलकर केंद्र तक पहुंचे, न कि केंद्र से चलकर राज्य तक पहुंचे, तो वो पैरासूट अप्रोच तो है नहीं। आम आदमी की जो समस्या है, वही राज्य की समस्या को ही आम आदमी की समस्या कहते हैं। मामले को आइडेंटिफाई करके जिस तरीके से उन्होंने चीजों को परिवर्तित किया और फिर पानी की समस्या सुलझती चली गई। एक उदाहरण मैं शुरुआत में ही मैं दे दूं कि कच्छ का जो नमक इलाका है, नमक जहां से पैदा होता है, जहां नमक की खेती होती है, वहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। भूजल का आप प्रयोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि नमक बनाने के काम में आता है वो, और वो पानी जो है वो समुद्र के पानी से 6 गुना ज्यादा खारा है, पीने लायक तो है नहीं। लेकिन और अंग्रेजों के समय की जो व्यवस्था थी, पाइपलाइन से, मिट्टी के पाइप से जो है पानी की आपूर्ति हो, तो नरेंद्र मोदी जी जब वहां पर मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पानी की आपूर्ति शुरू की नमक किसानों के लिए, और एक परिवार को जो भी पानी मिलता है उससे उनके जीवन की एक आस बनी रहती है और उनके जरूरतों को पूरा हो जाता है इस तरह का। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है जो अक्सर सुनने को और पढ़ने को नहीं मिलता है। ये मेरा अपना अनुभव, मैंने देखा है और सच में ये सराहनीय कदम रहा।
0: जी,
1: आज आप केंद्र स्तर पर पूरे देश में पानी को लेकर जिस तरीके का की उपलब्धि हुई है नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, लेकिन वो शुरुआत वहीं से हुई। बहुत संजीदगी से चीजों को समझना एक बहुत बड़ी बात होती है।
0: जी हाँ, खासकर जो नमक की खेती कर रहे हैं, सारा दिन पानी में रह रहे हैं लेकिन उनको पानी नहीं मिल पा रहा क्योंकि वहाँ का पानी खा रहा है, और ऐसे परिवारों तक आप पीने लायक पानी पहुँचा रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर सराहनीय और बहुत ही पावन कदम।
1: और आप देखिए ना, पानी, नमक की जो खेती होती है वो एक व्यक्ति की खेती नहीं होती है, पूरे परिवार की संबद्धता उसमें होती है। पूरे परिवार को पानी मिल जाए, ये कितनी बड़ी बात होती है, जीवन रक्षा की बात हो गई।
0: आइए सुनते हैं एक विशेष रिपोर्ट जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए।
2: गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल वर्ष 2001 से 2014 के दौरान जल संरक्षण को राज्य की प्रमुख विकास प्राथमिकताओं में शामिल किया गया। उस समय सरकार ने पानी की कमी और गिरते भूजल स्तर से निपटने के लिए बारिश के पानी को रोकने, भूजल रिचार्ज करने और नर्मदा के पानी को सूखे क्षेत्रों तक पहुँचाने पर विशेष ध्यान दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में जल संरक्षण के लिए चेक डैम, तालाबों की गहराई बढ़ाने और अन्य जल संचयन संरचनाओं का बड़े स्तर पर निर्माण किया गया। गुजरात के नर्मदा जल संसाधन, जल आपूर्ति और कल्पसर विभाग के अनुसार मार्च 2013 तक राज्य में 76,477 चेक डैम बनाए गए थे। विभिन्न योजनाओं को मिलाकर जल संसाधन विभाग के तहत चेक डैम की कुल संख्या 88,312 तक पहुंच गई थी। चेक डैम का उद्देश्य बारिश के पानी को बहकर समुद्र में जाने से रोकना था। इनसे पानी कुछ समय तक जमा रहता है और धीरे धीरे जमीन में उतरता है। इससे कुओं और बोरवेल में पानी का स्तर बढ़ाने तथा सिंचाई की सुविधा सुधारने में मदद मिलती है। इस अभियान में सरदार पटेल सहभागी जल संचयन परियोजना की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें सरकार के साथ स्थानीय लोगों, सामाजिक संस्थाओं और लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इस मॉडल के तहत सरकार और

0: भारती मिलकर चेक डैम तथा अन्य जल संरचनाएं तैयार करते थे। गुजरात की दूसरी प्रमुख योजना थी सुजलाम सुफलाम योजना। राज्य सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य मध्य और दक्षिण गुजरात के अपेक्षाकृत अधिक पानी वाले क्षेत्रों से अतिरिक्त पानी को उत्तर गुजरात के पानी की कमी वाले इलाकों तक पहुंचाना था। योजना में सिंचाई, जल संचयन और पेयजल तीनों पर ध्यान दिया गया। इस योजना के तहत लगभग 332 किलोमीटर लंबी सुजलाम सुफलाम स्प्रेंडिंग नहर विकसित की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय की एक आधिकारिक जानकारी में कहा गया था कि सुजलाम सुफलाम योजना के तहत तालाबों की गहराई बढ़ाई गई और लंबे रिचार्ज चैनल बनाए गए ताकि बारिश का पानी समुद्र में ना जाए और भूजल का स्तर सुधरे। इसके अलावा नर्मदा परियोजना को आगे बढ़ाना भी गुजरात की जल नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसका लक्ष्य सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात के सूखे क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल पहुंचाना था। बाद के वर्षों में नर्मदा जल को बड़ी संख्या में तालाबों और जलाशयों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी विकसित की गई। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में गुजरात का जल संरक्षण मॉडल तीन प्रमुख आधारों पर टिका था: बारिश के पानी का संचयन, भूजल का पुनर्भरण और बड़े जल स्रोतों से सूखे क्षेत्रों तक पानी पहुंचाना। चेक डैम, तालाब, रिचार्ज नहरों और जन भागीदारी के जरिए राज्य में पानी की समस्या से निपटने का एक व्यापक प्रयास किया गया।
1: अशोक जी, एक समय था जब गुजरात सूखा प्रभावित क्षेत्र था। पीने के पानी का 80% हिस्सा भूजल निकालकर पूरा किया जाता था। और उधर जब बरसात की बात करें तो बरसात के मौसम में नर्मदा का जो अतिरिक्त पानी आता था समुद्र में चला जाता था। फिर लाई गई सौसरी नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना यानी सौनी योजना, और इसने गुजरात विशेषकर जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है उसकी तस्वीर, आप क्या मानते हैं, किस तरह से बदल दी?
2: वाटर की समस्या में, वाटर सिक्योरिटी में दो चीज प्रभावित करते हैं, एक तो वाटर क्वांटिटी और एक वाटर क्वालिटी। जैसे आपने बताया वाटर क्वांटिटी की कमी थी वहां पे कच्छ के एरिया में, तो नर्मदा डैम तैयार करके उसके पापा वहां पानी ले लाया गया था। उन्होंने उस समय ये जो आपने बताया सौनी योजना शुरू किया था, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरीगेशन स्कीम, उसमें बेसिकली वो नर्मदा के एक्सेस वाटर को, फ्लड वाटर को तकरीबन 100 से ज्यादा डैम्स बना के उसमें स्टोर करने की कोशिश की थी एंड बहुत सक्सेसफुल हो गया था। उस समय आंकड़े बताते हैं कि 77% इंक्रीज इन इरिगेशनबल एरिया हो गया और ऑलमोस्ट 55% ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो गया था। तो ये सक्सेसफुली वहां पे इम्प्लीमेंट होने के बाद एज ए मुख्यमंत्री ही अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ सेविंग गुड वाटर एंड कलेक्टिंग गुड वाटर। तो रेन वाटर जो आप बोलते हैं ना, बाद में एज प्रधानमंत्री उन्होंने कैच द रेन कैंपेन शुरू किया था, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कैंपेन, ये तो जन भागीदारी से के। तो टू और थ्री इम्पोर्टेंट जो पहलू है इनके जो वाटर के अप्रोच में, एक तो जन भागीदारी है। प्रधानमंत्री हमेशा बोलते रहते थे कि जल आंदोलन है, जन आंदोलन होना चाहिए, सबको मिला के काम करने से ही फायदा होता है। एंड सेकंड वन वाज डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज। ये तो हम डैम बनाते, नर्मदा डैम उन्होंने कंप्लीट किया था और इनॉग्रेशन किया था, और उस समय हम मानते थे कि बड़े बड़े डैम ही हमारा मॉडर्न इंडियन का टेम्पल्स होता है। बट उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि एनवायरमेंटली बहुत इश्यूज होते हैं, सबमर्जेंस का इश्यू होता है, कभी कभी डैम्स जो हम जिसके बेसिस में हम बनाते हैं उतना फुलफिल नहीं होता है। बट जन भागीदारी से और डिसेंट्रलाइज अप्रोच से जब हम पानी का संचयन करने का काम शुरू करते हैं then everybody gets involved. ये कैच द रेन एग्जाम्पल है यहाँ पे। सो जहाँ पे बोलता है कि जो भी बारिश, जितनी भी बारिश आपके घर में, खेत में, कहीं भी आते रहते हैं, उसको संचय करके रखेंगे तो सबकी भागीदारी भी होता है और जहाँ पे पानी बरसते वहीं सेव करना है, क्योंकि उसमें थीम ये था कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। तो सबका डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर स्टोरेज, उन्होंने ये गुजरात में देखा था और यहाँ पे देश भर में लागू किया था। और आंकड़े बताते हैं पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 1 बकरानंगल डैम का जो 9 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी पिछले 5 साल में जन भागीदारी से संजय कर
1: स्टोर हो चुका है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अमरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँ, हम सौनी योजना की बात करें थे तो सौनी जैसे जो बड़े वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट हैं, उसको आप जमीनी स्तर पर जल संरक्षण के साथ कैसे देखते हैं?
3: देखिए, गुजरात ने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ चेक डैम्स की जो बात अभी हुई, फार्म पॉन्ड्स और रिचार्ज स्ट्रक्चर जो बनाए गए, तो चेक डैम केवल पानी रोकने की संरचना नहीं है, मूलभूत जो बात

0: है वह है बहाव की गति को कम कर देना और भूजल में रिचार्ज करना। देखिए कुछ पानी तो वाष्पीकरण होता है, लेकिन ज्यादातर पानी, एक 10 फीट तालाब है गहराई का, तो उसमें 1.5 फीट पानी नीचे जाता है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक धारणा है और ये सच्चाई भी यही है। स्वनी योजना के साथ जो सबसे अच्छी बात हुई है कि इसका उद्देश्य नर्मदा प्रणाली के पानी को सौराष्ट्र के जलाशयों और सिंचाई व्यवस्था तक पहुंचाना रहा है। और इसको बिल्कुल आम भाषा में यदि कहते हैं तो यह है नर्मदा के उपलब्ध पानी और पानी की कमी झेल रहे सौराष्ट्र के बीच में एक जल सेतु का काम किया है
1: जी।
0: और ये पूरे भारत में और कहीं नहीं आपको देखने को मिलता है। तो कोई योजना राज्य से इतनी ज्यादा प्रेरक हो जाए, ये सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता है। और गुजरात का अनुभव ये बताता है कि वाटर ट्रांसफर, एक जगह से दूसरे जगह जो आप भेजते हैं, तो उसके साथ साथ जल संरक्षण, जल संवर्धन और उसके वास्तविक उपयोग की बात होती है। पानी इकट्ठा कर लेना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पानी आप इकट्ठा कर ले रहे हैं, रन ऑफ वाटर को आप रोक ले रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग कैसे हो, आने वाला समय जो भविष्य जो है वो यही है कि वाटर बजटिंग का अब जमाना आ गया है, कि कैसे आप उन पानी की मात्रा को ज्यादा से ज्यादा बचा कर रखते हैं और कितना अधिकतम उपयोग करते हैं। ये गुजरात की ओर से दिया गया, पूरे राष्ट्र को एक दिया गया बहुत बड़ा उपहार।
1: बिल्कुल,
2: आई कैन सप्लीमेंट दैट, आंकड़े बताएंगे तो 115 डैम्स में पानी भरा गया था और ऑलमोस्ट 1,84,000 चेक डैम्स और 3,27,000 फार्म पॉन्ड्स को रिजुविनेट किया गया था। इतना बहुत बड़ा संख्या है। एंड जैसे आपने बताया, ये जो फार्म पॉन्ड्स और चेक डैम से जल स्तर भी बढ़ता है, वो सबके लिए यूजफुल भी होता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे गुजरात के जब भूजल की हम बात कर रहे हैं, तो भूजल का जो बहुत प्रयोग होता था, पानी की कमी थी, जल संकट था, लेकिन जब सोच बदली और इसका दोहन कम किया गया, तो गुजरात विशेष रूप से जो राज्य के उत्तरी क्षेत्र में भूजल स्तर का जो स्तर है उसे ऊपर उठाने में एक योजना शुरू की गई, सुजलाम सुफलाम। तो ये किस तरह से कारगर सिद्ध हुई?
2: सुजलाम सुफलाम अगेन, दैट इज अगेन अ वेरी इनोवेटिव स्कीम जो वाटर टेबल बढ़ाने का कार्यक्रम किया था। एंड उसमें काफी हद तक पर्टिकुलरली इन नॉर्थर्न गुजरात में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स तैयार करके लोगों जन भागीदारी से वाटर टेबल बढ़ाने का कार्यक्रम किया, वो वेरी सक्सेसफुल भी रहा था।
1: जी हाँ। तो अगर अमरिंदर जी आपसे जानना चाहूँ, जी सुजलाम सुफलाम है और चेक डैम्स की हमने खैर बात ही की है, तो ऐसे प्रयासों से गाँवों में क्या वास्तविक बदलाव पैदा होता है और ऐसी कहानी या उदाहरण आपको याद हो जो आप इस उसको बदलाव का उदाहरण मानते हैं?
0: पूरा गुजरात ही बदलाव का उदाहरण है, लेकिन आप भौगोलिक रचना देखें, संरचना कहिए, तो उत्तरी गुजरात का जो हिस्सा है वो भूजल के मामले में कमजोर रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दोहन हुआ उसका पहले से ही, क्योंकि उसके जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां भी पानी की समस्या रही है। अब देखिए, सुजलाम सुफलाम जो योजना है, ये जल प्रबंधन को स्थानीय गांव की सीमा से बाहर निकालकर, एक तो गांव का पानी हो गया, लेकिन उस सीमा से बाहर निकालकर रीजनल लेवल पे, क्षेत्रीय स्तर पर देखने की एक कोशिश की गई है। और ये कोशिश ही नहीं, एक सफल कोशिश है, उपलब्ध जल को, उपलब्ध पानी की वाले इलाके को वहां तक पानी पहुंचाना, चाहे वो पाइपलाइन से हो या नहर से हो या जलाशय से हो, और रिचार्ज जैसी व्यवस्थाएं सुजलाम सुफलाम में है। नाम से ही लगता है कि हाँ, हरितिमा है, हरियाली है। तो ये सफल रही है योजना, और इसका मूल संदेश जो रहा है, सफल संदेश है, वो यही कि जहाँ पानी उपलब्ध है उसे वहां तक पहुंचाया जाए जहाँ उसकी जरूरत अधिक है। बहुत बड़ी बात है, संवेदनशीलता है। देखिए, पानी को लेकर जब तक आपके अंदर में हार्दिक श्रद्धा नहीं हो, अंदर संवेदनशीलता नहीं हो, ये सरकार के लेवल पे ही चीजें नहीं होती हैं। सरकार ने एक अच्छा प्रयोग किया और लोगों को बताने में, लोगों को जताने में सरकार सफल रही है कि पानी की जरूरत जो है उसके आखिरी प्रयोगकर्ता, उपयोगकर्ता आप हैं। आम जनता ने इस बात से, क्योंकि पानी की परंपरा रही, आप उदाहरण देखें तो पानी की परंपरा रही है, तो आम जनता तक उनके ज्ञान को, लोक ज्ञान को फिर से पुनर्जीवित करना एक बहुत बड़ी बात है। पानी का दुरुपयोग वहां गुजरात में मुझे देखने को कहीं नहीं मिला, राज्य के कम 17 जिलों में मैंने देखा है। उस तरह की स्थिति नहीं है कि पानी का दुरुपयोग हो रहा है। तो खेती में सबसे ज्यादा पानी का उपयोग खेती में है, वहां पर बचाकर पानी को रखना, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, ये सुजलाम सुफलाम योजना की एक बहुत बड़ी सफलता है। और इस तरह से जो योजना सफल रही है, इसमें सरकार और आम जनता का सामंजस्य रहा है। और किसी एक इलाके की बात आप क्या करेंगे, उस पूरे इलाके में गांव के गांव आज हरियाली में, हरियाली का आनंद ले रहे हैं।
1: बिल्कुल पारंपरिक, आपने जैसे जल संरक्षण की बात की, तकनीक होती थी हमारे देश में, इतिहास रहा है, जैसे टांका है, बावड़ी है, कुंड है, कुएं है, तालाब, लेकिन बीच में ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी और

0: अगर देखें तो कई क्षेत्रों में इसके आपने कहा पुनर्जीवित किया जा रहा है, फिर से इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, और विशेष रूप से जब से प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में ऐसे उपायों का, ऐसे जो एग्जाम्पल्स हुए हैं उनका जिक्र किया है, तो इन प्रयासों में और तेजी आई है।
1: बिल्कुल, और गुजरात ही नहीं, गुजरात के लोगों को प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि देवास में क्या हो रहा है, किसी और इलाके में क्या हो रहा है। वहां पर भी एक आम जनता की जो जिम्मेवारी बनी और जिस तरीके से उन्होंने उसका तरीके से निर्वाह किया, तो पूरे मुल्क को, पूरे देश को वो बता रहे हैं कि पानी आपका अपना संसाधन है, इसे बचाइए, इसे तरीके से खर्च कीजिए और इसे बढ़ाइए।
0: जी अशोक जी, आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि जल संरक्षण में कई मुख्य बिंदु हैं और उनमें से एक है जन भागीदारी, तो ऐसे ही दिशा में गुजरात में भी कदम उठाए गए। जैसे हम वास्मो और पानी समितियां की बात करते हैं, तो उनके माध्यम से जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को महत्व दिया गया, तो इस मॉडल में ऐसा क्या रहा जिसने पानी की व्यवस्था से जो गांव है और जो समुदाय है उनकी भूमिका को इतना मजबूत कर दिया?
2: देखिए, ये एक बुनियादी ट्रांसफॉर्मेशन लाया उन्होंने। हम क्या करते थे, सब जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ देते थे, ये सरकार का काम है, हमारा काम नहीं, हमारा काम उपयोग करना है, दैट इज दी एटीट्यूड। बट यहाँ पे हैबिटेशन वर्स ड्रिंकिंग वाटर कमिटीज या जो पानी पंचायत और वाटर यूजर्स का एसोसिएशन बनाया था, उसको वाटर के मैनेजमेंट में हिस्सेदार बनाया था मोदी जी ने उस समय SCM, तो लोगों को भी लगा कि देखो काम हो रहा है, हमारे भी एक हिस्सा है, हमको भी इन्वॉल्व करना है, एंड उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया। और ऐसा नहीं कि खाली पेपर में उसको एक जगह पे बिठा दे, तुम यहाँ बैठो, तुम इसका जो भी है डिसिग्नेशन हो, काम हम करते रहेंगे, डिसीजन हम करते रहेंगे, ऐसा नहीं था। उन्होंने जिसको पद पर बिठाया था उसको डिसीजन देने का भी पावर दिया था और इम्प्लीमेंटेशन का भी पावर दिया गया था। इसमें क्या होता कि एक ओनरशिप आ गया, लोगों को जो भागीदारी से वो आगे आकर पानी के बचत का काम किया, उनको भी लगा कि ये हमारे लिए कर रहे हैं और हमको इसमें इन्वॉल्व होके एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे काम करना है, उसने किया गया। तो ये इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जो मोदी जी ने किया बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ कि मोदी जी ने पानी को अनेक रूप होते हैं, मतलब पानी बहते पानी नदी में जाते हैं, वो स्टैगन वाटर तो लेक में होते हैं, कुएं में होते हैं, पॉन्ड्स में होते हैं, फिर रेन वाटर है, वो बारिश गिरते रहते वो रेन वाटर होते हैं, आइस होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, और वेस्ट वाटर भी होते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत सारा पानी जो इंडस्ट्रियल में वेस्ट में जाता था और उसको ट्रीट करके हम दूसरे तरफ प्रयोग कर सकते थे, तो ये एक नया सोच था और सर्कुलर इकोनॉमी, उन्होंने वहां पे भी ये रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर का भी यूज किया था। तो जिम्मेदारी इंडस्ट्रीज पर फिक्स किया गया कि आपको जो पानी यूज करते हैं उसका रिड्यूस करो, रिड्यूस नहीं कर सकते उसको कम से कम ट्रीट करके रीयूज करो। तो ये ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन कम करने का और सरफेस वाटर एक्सप्लॉयटेशन करने का जो प्रयोग उन्होंने किया, दैट इज वेरी वेरी सक्सेसफुल।
0: रीयूज ऑफ वाटर के ऊपर दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जब मैं फिलहाल समितियों की जन भागीदारी की बात कर रही हूँ, तो जो पानी समितियां जैसे गांव जल और स्वच्छता समिति की जो अवधारणा है, उसे आप किस तरह से देखते हैं अमरेंद्र जी? और अगर हम देखें तो क्या पानी की व्यवस्था तभी टिकाऊ बनती है जब गांव खुद उसके संचालन और रखरखाव की जो जिम्मेदारी है स्वयं उठाए?
1: देखिए, गोंड लोगों का जब शासन था मध्य प्रदेश में, तब से तालाब की और पानी की एक परंपरा रही है जो इतिहास मैंने पढ़ा है। गुजरात में जो प्रयोग हुआ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसे हम एक वाक्य में कहें तो जल सुधार कह सकते हैं। पानी को सरकार और आम जनता की साझेदारी की जो संस्कृति विकसित हुई है वो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुई है। ये जो जल सुधार का जो महत्वपूर्ण प्रयोग रहा है, उसमें इस बात का जोर रहा है कि ग्रामीण पेयजल केवल सरकारी इंजीनियरिंग का विषय नहीं रहे, बेयरफुट प्लम्बर पैदा हुए, बहुत बड़ी उपलब्धि है जो अमूमन आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। मैंने देखा है उन इलाकों में, कई गुजरात के कई रिमोट एरिया में देखा कि वहाँ बेयरफुट प्लम्बर हैं, जल का उनको ज्ञान भी है, वो लोक ज्ञानी भी हैं, और गांव को स्वयं अपनी जल व्यवस्था करनी है, जिम्मेवारी सौंपी गई, उत्तरदायित्व, सारा काम नौकरशाही कर दे और सरकार कर दे नहीं। और जब तक उत्तरदायित्व की भावना नहीं आएगी, स्वामित्व की भावना नहीं आएगी, तब तक आप जल जैसे संसाधनों को एक व्यवस्था में लाकर उसे अनुशासित नहीं कर सकते हैं। इस जल व्यवस्था में जो कम्युनिटी ओनरशिप जिसकी मैंने बात की है और स्थानीय जन भागीदारी और जवाबदेही, यह एक अवधारणा मजबूत हुई है। गुजरात एक बहुत बड़ा प्रेरक रहा है इस मामले में, और यही सोच बाद में राष्ट्रीय स्तर, जो हमारे डिस्कशन की शुरुआत जो हुई और आपने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आया, यह वही योजना जो बाद में जल जीवन मिशन में दिखाई देती है, जहां पानी समिति को ग्राम पंचायत की उप समिति के रूप में

0: हाकत भूमिका दी गई। देखिए पानी पंचायत तो उड़ीसा में भी देखने को मिला, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से, अनुशासित ढंग से लाकर और उसका आउटकम निकालना, उसका रिजल्ट निकालना इतना आसान काम नहीं था। गुजरात इस मामले में अग्रणी जरूर है।
1: बिल्कुल, और जो नामुमकिन लगने वाले काम को मुमकिन बनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही खासियत है। अशोक जी, अगर हम अभी हम रीयूज ऑफ वाटर की बात कर रहे थे, ग्रे वाटर मैनेजमेंट जो आजकल बहुत ही बड़ा विषय बना हुआ है, और पानी को दोबारा उपयोग में लाना, अगर आम जनता को बताए कितना महत्वपूर्ण है और वे क्या कर सकते हैं इस दिशा में?
2: Reuse of water, grey water is an important mudda hai. But I would say that more than reuse of grey water, humko what we should look at is reuse of all treated water. Sewage water ko bhi treat karke wapas upyog la sakte hai. Kyunki dekha jaye to India mein 85-89% water usage agriculture mein hota hai, waste mein hota hai. To उस पानी को एक अच्छे लेवल पर ट्रीट करके हम सिंचाई के लिए हम यूज करते हैं, तो जो एक्सट्रैक्शन फ्रेश वाटर रिवर्स या और ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होता है वो कम होता है। भले अब व्हेन इट कम्स टू द ग्रे वाटर, ग्रे वाटर जनरली नॉट स्वेज वाटर, वो जो हमारा घर का पानी ये सब को रीयूज करने का, उससे ज्यादा सेविंग ज्यादा होता नहीं, बट हद बूंद जो बचा है वो अच्छा है
1: जी।
2: उसी तरह से हमको इन्वॉल्व करना है, और क्योंकि रीयूज ऑफ ग्रे वाटर में अभी जो घरों में प्रॉब्लम है टू रिट्रोफिट डुअल पाइपलाइन ऐसा कुछ करना है, बट अगर इफ वी आर मेकिंग ए पॉलिसी दैट आगे के जो भी हाउसेज आते हैं उसमें डुअल पाइप लगाए और लोकल एरिया में ग्रे वाटर को ट्रीट करके यूसेस में लाइक फॉर इरिगेशन पर्पसेस या फॉर आवर लॉन्स के लिए या पानी धोने के लिए कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए ये यूज कर सकते हैं, तो ये जो अच्छे वाटर का जो वेस्ट कर वो कम कर सकते हैं। तो रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीयूज ऑफ ग्रे वाटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट आई वुड से दैट रीयूज ऑफ ब्लैंक बिगर थिंग, रीयूज ऑफ ऑल ट्रीटेड वाटर फॉर अप्रोप्रिएट पर्पसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: जी हाँ बिल्कुल है, और इसमें जन भागीदारी चाहे वो गांव हो शहर हो सबको निभानी पड़ेगी, क्योंकि आरओ का पानी जो इतना वेस्ट होता है उसको भी आप बहुत ही आसानी से रीयूज कर सकते हैं। अशोक जी, जल जीवन मिशन मोदी जी की मुझे लगता है कार्यकाल की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और नल से जल पहुंचाना ये बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि गांवों में जहां महिलाओं को दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था, भर के लाना पड़ता था, तो इस योजना ने उनके समय को, उनके रोजमर्रा के काम को बहुत ही आसान कर दिया। और एक आंकड़े के मुताबिक देश की कुल 19 करोड़ 35 लाख से अधिक जो ग्रामीण परिवार हैं, उनमें से 81% से अधिक परिवारों तक नल से जल की आपूर्ति हो रही है। तो आपके अनुसार ये आंकड़े क्या तस्वीर पेश करते हैं?
2: ये एक आई वुड से अनइमेजिनेबल सीमिंगली इम्पॉसिबल टास्क को अचीव किया है। जब मोदी जी 2015 में वो जो स्वच्छ भारत मिशन का ऐलान किया था रेडफोर्ट से, दैट वाज एडिंग एस वाटर क्वालिटी एस्पेक्ट, उसमें हम बाद में आएंगे। और जब पानी का जो टॉयलेट्स बन गया और वाटर बॉडीज खराब नहीं हो रहा था, देन ही मूव्ड ऑन टू प्रोवाइडिंग गुड ड्रिंकिंग वाटर टू दी फैमिलीज बी रिलीजियस। देखा जाए तो हर गाँव में महिलाओं पर जिम्मेदारी पड़ती है कि वो पानी कहीं से भी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल के सर पर रखे आए और कुकिंग के लिए यूज करे, वो पानी की जिम्मेदारी उस पर होता है। और महिलाओं को और एक इस वाटर में इम्पोर्टेंस आता है कि वाटर बॉर्न डिसीजेस का प्रभाव भी उस पर भी ज्यादा पड़ता है। बच्चों पे डायरिया केसेस आते हैं और वाटर बॉर्न डिसीजेस का जो भी तकलीफ उठाना पड़ता है वो लेडीज को ज्यादा पड़ता है। इसलिए जब 2019 में मोदी जी जल जीवन मिशन एक वंडरफुल विजन ऑफ प्रोवाइडिंग जल एट द हाउस ऑफ द वुमन, हाउस ऑफ फॉर द वुमन, गिव सेविंग दम टू इम्पोर्टेंट थिंग्स। वन, ए ड्रजरी ऑफ वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस, 5-6 किलोमीटर उसका टाइम सेविंग हो गया। सेकेंड, अच्छा पानी, पीने का पानी, पीना योग्य पानी आपके घर में मिल रहा था, तो उनका जो हेल्थ बर्डन जिसकी वजह गंदा पानी की वजह से जो होता था वो कम हो गया, एंड दैट लेड टू द सेविंग्स ऑफ द मनी विच यूज टू गो फॉर फॉर मेडिसिन एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो द डेज फॉर लेबर लॉस्ट। ये बहुत सारा आर्थिक और हेल्थ और सोशल जो डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट उसको हुआ, दैट वॉज ए ग्रेट सक्सेस। एंड दैट इज वाई प्रॉब्ली पीपल इन द वर्ल्ड, व्हेन आई हैड गॉन टू द वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस ऑल इन यूएन, दे वर नॉट एक्चुअली विलिंग टू बिलीव दैट हमें कर पाया, इतना बड़ा काम कैसे कर सके, बिकॉज इट रिक्वायर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर ले करना पड़ता है। और जो आंकड़े बताया आपने 81% अभी कंप्लीट हुआ है, आगे बढ़कर हाउ उसको मैनेजमेंट करने का, उसका जैसे गुजरात में किया

0: था, दैट वाटर टैप का, प्लम्बर्स का, लोकल का करना, ये सब जल जीवन मिशन का हिस्सा है एंड दैट वाज अ ग्रेट सक्सेस।
1: जी अमरेंद्र जी, गुजरात के अनुभव से लेकर जल जीवन मिशन तक क्या आपको पानी के मुद्दे में एक बदलाव दिखाई देता है जहाँ फोकस पानी पहुँचाने से जल सुरक्षा की ओर बढ़ा है?
2: जी हाँ, राज्य के जो पुराने अनुभव हैं और केंद्र के जल जीवन मिशन ने एक दूसरे में जुड़ाव है, जुड़ गए हैं और उससे पानी की यात्रा बड़ी सफल दिख रही है। और जहां तक बात आगे के लिए है तो जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो जन सहभागिता है और स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन है, इसकी जो अवधारणा जो थी वो बिल्कुल, उसकी संस्कृति जो विकसित हुई, वो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की सोच को, जो जल के जो संकाय हैं, जल संकाय जिसको कहते हैं वाटर बॉडीज या जो भी, तो 2019 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक स्पष्ट मिशन का रूप ले, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को आज का नहीं देखना है, आने वाले 25 सालों का देखिए, जो बहुत ही वो चुनौतीपूर्ण होगा पूरे विश्व के लिए। देखिए अगला विश्व युद्ध पानी के लिए और मिट्टी के लिए ही होगा, तो उसमें ये बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा होगी। लेकिन शुरुआत जो हुई है भारत में वो बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और अब ये केवल नल से पानी पहुंचाने की बात नहीं है, चुनौती है नल में नियमित पानी हो, पानी की गुणवत्ता हो और सुरक्षित जल स्रोत हो।
1: जी
2: चुनौती यही है,
1: यही चुनौती है और इसी चुनौती पर हमें खरा उतरना है, इससे निपटना है। और
2: जितना पानी आप निकाल रहे हैं उतना पानी तो जाना ही चाहिए,
1: जाना ही चाहिए। और उसमें जन भागीदारी बहुत ही महत्व रखती है। अशोक जी, आपने जैसे मोदी जी के नेतृत्व में वर्षा जल संचयन के लिए कैच द रेन मुहिम की शुरुआत की, आपने शुरुआत में इसका जिक्र भी किया, तो आप इस मुहिम को किस तरह से देखते हैं?
0: This is a wonderful decentralized democratic way of storing water. पहले हमारा सोच था कि हम पानी को जो हम भी बरसते उसको कहीं लेके जाके डैम बना के वहां से फिर पंप करके वापस सिंचाई के लिए यूज करें। बट कैच द रेन टैगलाइन विद वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, पानी जहां बरसते हैं वहीं वहीं को उसी को सेव करना है और ग्राउंड वाटर वहां पे करना है। तो इसके बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स जुड़े हुए हैं। एक तो डिसेंट्रलाइजेशन का है, बिकॉज हर घर में हर खेत में पानी सेव कर सकते हैं। सेकंड पार्टिसिपेशन, हर व्यक्ति, बूढ़ा, बच्चा, महिला, मर्द, सब इसमें भागीदारी ले सकते हैं और अपने घर में, अपने आंगन में जो भी बारिश आते है उसको अगर संचय करके रखेंगे तो वाटर टेबल्स उसका बढ़ जाते हैं और हमारा एनर्जी भी सेविंग हो जाता है। क्योंकि पहले हम देते थे कि ग्राउंड वाटर को पंप करने के लिए मोटर यूज करते थे, 2 HP मोटर, 5 HP मोटर, 10 HP मोटर तक किया। अगर हम वाटर सेव करेंगे तो जल स्तर ऊपर हो जाता है और एनर्जी का भी सेविंग होता है। तो दिस इज अ वेरी बिग मूवमेंट इन्वॉल्विंग पीपल टू सेव कैच द रेन।
1: जी अमरेंद्र जी, कैच द रेन जो मूवमेंट था, मतलब उस दिशा में बहुत ही कदम उठाए गए हैं, तो आपने क्या क्या बदलाव देखे हैं इस मुहिम के बाद कि लोगों की थॉट में, लोगों के विचारों में, लोगों के प्रयासों में किस तरह से बदलाव आया है?
2: देखिए ये अवधारणा तो नई तो है नहीं, लेकिन जो हाल के वर्षों में जो बदलाव दिखा है वो यह है कि बारिश को बहने नहीं बचाने की सोच भी, ठीक है। दूसरी बात है कि इसलिए इसका अगला संदेश जो है, जो मुझे लगता है सरकार की प्रतिबद्धता है, आत्म प्रतिबद्धता, वो यही है कि पानी का इस्तेमाल खत्म होना, पानी की उपयोगिता खत्म नहीं होना चाहिए। कि पानी की उपयोगिता ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, विभिन्न स्तर पर होनी चाहिए, जैसे ग्रे वाटर का है या खेती के अलावा भी क्या उसका उपयोग हो सकता है। और देखिए कितनी दूरदर्शिता है मोदी सरकार की कि पानी की संभावना, पानी की मौजूदगी, कितना पानी है उसके अनुरूप प्रजाति की फसलें जो है वो विकसित की जाए, उनको एडॉप्ट किया जाए। जरूरी नहीं कि गेहूं से ही हम अपने खाद्य की आदतों में गेहूं को रखें, बाजरा का भी, जो मोटे अनाज है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, पानी के लिए भी अच्छा है। वाटर बजटिंग जो है आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनने जा रहा है। सरकार इस बात को बहुत ही तरीके से, बहुत गहराई से और बहुत विस्तार से इस बात को समझ रही है।
1: खेती बाड़ी में भी जल संरक्षण के अंतर्गत बहुत प्रयास किए गए हैं, पर ड्रॉप वाटर सेविंग करने के लिए, मतलब तो इस तरह से बदलाव को आप किस तरह से बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: इंडिया में 85-89% पानी की यूसेज एग्रीकल्चर में होता है, तो अगर हमको पानी बचाना है तो एग्रीकल्चर में बचाव चाहिए। हमारे यहाँ वाटर यूज एफिशिएंसी एग्रीकल्चर में 30% है, तो अगर हम उसमें या 10% का भी इम्प्रूवमेंट किया तो हमारे लिए बहुत पानी पीने के लिए मिल जाएंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने कई कार्यक्रम उसमें शुरू किया था। एक तो जैसे अप्रोप्रिएट क्रॉप्स का, लेस वाटर यूसेज क्रॉप्स का यूज करना है, देन PMKSY हर खेत को पानी का एक प्रोग्राम, जिसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर ड्रॉप का एक प्रयोग किया। इसलिए उन्होंने इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन

0: जोर दिया, ड्रिप इरिगेशन को बहुत प्रचार किया और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अप्रोप्रिएट क्रॉप्स का भी कर लिया और नया टेक्नोलॉजी को यूज करके वाटर की जरूरत के हिसाब से पानी को सिंचाई व्यवस्था करने के लिए इम्प्रूव इरिगेशन टेक्नोलॉजी का भी उन्होंने पुश दिया है। तो एग्रीकल्चर में इफ वी कैन इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी वी विल बी सेविंग अ लॉट लॉट लॉट वाटर।
1: जी हाँ, तो मोदी जी ने यही प्रयास किए हैं 25 वर्ष में कि खेती में भी कम पानी का प्रयोग हो, जल संरक्षण भी हो, गांवों तक भी पानी अच्छे से पहुंचे, नल से जल तक जो उनकी अवधारणा है वो भी कारगर से धो रही है और इस तरह से लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें भी बहुत बदलाव आ रहा है। तो जो पानी की कहानी है सिर्फ एक नल तक पहुँचाने वाले पानी की कहानी नहीं है, ये कहानी है पानी के स्रोत को बचाने की, हर बूंद को संजोने की। और मोदी जी के 25 वर्ष की जो जन सेवा की यात्रा में गुजरात में जल प्रबंधन से जुड़े प्रयासों से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन तक के प्रयासों ने जल सुरक्षा और जल उपलब्धता की दिशा में नई सोच और नए आयाम जोड़े हैं। अशोक जी और अमरिंद्र जी, आप दोनों स्टूडियो में आए और इस बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के चौथे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा पानी संकट से सुरक्षा तक। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र किशोर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब हम लेंगे छोटा संतराल।
4: टीकू जी, 100 ग्राम पेड़े देना।
5: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
4: अरे क्यों?
5: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
4: अरे भाई, आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
6: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
4: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
5: दे रे भाई,
7: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे से ही।
8: मैं तो चला। सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
9: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
8: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
9: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
8: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात ना करें।
9: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
8: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
10: ए भाई, जरा देख।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब से कुछ ही देर में समाचार क्रमशः हिंदी और फिर अंग्रेजी में हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
3: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
2: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजित किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताके हीरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है।
4: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
5: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच

0: विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
1: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स आईआईसीए ने आज मानेसर गुरुग्राम में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी संशोधन के जरिए विकसित होता कानून विषय पर एक जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित किया। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सत्र में इंसॉल्वेंसी कानून की बदलती प्रकृति और कानून, अधीनस्थ कानून और बाजार के घटनाक्रमों के बीच संबंधों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलाविनेल वेलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the two-day conference on the future of environment and climate dynamics, organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening.
3: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
2: President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources. The President said a well-structured framework of policies and actions is essential to effectively address such a complex challenge and must ensure the active participation of not only governments and legal experts but also the communities most affected by climate change. Indian Air Force Chief Air Chief Marshal A.P. Singh and Japan Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur today. The flight by the air chiefs of both nations comes as the Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force are conducting the joint air exercise Veer Gargjan 2026 in Jodhpur. This is the first time that Japanese fighter aircraft are operating from Indian soil as part of a bilateral exercise, further deepening the defense partnership between both the countries. Talking to media in Jodhpur after the sortie, Air Chief Marshal Singh said, "First ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in bilateral defense ties." A Naxal commander carrying a bounty of 30 lakh rupees has been killed in an encounter with the Uttar Pradesh Anti-Terrorism Squad in Varanasi. Brijesh Ganju, alias Gopal Singh Bhokta, was the chief of Jharkhand's banned extremist outfit, the Tritiya Prastuti Committee. A highly wanted fugitive, Ganju had been absconding for nearly 2 decades and was facing more than 50 criminal cases, including murder, kidnapping, extortion and targeted attacks on security forces. The Electoral Registration Officer of Delhi Cant Assembly Constituency has clarified the details, facts and documents furnished by Election Commissioner of India, Dr. Sukhbir Singh Sandhu, has already been duly verified. The Electoral Registration Officer said,